मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56:60 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ उपस्थित है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं वंदना में सबसे पहले समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। वंदना की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन।

वंदना में अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनते हैं हरिओम शरण नंदिनी शरण व साथियों की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए डॉक्टर राजरानी शर्मा के विचार।
1: संत शब्द में भारतीयता की अनूठी सुगंध बसी हुई है। संत मन वचन कर्म से सतत सत्य चिंतन में प्रवृत्त रहते हैं। हमारे महान लोक नायक तुलसीदास जी ने भी हमें संत की जीवनचर्या के विषय में स्थान स्थान पर बताया है कि सच्चा संत किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है। विनय पत्रिका में तुलसी ईश्वर से और स्वयं से भी ये प्रश्न करते हैं कि क्या मैं कभी इस प्रकार जीवन यापन कर पाऊँगा। वे कहते हैं, कबू हों यही रहन रहोंगो। कैसी रहन अर्थात कैसा जीवन यापन तुलसी चाहते हैं। वे चाहते हैं, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। अर्थात जितना मुझे लाभ हो जाए सदैव मैं उसी में संतोष कर लूं, किसी से भी कुछ भी अपेक्षा न रखूं। आगे पंक्ति में लिखते हैं, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। संतों के समान मैं सदैव परमार्थ में ही लगा रहूं, ऐसा तुलसी की कामना है, एवं मन कर्म और वचन से इस परोपकार रूपी पुण्य का पालन करूं, साथ ही यम नियम का भी पालन करूं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, ते ही पावक न दहोंगो। आमतौर पर हम लोग यदि किसी के कठोर वचन सुनते हैं तो उसकी अग्नि हमें जलाती है, लेकिन संत इससे बचने की कल्पना करते हुए कहते हैं कि परमार्थ चिंतन के साथ साथ मैं अपने मान अभिमान से भी कभी परे हो पाऊंगा। जब किसी के अत्यंत कठोर वचन असहनीय वचन कानों में सुनकर भी अपमान की आग में न जल सकूं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। तुलसी चाहते हैं कि मैं अपने मान की चिंता से मुक्त होकर शीतल मन से दूसरों के छिद्रान्वेषण की जगह केवल दूसरों के गुणों को ही देखूं, गुणों का ही गान करूं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ये तभी हो पाएगा जब परिहर देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहूंगो। अर्थात मैं अपने देह की चिंता को छोड़कर, देह की आवश्यकताओं की चिंता छोड़कर सुख और दुख दोनों को ही समान बुद्धि से ग्रहण करूंगा। जब आचार विचार से मैं संत सदृश जीवन यापन करके ही अविचल हरि भक्ति की ओर अग्रसर हो सकूंगा, उसे प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त कर सकूंगा। कहना ना होगा कि तुलसीदास जी की यह कामना एक संपूर्ण पुरुष एक विश्व मानव की छवि हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। हमारे संत साहित्य में ऐसे मणिमुक्ता यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं जिनका अल्पांश भी ग्रहण करके हम आदर्श मानव की कसौटी पर खरे उतर कर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। संत जन अपने हृदय को निश्चल निष्काम रखते हुए सदा परहित के लिए समर्पित रहने को ही अपना लक्ष्य अपना अभीष्ट मानते हैं। तुलसी ने विनय पत्रिका में बार बार दृढ़ निश्चय से अपनी इस कामना को दोहराया है कि मैं संत जन जैसा जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे परही न जाना, निज परताप द्रवही नवनीता, परहित द्रवही संत सुपुनीता। और सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए तुलसी इस सत्भाव की उपासना करना चाहते हैं, संतों के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यही सच्चा विश्व कल्याण का सूत्र है। तभी तो तुलसी उद्घोष करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में डॉक्टर राजरानी शर्मा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत

0: आखिर भैंस तो हमारा पशुपालक अच्छी रखता है, परंतु जो भैंस के बच्चे हैं उन बच्चों को नहीं बचा पाता। इनके पीछे सबसे बड़ी जो प्रमुख वजह है वो किसान भाई, उसका प्रबंधन सबसे बड़ी वजह है। उस प्रबंधन को यदि किसान पशुपालक भाई सुधार लें तो अपने नवजात लवारों को बचा सकते हैं। देखने में आ रहा है अकेले जो गिरद अंचल है हर जिले में जो है, हर जिले का आंकड़ा निकालें तो 1 से लेकर 1.5 अरब तक के भैंस के लवारे हर साल मर जाते हैं। इनको बचाने के लिए साथ बहुत सख्त जरूरत है, और इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ है जो भैंस के लवारे हैं बच्चे हैं वो पैदा होने के बाद 6 से लेकर 7 महीने के भीतर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्हें बचाने के लिए मोटे मोटे तौर पर 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज़, भैंस पर बच्चा पैदा होने के बाद पशुपालक भाइयों को सुझाव है कि पैदा होने के बाद बच्चे के 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग उसे खीस, पेप्सी या कीला जरूर पिलाएं। अक्सर कर क्या होता है कि हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं के जो दूध पैदा मिलता है, जो कीला मिलता है, उस कीले को 3 दिन तक पिलाते नहीं हैं। उससे क्या है, बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती। तो पैदा होने के बाद 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग कीला, पेप्सी या खीस जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा, ये दस्तावर होता है, पेट की जो अंतड़ियों में गंदगी भरी पड़ी है उस गंदगी को साफ करेगा और बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा। दूसरा काम जिसकी वजह से नवजात लवारे सबसे ज़्यादा मर जाते हैं वो उसके नार पक जाने की वजह से, अक्सर बच्चों के नाल पक जाते हैं। तो ये या तो हमारे पशुपालक भाई बच्चों के नाल को काटते नहीं हैं, काटते हैं तो कोई भी खुरपी ऐसी पड़ी है उससे लगा के काट देते हैं जिससे वो नार पक जाता है, और नाभि का संबंध पेट से रहता है, पाचन तंत्र से रहता है। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद साफ सफाई कर लें, और साफ सफाई करने के बाद ऊपर से 2-3 अंगुल छोड़ते हुए एक धागे से नाल को बांध दें, और जहाँ बांधा है वहाँ से 1 अंगुल और छोड़ें और 1 ब्लेड से, नए ब्लेड से लेकर उसको नाल को काट दें। और काटने के बाद ध्यान रखें कि भूल के भी उस नाल पर सरसों का तेल मत चुपड़िए। सरसों का तेल चुपड़ोगे तो बच्चा नीचे बैठेगा, मिट्टी पकड़ेगा, सरसों के तेल की खुशबू की वजह से दूसरी भैंस या बच्चा उसको चूसेगा, चबाएगा तो वो नार पक जाएगा। इसलिए उस पर सरसों का तेल न चुपड़ के आप जो टिंचर आयोडीन है ये 5 से 6 दिन तक आप चुपड़ेंगे तो नार पकेगा नहीं और नार सूख जाएगा, और वो जो धागा बांधा है धागे की वजह से कोई भी गंदगी, कोई भी कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर नाभि के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों को बचाने के लिए वो है पेट के कीड़े। कोई भी बच्चा है, गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं इनके पेट में कीड़े, हमारे पशुपालकों की ये गलत धारणा है कि पेप्सी पिलाने से या कीला पिलाने से पड़ जाते। कीला पिलाने से कभी कीड़े नहीं पड़ते, बल्कि गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनके पेट में कीड़े माँ के गर्भ से आते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में नाल के माध्यम से भोजन लेता है, तो इस गर्भस्थ अवस्था के दौरान ही इन कीड़ों के अंडे, इन कीड़ों के लार्वा उस गर्भस्थ शिशु के पेट में प्रवेश कर जाते हैं, खासकर गाय और भैंस के बच्चों में। तो ये गाय भैंस के बच्चे जो हैं ये पेट के कीड़े माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हैं, इसलिए इनका एक जीवन चक्र, लाइफ साइकिल चल रहा है। जब तक उस जीवन चक्र को आप नहीं तोड़ोगे पेट के कीड़े नहीं खत्म होंगे। ये कीड़े आंतों में, फेफड़ों में, किडनी में चुपके रहते हैं, इन लवारों के पशुओं का खून चूसते रहते हैं, फलस्वरूप खून की कमी हो जाती है। 3-4 महीने बाद कीड़ों का वर्म लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कीड़ों का भार ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई दस्त होके, कोई कीचड़ आके, कोई नुमोनिया बन के बच्चे मरने लगते हैं। इसलिए पैदा होने के बाद 10वें दिन पर पहली बार, 30वें दिन पर दूसरी बार और 80वें दिन पर तीसरी बार और चौथी बार जो है 150वें दिन पर, ये 4 बार पेट के कीड़ों की दवा एल्बेंडाजोल साल्ट के नाम से उस बच्चे को उसके शरीर बाहर के अनुसार खिला पिला देंगे तो वो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे और उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। आज हो क्या रहा है कि जो बच्चे बच भी जाते, मान लो कोई एक पड़िया बच गई तो वो जो है 5 से 6 साल में जवान हो पाती है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, जवान नहीं होगी, वो गर्भधारण नहीं करेगी। कोई पशु दुधारू पशु है वो भरपूर क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाता, फलस्वरूप उसके पेट में कीड़े हैं। जब तक इन कीड़ों का आप प्रबंधन नहीं करेंगे उन पशुओं को बचा नहीं सकते, ओसर पड़ियों को समय पर जवान नहीं बना सकते और भरपूर क्षमता के अनुसार दूध उत्पादन नहीं ले सकते। तो इसलिए पशुपालकों को सिफारिश है कि हर 4 महीने के अंतर पर जो बड़े 1 साल से बड़े पशु हैं उनको पेट की कीड़ों की दवा दें और नवजात लवारे को 10, 40, 80 और 150 दिन पर 3 बार पैदा होने के बाद पेट की कीड़ों की दवा उनके शरीर भार के अनुसार जरूर खिलाते रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे SP सिंह, विषय था पशुओं के नवजात बछड़ों की देखभाल। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय

0: तय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
1: और उसको पिए छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
5: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
6: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
7: अथ वार्ताः। ब्रिक्स देशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य, गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानम् अस्ति। सुदृढ आर्थिक विकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति, तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने का संकल्प दोहराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास का संकल्प दोहराया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ब्रिक्स नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह पुस्तकालय का अवलोकन भी करेंगे। गृह मंत्री एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों के निरीक्षण के बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान के साथ लगी सीमा चौकी को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस बीच हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली है। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा विजेता श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का विजेता भारत ग्रुप में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अलीना राबाकीना ने अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की राबाकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। राबाकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है, जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 7:20 पर श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी। श्रोता साथी आनंद लेंगे लोकगीत का। प्रातः 8:30 पर कलाकार हैं विनोद कुमार सेन और साथी।

इस घंटे की खास खबरें सुनिए सुबह 8:58 और 10:58 पर। प्रातः 9 बजे सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथी आनंद लेंगे सिंधी कार्यक्रम का। सुबह 9:30 पर जिले की चिट्ठी प्रातः 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी।

ये फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का सुबह 10:05 पर प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

2:30 पर सुनिए बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित की जाएगी।

0: युवा साथी आनंद लेंगे कार्यक्रम युववाणी का शाम 5:02 पर। शाम 7:20 पर सुनिए लोकगीत, कलाकार हैं विनोद कुमार सेन और साथी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही पलों में हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: देर में होंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। एचपीवी टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना ब्रिक्स की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी हमें सत्य, प्रेम, समानता और मानव सेवा का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलकर मानवता के कल्याण में सहभागी बनने का संकल्प लेने का सभी से आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। सितंबर की किस्त के साथ ही योजना के प्रारंभ से अब तक महिलाओं को नियमित मासिक सहायता के रूप में अंतरित राशि 65,395 करोड़ हो जाएगी। जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाडली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ये अभियान माता पिता की सहमति से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त और स्वैच्छिक एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान करता है। हर टीकाकरण भारत को अपनी बेटियों के लिए एक स्वस्थ और कैंसर मुक्त भविष्य के करीब लाता है। टीकाकरण के बाद होने वाले दुर्लभ प्रतिकूल असर से निपटने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। अब शेष पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। HPV टीकाकरण की पहल फरवरी 2026 में राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए। भोपाल में 57 खंडपीठों का गठन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीत अग्रवाल ने बताया कि लगभग 10,757 लंबित मामले नेशनल लोक अदालत में रखे गए थे।
3: वर्षीय तृतीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट्स और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस होते हैं, बैंक रिकवरी केसेस, सिविल केसेस, कंपाउंडेबल चेक बाउंस के केसेस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के केसेस, ये सब निराकरण के लिए रखे गए। कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, रिवेन्यू कोर्ट्स हो गए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, वहाँ भी लोक अदालत का आयोजन किया गया।
0: वहीं धार जिले के लिए कुल 44 खंडपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में कुल 2812 प्रकरणों का निराकरण कर कुल 22 करोड़ राशि रुपए के अवार्ड पारित किए गए। झाबुआ जिले में 12 खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय के 805 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 7 करोड़ 21 लाख रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं प्री लिटिगेशन के 487 प्रकरणों का निराकरण कर 57 लाख रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अलावा श्योपुर और मंडला जिले में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब मामले के फरार आरोपी शिवांजय राजपूत को रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर 3 फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड फायर किए। इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल आरोपी को सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया, जो घटना के बाद से ही फरार था। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। जूनियर एशिया महिला हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:15 से खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से शिकस्त दी थी। भारत पूल ए में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे सेमीफाइनल में मेज़बान चीन का सामना जापान से होगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने इसी स्पर्धा में मलेशिया को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका भी अपने ग्रुप में सभी 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। इससे पहले श्रीलंका ने वर्ष 2024 में यह खिताब जीता था, जबकि भारत 7 बार यह खिताब जीत चुका है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में कई स्थानों पर कल बारिश हुई। 8 सेंटीमीटर बारिश धर्मपुरी में रिकॉर्ड की गई। वहीं खंडवा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 13.8 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद बोस मेडिकल कॉलेज में कल घुटने के खराब हिस्से को बदलने वाली आधुनिक तकनीक यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डिंडौरी के ऑडिटोरियम में कल स्वामित्वाधिकार अभिलेख पंजीयन अभियान 2026 के लिए पटवारियों एवं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 17 सितंबर से सेवा से संकल्प अभियान की शुरुआत के अवसर पर उज्जैन में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्योपुर और अशोकनगर में कल माटी गणेश दिगणेश अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटक गाइडों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल मंडला परिक्षेत्र के कर्णावती व्याख्यान केंद्र में शुरू हुआ। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सिझोरा परिक्षेत्र के ग्राम कटंगटोला में कल वन विभाग ने सांभर के शिकार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में कल खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और झाबुआ जिले में तुरिया माही अप्रोच लाबरिया मार्ग के लिए 62,99,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। HPV टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म बालिका वधू से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। अमित कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म आनंद से गुलजार के लिखे सलील चौधरी के संगीतबद्ध किए गए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म हकीकत से कैफी आजमी के लिखे मदन मोहन के संगीतबद्ध किए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब?
4: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
6: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
5: क्या, कैसे?
6: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
5: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
6: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
7: श्रोता साथियों, आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। अब सुनिए फिल्म घर से ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने। RD बर्मन के सुरों से सजे इस गीत को सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब सुनिए फिल्म खेल खेल में से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। संगीतकार हैं आर डी बर्मन, गीतकार हैं गुलशन बावरा।

अब सुनिए फिल्म गोलमाल से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म नूरी से, जहां निसा अख्तर के लिखे खय्याम के संगीतबद्ध किए इस गीत को सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब सुनिए फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंक

0: आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026.

0: 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purv Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
8: The New Delhi Declaration condemned in the strongest

आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत का, कलाकार हैं विनोद कुमार सेन और साथी। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ढोला।

0: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आनंद लीजिए विनोद कुमार सेन और साथियों की आवाज़ में इस कारी गीत का।
1: बजा।

इसी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस घंटे की खास खबरें

आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 में ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना ब्रिक्स की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में दूरदर्शी सुधारों के दम पर भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कभी रक्षा आयातक रहा भारत, आज 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण कल से शुरू हुआ, जो 16 सितंबर तक चलेगा। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब मामले में फरार आरोपी शिवांजय राजपूत को रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोता साथियों को आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी ना किसी अच्छी बात के लिए किसी बड़े कारण की ज़रूरत नहीं होती। सुबह की एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का फ़ोन, मनपसंद चाय की खुशबू या किसी काम का उम्मीद से बेहतर हो जाना, छोटी छोटी बातें भी हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देती हैं। और शायद यही सकारात्मक सोच की खूबसूरती है। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल खुश रहना नहीं, बल्कि जीवन में जो अच्छा है उसे पहचानना और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की संभावना देखने का नाम ही सकारात्मक सोच है। साथियों, जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को भी एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। हम अपने आसपास की चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। हमें दूसरों की सफलता प्रेरणा देने लगती है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की भी हम खुशी मनाते हैं और आने वाले कल के लिए एक सकारात्मक उम्मीद संजो कर बैठते हैं। सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता।

लेकिन हर दिन में कुछ ऐसा ज़रूर खोजा जा सकता है जो सकारात्मक हो, कभी किसी की मदद करके, कभी किसी को प्रोत्साहित करके, और कभी सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल कर भी हम अपने दिन को और बेहतर से बना सकते हैं। साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं है, ये अपने मन को ये विश्वास दिलाना है कि जीवन में अच्छे अवसर हैं और हमारे भीतर उन्हें पाने की एक अद्भुत क्षमता है, और हर एक नया दिन एक नई उम्मीद है, और एक नया दिन अपने साथ कुछ न कुछ नया लेकर ज़रूर आता है। तो आज साथियों, सकारात्मक सोच दिवस पर क्यों ना हम एक छोटी सी शुरुआत करें, अपने बारे में अच्छा सोचें और दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखें, जो हमारे पास है उसके लिए मन से आभार व्यक्त करना सीखें, क्योंकि अच्छी सोच केवल हमारे विचार नहीं बदलती, वो हमारे देखने का, सुनने का नज़रिया बदल देती है, और जब नज़रिया बदलता है तो वही जीवन थोड़ा और सुंदर दिखाई देने लगता है। तो मुस्कुराइए, उम्मीद रखिए और अपने आज को पूरी सकारात्मकता के साथ जिए। आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो और सकारात्मक हो, इसी कामना के साथ लीजिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: साथियों, कल से घरों का माहौल बदलने वाला है। कल गणेश चतुर्थी है, यानी हमारे प्यारे गणपति बप्पा आने वाले हैं। घर घर में बप्पा के स्वागत की तैयारी चल रही होगी। कोई बाजार से सजावट के लिए फूलमाला ला रहा होगा, कहीं पूजा की थाली सजाई जा रही होगी, तो कहीं बच्चे इस बात को लेकर उत्साहित होंगे कि इस बार बप्पा की सजावट कैसी होगी। वैसे गणपति बप्पा के आने की खुशी ही कुछ ऐसी होती है। घर में उनकी प्रतिमा आते ही जैसे पूरा माहौल बदल जाता है। सुबह की आरती, घंटियों की आवाज़, फूलों की खुशबू और फल प्रसाद की मिठास, और इन सब के बीच परिवार के लोगों का एक साथ एक जगह बैठना। आपके घर में भी बप्पा आ रहे होंगे ना? इस समय घर में यही चर्चा चल रही होगी कि कहाँ उन्हें विराजमान करना है, सजावट कैसी होगी, कौन कौन सी आरतियाँ होंगी और प्रसाद में क्या बनेगा। अब साथियों, बात प्रसाद की निकली है तो हम मोदक को तो कैसे ही भूल सकते हैं। गणपति बप्पा और मोदक का रिश्ता तो जैसे बरसों पुराना है। खासकर गणेश चतुर्थी के दिन मोदक बनाने और भगवान गणेश को अर्पित करने की परंपरा कई घरों में बड़े प्रेम से निभाई जाती है। किसी घर में भाप में पकने वाले मोदक बनते हैं, तो कहीं बेसन, नारियल या दूसरे स्वादों से अलग अलग तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। लेकिन स्वाद चाहे जैसा हो, उसके पीछे भावना एक ही होती है कि बप्पा के लिए अपने हाथों से हमें कुछ बनाना है। और त्योहारों की तो यही खूबसूरती है, पूरे साल हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सुबह से शाम तक की भागदौड़ में कई बार साथ बैठने का अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन त्योहार आते ही जैसे बहाना मिल जाता है घर सजाने का, साथ बैठने का, बातें करने का और पुरानी यादें फिर से जीने का। गणेश चतुर्थी भी ऐसा ही अवसर है। अब गणेश जी की बात करें तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है। गणपति, गजानन, लंबोदर, एकदंत और विघ्नहर्ता। इन नामों में भी साथियों अलग अलग रूप और उनकी विशेषताओं की झलक दिखाई देती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करने की परंपरा रही है। शादी हो, गृह प्रवेश हो, और या कोई व्यवसाय नया शुरू करना हो, या कोई शुभ काम, सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। और इसके पीछे एक सुंदर भाव भी है, किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच और शुभ भावना के साथ हो। गणेश जी का स्वरूप भी साथियों अपने आप में बेहद खास है। हाथी जैसा बड़ा सिर, बड़े कान, छोटी आँखें, लंबी सूंड और छोटा सा वाहन मूषक। बचपन में जब हम

पहली बार गणेश जी की को देखते हैं तो मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर उनका स्वरूप ऐसा क्यों है। फिर जब हम घर के बड़े हमें गणेश जी की कहानियाँ सुनाते हैं तो उनके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। गणेश जी के बड़े कानों को ध्यान से सुनने का प्रतीक माना जाता है। उनकी छोटी आँखों में एकाग्रता का भाव देखा जाता है और बड़ा मस्तक बड़े विचारों की ओर संकेत करता है। यानी गणेश जी का जो स्वरूप है वो केवल देखने में ही आकर्षक नहीं बल्कि उसमें जीवन से जुड़ी कई बातें छिपी हुई हैं। गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक और बात बहुत दिलचस्प है, गणेश उत्सव का सार्वजनिक रूप। आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, कहीं गणपति की भव्य प्रतिमाएं होती हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय बनाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कितनी बड़ी भूमिका रही थी? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्होंने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने का प्रयत्न किया। उस समय इसका उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं था बल्कि लोगों को एक साथ लाना और उनमें सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करना था। धीरे धीरे ये उत्सव लोगों को जोड़ने वाला एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर बन गया और आज भी जब किसी मोहल्ले में गणेश जी की स्थापना होती है तो उसका असर केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं, बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, युवा आयोजनों की जिम्मेदारियां संभालते हैं और बुज़ुर्ग मार्गदर्शन करते हैं और पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा महसूस होने लगता है। शायद यही त्योहारों की असली ताकत है, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल एक व्यस्त ज़िंदगी तक सीमित नहीं हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं, रिश्ते हैं, पड़ोसी हैं और एक ऐसा समाज है जिसका हिस्सा हम सभी हैं। गणेश चतुर्थी की अनेक लोक परंपराएं भी हैं, कहीं गणपति की स्थापना के बाद रोज़ सुबह शाम आरती होती है, भजन गाए जाते हैं, कई परिवारों में बच्चे गणेश जी की छोटी छोटी कहानियाँ सुनते हुए बड़े होते हैं। साथियों, बच्चों के लिए बप्पा का आगमन उत्सव है, युवाओं के लिए उमंग है, परिवारों के लिए साथ बैठने का अवसर और बुज़ुर्गों के लिए परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम। तो कल जब गणपति बप्पा आपके घर आएंगे तो एक पल ज़रूर विचार करिएगा कि सिर्फ पूजा तक ही नहीं बल्कि ये देखने का कि हमारे आसपास कितनी खुशियां जमा हो गई हैं, घर के बच्चे कितने उत्साहित हैं, परिवार के लोग कितने खुश हैं। तो बस इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, कल गणपति बप्पा हमारे घर आएंगे, घर में सजावट पूरी हो या अभी बाकी हो, पूजा की तैयारी हो चुकी हो या कुछ सामान अभी भी लाना बाकी हो, बप्पा के स्वागत में उत्साह ज़रूर होना चाहिए क्योंकि त्यौहार की रौनक सिर्फ सजावट से नहीं, रौनक होती है मुस्कान से जो बप्पा को देखकर हमारे चेहरे में आती है। जब रौनक होती है उस अपनेपन भरे एहसास से जब हम कहते हैं बप्पा आप आए हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो आइए गणपति बप्पा का स्वागत पूरे मन से करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, बुद्धि और विवेक बना रहे और हर मुश्किल का सामना हम हिम्मत से कर सकें। हम सभी एक बार साथ कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा के आगमन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ।

साथियों, हिंदी दिवस आने वाला है 14 सितंबर यानी कल हम हिंदी दिवस मनाएंगे। ये दिन केवल हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर नहीं बल्कि ये सोचने का भी अवसर है कि हमारी भाषा हमारे जीवन में किस तरह उपस्थित है और हम उसे और अधिक समृद्ध बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर में हम कितनी बार हिंदी बोलते हैं? शायद हम गिन भी नहीं सकते। सुबह घर में बातचीत से लेकर रास्ते में मिलने जुलने तक, किसी का हाल पूछने से लेकर अपने मन की बात कहने तक, हिंदी हमारे साथ लगातार चलती रहती है। भाषा हमारा अपने जीवन का इतना सहज हिस्सा है कि हम अक्सर उसकी ओर अलग से ध्यान ही नहीं देते। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए तारीख हिंदी के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। लेकिन हिंदी की यात्रा केवल इस एक तारीख तक सीमित नहीं, ये भाषा सदियों से हमारे समाज और जीवन के अनुभवों को अपने भीतर समेटती आई है। भक्ति साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक हिंदी ने समय के साथ अपने स्वरूप को विस्तार किया है। कबीर की वाणी हो, तुलसी की रचनाएं हो, प्रेमचंद की कहानियां हो, महादेवी वर्मा की संवेदनाएं हो या निराला की कविता, हिंदी साहित्य ने अलग अलग समय में मनुष्य और समाज को समझने की कोशिश की है। यही कारण है कि हिंदी केवल बातचीत की भाषा नहीं बल्कि विचार और अनुभूति की भाषा भी है। लेकिन आज जब हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि हम अपनी हिंदी भाषा को और ऊंचाई कैसे प्रदान करें। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी भाषा को पढ़ने की आदत मजबूत करना होगा। किसी भी भाषा का संसार उसके साहित्य और ज्ञान से बड़ा होता है, इसलिए केवल पाठ्यक्रम की किताबों तक हिंदी को सीमित ना रखें। कविताएं पढ़ें, कहानियां पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, जीवनी पढ़ें, यात्रा वृत्तांत पढ़ें और ऐसे लेख पढ़ें जिनसे किसी विषय को समझने का अवसर मिले। किताब पढ़ने का अर्थ केवल कहानी जान देना नहीं होता। किताबें हमें नए शब्द देती हैं, नए विचार देती हैं और कई बार एक ऐसी दृष्टि देती हैं जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को नए ढंग से देखने लगते हैं। यही आदत बच्चों में भी विकसित करना आज आवश्यक है। घर में अगर किताबें हों, माता पिता स्वयं पढ़ते हों और बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हों तो भाषा उनके लिए केवल पढ़ाई का विषय नहीं रह जाती बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। बच्चों को जब अपनी बात अपने शब्दों में कहने का अवसर मिलता है तो उनके भीतर भाषा के प्रति सहज आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। साथियों, हिंदी को ऊंचाई देने के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। घर में हिंदी की किताबें हों, बच्चों से अच्छी हिंदी में बातचीत हो, पुस्तकालय जाने की आदत बने, साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया जाए और समय निकाल कर कुछ पढ़ा जाए। कोई व्यक्ति रोज़ केवल 10 पन्ने भी पढ़े तो एक वर्ष में न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, इसका अनुमान लगाना भी हमें उत्साह से भर देता है। तो आने वाले हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं देने तक हम बात सीमित नहीं रखेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हिंदी थोड़ा और पढ़ें, थोड़ा और लिखें, समझें और अपने जीवन में उसको थोड़ा और अधिक स्थान दें। कल से हिंदी पखवाड़ा शुरू होने वाला है तो ये संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि इस पखवाड़े में एक हिंदी की पुस्तक तो पढ़नी ही पढ़नी है।

साथियों, आपसे बातें करते करते वक्त का तो मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब इशारा कर रही है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो अपनी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, 14 सितंबर यानी सूमर जे ॾींहुं असांजा विघ्नहर्ता गणेश भॻवानु विराजमान थींदा। पंहिंजे माउ पीउ में पूरे ब्रह्मांड खे ॾिसण वारो गणपति बप्पा पूरे धूमधाम सां उन्हनि जो स्वागत कयो वेंदो। हर साल बडरे महीने जी शुक्ल पक्ष जी चोथ ते हिननि जो आगमन थींदो आहे। भॻवानु गणेश विघ्नहर्ता जे नाले सां सॾायो वेंदो आहे, जेको हर कष्ट हर मुश्किल खे कटे छॾींदो आहे। हिननि खे बुद्धि ज्ञान सुख समृद्धि जो देवता मञियो वेंदो आहे। हुननि जो सिर हाथीअ जो ऐं शरीर माण्हूअ जो आहे, इन्हीअ करे त हिननि खे घणनि ई नालनि सां पुकारियो थो वञे, जीअं त लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, एकदंत, की ख़ासि करे ॿारनि जो त ये दोस्त चवायो वेंदो आहे। गणेश चतुर्थीअ जे ॾींहुं घरनि मंदरनि ऐं घणनि ई हंधि झांकियूं विहारियूं वेंदियूं आहिनि। झांकी रखण लाइ चंदो घर घर मां वठियो वेंदो आहे। हर गली पाड़े ओड़े जी रौनक त वधी वेंदी आहे, उन सां गॾु हर घर में रौनक अची वेंदी आहे। 11 ॾींहं पंहिंजे घरनि में पाठ पूॼा आरती करे गणपतिअ खे दिलि सां पुकारियो वेंदो आहे। हर घर में मौज मती पई हूंदी आहे। घर घर में नारा गूंजजंदा आहिनि, गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। 11 ॾींहं अलॻि अलॻि प्रसादनि जो भोॻ लॻाइबो आहे, पर गणपतिअ जो प्रिय प्रसाद आहे मोदक ऐं लड्डू। उन्हनि खे दुर्वा बि चढ़ाई वेंदी आहे। रोज़ मिठा मिठा प्रसाद खाराए गणपतिअ खे प्रसन्न कयो वेंदो आहे। दोस्तो, महाराष्ट्र में इन त्योहार खे अञा वॾे पैमाने ते मल्हायो वेंदो आहे। उते गणपतिअ जी स्थापना घणे घरनि में 1.5 ॾींहं, 3 ॾींहं या 5 ॾींहनि जी हूंदी आहे। ही त्योहार ई त आहिनि जेके जीवन में ख़ुशी ऐं उमंग खणी ईंदा आहिनि। 11 ॾींहं पूरो शहर जगमगाईंदो आहे। त्योहार जो ख़ासि मक़सदु इहो आहे कि सभु हिकु थी वेंदा आहिनि, जिन सां अञा एकता वधंदी आहे। हाणे त पर्यावरण जो बि ख़ासि ध्यानु रखियो थो वञे, इन्हीअ करे त गणपतिअ जी मूर्ति ईको फ्रेंडली अची वियूं आहिनि। घणेई माण्हू जागरूक थी विया आहिनि, इन्हीअ करे त घणेई माण्हू मिटीअ सां पंहिंजे घरनि में ही मूर्ति ठाहे करे स्थापित कंदा आहिनि ऐं विसर्जन ते पंहिंजे ही घरनि में पाणीअ में विसर्जित करे ऐं उहा जेकी मिटी आहे जेकी ॻरी वेंदी आहे उनखे गमलनि में वापराईंदा आहिनि। केॾी सुठी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजी त इहा ई गुज़ारिश आहे कि मूर्ति इको फ्रेंडली ही वठो, जंहिंसां असांजो पर्यावरण बि सुरक्षित रहे, असां पंहिंजो त्योहार बि ख़ूब मौज मस्तीअ सां मनायूं ऐं असांजे पर्यावरण खे कोई नुक़सान बि न थिए। त दोस्तो, आराधना भक्ति कंदे, गीत ॻाईंदा, मौज मचाईंदा, गणपतिअ खे बाजाईंदे ॿुधूं था ही सुहिणो ऐं प्यारो गीत।

0: दोस्तों अॼु असां सां गॾु आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि कन्यो मोटवानी माधवभाउ जी। तव्हांजो घणो घणो स्वागत आहे।
1: महिरबानी।
0: मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदमि कि वर्तमान साहित्य क्षेत्र में सिंधी कविता जो महत्व छा आहे?
1: सिंधी कविता जो ॾाढो महत्व आहे
0: जी।
1: जीअं हिंदीअ में

0: महत्व आहे, उर्दूअ में महत्व आहे, तीअं सिंधी ॿोलीअ में बि पंहिंजो कविता जो, ग़ज़ल जो, नज़्म जो, ॿिए बि घणेई सनफू आहिनि, सभिनी जो महत्व पंहिंजे अलॻि अलॻि स्थान आहे हुनजो। त सिंधी भाषा जो बि ॾाढो सुठो हींअर मतिलबु ग़ज़ल में त ॾाढो सुठो आहे
1: जी।
0: ग़ज़ल जेके शाइर आहिनि उन्हनि त ॾाढो सुठो मतिलबु ग़ज़ल लिखियो आहे सिंधीअ में। अॻिते वधी वई आहे ॾाढी पंहिंजी सिंधी भाषा,
1: मतिलबु असांजे आदि जुगाद खां जेकी सिंधी कविताउनि जो जेको चलन हले पियो उहो अञा ताईं हले ई
0: पियो, अञा ताईं हले पियो थो। पर हींअर छा आहे त थोरो ॿोली जेका आहे न भाषा, जेका पंहिंजी सिंधी भाषा आहे मेन, उहा अॼुकल्ह केरु पढ़े कोन थो, न को मतिलबु इंट्रेस्ट ॾाढो घटि था ॾेखारनि माण्हू। त हींअर थोरो मतिलबु सरकार बि इन पुठियां लॻी पई आहे त भई पढ़नि ॿार, त पंजे ताईं शायदि कंपलसरी कयो अथनि हींअर पंहिंजी भाषा जेका आहे उहा ॿार पढ़नि। पर हाणे ॾिठो वञे थो त थोरो कुझु ॿार हींअर पढ़नि था, पर असां आशावादी आहियूं अॻिते हली करे भाषा जो ज़रूरु सुठो थींदो।
1: जी असां अॻियां वधायोसीं तीअं असांजा अॻियां ॿार बि उनखे अॻियां
0: वधाईंदा, वधाईंदा, बिल्कुलु वधाईंदा।
1: मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि की तव्हांखे कॾहिं खां वठी रुचि थी कविताउनि में?
0: मूंखे लॻभॻि 1995 खां मां लिखणु चालू कयो आहे। पर पहिरियों कचियूं फिकियूं लिखंदो हुउसि ईअं ई मतिलबु बेसिर पहिरियूं। उन खां पोइ मूंखे उस्तादु मिलियो, श्री खीमन यू मूलानी मुंहिंजो उस्तादु आहे, उहे वॾा शाइर आहिनि, ग़ज़ल गु शाइर, उन्हनि खे साहित्य अकादमी पुरस्कार बि मिली चुका आहिनि। त उहे मूंखे मिलिया, उन्हनि मूंखे सॼो ग़ज़ल जे बारे में सेखारियो। त हाणे मां पंहिंजो किताब बि छापारायो आहे हिकिड़ो, आस जा कख, ग़ज़ल जो किताबु आहे। उन ते मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमीअ मां इनाम मिली चुको आहे।
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे,
0: महिरबानी, थैंक
1: यू। त तव्हांखे छा थो लॻे की असांजी जेकी नई टही आहे उहा अॻियां असांजे इन चलन खे वधाईंदी?
0: बिल्कुलु वधाईंदी, भई ॿोली सिखंदा, भाषा पढ़ंदा
1: जी
0: त ज़रूरु अॻिते वधंदी।
1: ऐं असां आशा बि कयूं था की अॻिते वधाइनि।
0: बिल्कुलु आशावादी आहियूं अॻिते वधंदी,
1: छो जो कविताउनि में ॾिठो थो वञे की हाणे धीरे धीरे धीरे रुचि घटिजंदी थी पए थी वञे।
0: न त ॿोलीअ जे मथां न, हाणे भाषा कंहिंखे ईंदी न त उहो कीअं लिखंदो पंहिंजे ॿोलीअ में? त ॿोली पढ़ाई पढ़ंदा कंदा त पोइ ज़रूरु लिखंदा
1: जी। त दोस्तो इहो हो की वर्तमान समय में असांजी सिंधी कविता कीअं अॻियां वधे पई थी ऐं कीअं अञा असांजी नई पीढ़ी जेकी आहे उहा इनखे वधाईंदी। त अचो मांदे भाऊअ खां ॿुधूं था कुझु उन्हनि जूं ॾाढियूं सुहिणियूं कविताऊं।
0: हा, मां कुझु ग़ज़ल ॿुधाए रहियो आहियां तव्हांखे। मुंहिंजी पहिरीं ग़ज़ल आहे, मतिला आहे, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, आस ख़्वाबनि जी उभामे पई। शेर पेश आहे, बाफ अहिड़ी आहे जहां जी जंहिंमें, बाफ अहिड़ी आहे जहां जी जंहिंमें, रोज़ ख़्वाहिश का उॾामे पई, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, आस ख़्वाबनि जी उभामे पई। ॿोलीअ जे बारे में ई शेर आहे, फूक ॾेई को त ॿारण ॿारे, फूक ॾेई को त ॿारण ॿारे, चिणग ॿोलीअ जी विसामे पई, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, आस ख़्वाबनि जी उभामे पई। आबरूअ जी न आ चिंता कंहिंखे, आबरूअ जी न आ चिंता कंहिंखे, जे विकामे थी विकामे पई, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, आस ख़्वाबनि जी उभामे पई। अकुल वारनि जी ज़बानी जंग में, अकुल वारनि जी ज़बानी जंग में, ॻाल्हि चरियनि जी अघामे पई, सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई, आस ख़्वाबनि जी उभामे पई। सुखनि लाइ वक़्तु लॻे थो लेकिन, सुखनि लाइ वक़्तु लॻे थो लेकिन, पीड़ा हर रोज़ विहामे पई, सिगरी

0: जज़्बन जी उजा में पेई, आस ख्वाबन जी उभा में पेई। मक्ता पेश आए, दाव जे हुन जो लॻो आ मांदा, दाव जे हुन जो लॻो आ मांदा। दिल भला तुंहिंजी छो खामे पेई, सिगरी जज़्बन जी उजा में पेई, आस ख्वाबन जी उभा में पेई। ॿियो ग़ज़ल पेश आहे, मतला है, ख्याल ज़हन में घिड़ंदा विया
1: जी।
0: ख्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। ख्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। ग़म जो सायो आयो जॾहिं, ग़म जो सायो आयो जॾहिं, वेसह जा फर उॾंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मूं त मिलणु पिए चाहियो पर, मूं त मिलणु पिए चाहियो पर, विच में दलाल घुसंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। जॾहिं बि माठि हो ॻाल्हायो, जॾहिं बि माठि हो ॻाल्हायो, केॾा क़िसा ठहंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मन त सोच में उलझी वियो, मन त सोच में उलझी वियो, पेर वक़्त जा डुकंदा विया। मन त सोच में उलझी वियो, पेर वक़्त जा डुकंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। हीअ शइ ॾिसंदा, मानी त मुंहुं तकींदी रही, मानी त मुंहुं तकींदी रही, महफ़िल मां सभु लुॾंदा विया। मानी त मुंहुं तकींदी रही, महफ़िल मां सभु लुॾंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, हाल कोच खां पुछंदा विया। मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, हाल कोच खां पुछंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मक्ता पेश आहे, उहे त अमर आहिनि मांदा, उहे त अमर आहिनि मांदा, सचा अखर जे लिखंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मुंहिंजो टियों ग़ज़ल पेश आहे, रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। शेर पेश आहे, अहसाननि हो जकड़ियो चपनि खे, अहसाननि हो जकड़ियो चपनि खे, लफ़्ज़ निड़ीअ में ई लुछंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। घुर्जुनि जे गहरे सागर अंदरि, घुर्जुनि जे गहरे सागर अंदरि, अहसास समूरा ॿुॾंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। हीअ शइ ॾिसंदा, सिक दुनियादारी खाई वई, सिक दुनियादारी खाई वई, रिश्ता ॻोढ़नि खे चुहंदा रहिया। सिक दुनियादारी खाई वई, रिश्ता ॻोढ़नि खे चुहंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। चहिरे जी मर खे मेटणु छॾे, चहिरे जी मर खे मेटणु छॾे, सभु आईननि खे उघंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया।

0: कंदा रहिया रस्ता तेजीअ सां डुकंदा रहिया के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। मक्ता पेश आहे यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं मांदा उमिरि सॼी ॾुहंदा रहिया। यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं मांदा उमिरि सॼी ॾुहंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया।
1: तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं असांजे श्रोताउनि खे हेॾियूं सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायव।
0: महिरबानी जानवी।
1: दोस्तो, त्योहारनि जी त ॻाल्हि हले ही पई। भारत देश में जेतिरा धर्म आहिनि ओतिरा ही अलॻि अलॻि त्योहार। तीअं ई हिंदू धर्म में हिकु त्योहारु आहे हरितालिका तीज, जेको भद्रे महीने जी शुक्ल पक्ष जी तीज ते मल्हायो वेंदो आहे। जीअं असांजी टीजड़ी हूंदी आहे, तीअं ही हीअ टीज हिंदू धर्म में वॾे उत्साह सां शिव ऐं पार्वतीअ जी प्रेम तपस्या ऐं समर्पण जी यादि में मल्हाई वेंदी आहे। धार्मिक मान्यता जे मुताबिक़ माता पार्वती भॻवानु शिव खे पतीअ जे रूप में पाइण लाइ घणी घोर तपस्या कई हुई ऐं भॻवानु शिव माता पार्वतीअ जी तपस्या सां प्रसन्न थी हुन सां विवाह करण जी इच्छा स्वीकार कई। माता पार्वतीअ जी तपस्या शक्ति धैर्य जो वॾो उदाहरण आहे। इन्हीअ करे हिन टीज ते शादीशुदा जाइफ़ूं पंहिंजे घोट जी वॾी उमिरि ऐं सुठे स्वास्थ्य लाइ व्रत रखंदियूं आहिनि। घणेई त निर्जला व्रत बि कंदियूं आहिनि। न्याणियूं पंहिंजे मनपसंद जीवन साथी मिलण जी कामना सां ही व्रत कंदियूं आहिनि। जाइफ़ूं 16 सिंगार करे माता पार्वती ऐं शिव जी पूॼा कंदियूं आहिनि। माता पार्वतीअ जी कथा ॿुधबी आहे ऐं शिव भॻवान जी आरती कई वेंदी आहे। भॼन कीर्तन गीत ॻाए शिव पार्वतीअ जी आराधना कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि खे मल्हायो वेंदो आहे। अॼु बि त्योहार असांखे कुझु न कुझु ज़रूरु सेखारे वेंदा आहिनि। ॾिसो, इहो ई आहे असांजो भारत देश, त अॼु बि असांजी संस्कृतीअ खे ज़िंदो रखियो वियो आहे हिन त्योहारनि जे ज़रिए। ही त्योहार भारत देश जी सुंदरता खे अञा निखारींदा आहिनि। त दोस्तो, त्योहारनि जो ईअं ई मज़ो माणींदे ॿुधूं था हिकु चटपटो, हिकु सुहिणो, हिकु प्यारो, हिकु खिलंदो गीत।

दोस्तों हाणे हिकु ज़रूरी ॼाण। हर साल 15 सितंबर ते अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हे ॾींहुं लोकतंत्र जी अहमियत खे सभ ताईं पहुचाए थो कि लोकतांत्रिक मूल्यनि जे बारे में हर माण्हूअ खे जागरूक कयो वञे। संयुक्त राष्ट्र संघ पारां 15 सितंबर ते हिन ॾींहुं खे मल्हाइण जी घोषणा कई वई। लोकतंत्र जी माना आहे लोकनि जी सरकार। लोकतंत्र में जनता पंहिंजे प्रतिनिधिअ खे वोटनि जे ज़रिए चुनंदी आहे। लोकतंत्र में हर नागरिक खे पंहिंजे वीचारनि खे रखणु, वोट ॾियणु ऐं पंहिंजे अधिकारनि जी संभाल करण जो अधिकार हूंदो आहे। हर नागरिक खे वोट ॾियण जो अधिकार आहे। भारत देश जी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान ते टिकियल आहे। संविधान सभु नागरिकनि खे समानता, स्वतंत्रता ऐं न्याय जो अधिकार ॾिए थी। वक़्त वक़्त ते चुनाव थींदा आहिनि जिन सां हर नागरिक पंहिंजे प्रतिनिधिअ खे चूंडींदी आहे। लोकतंत्र सिर्फ़ वठण ताईं सीमित नाहे कि असांखे अधिकार मिलंदा आहिनि, उन सां गॾु असांखे कर्तव्य बि निभाइणा पवंदा आहिनि, जीअं त कानून जी पालना करणु, नियमनि खे समुझणु, देश जी एकता खे क़ाइमु रखणु ऐं समाज जी भलाईअ में बि पंहिंजो योगदान ॾियणु। जंहिं देश जा नागरिक शिक्षित, जागरूक ऐं ज़िमेदार हूंदा, उते लोकतंत्र बि मज़बूत थींदो। अॼुकल्ह सोशल मीडिया एॾो घणो वधी वियो आहे कि उन्हनि ते घणेई ख़बरूं ऐं जानकारियूं मिलनि त थियूं, पर कुझु अहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि जेके ग़लति बि फैलायूं वञनि थियूं। असांजो फ़र्ज़ु आहे कि कंहिं बि ख़बर खे बिना परखे न फैलायूं। घणेई अफ़वाहूं बि हूंदियूं आहिनि जिन जे करे व्यवस्था खे नुक़सान बि पहुचंदो आहे। पंहिंजे अधिकार सां गॾु पंहिंजी ज़िमेदारीअ जो बि सही इस्तेमालु करणु घुरिजे। मज़बूत लोकतंत्र यानी असांजो मज़बूत भारत। त दोस्तो हाणे वक़्तु आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

0: सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में, ये आकाशवाणी है। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत माहेश्वरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रायसेन जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की, जिसके तहत उदयपुरा विकास खंड के देवरी में आयोजित शिविर के दौरान नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने स्थानीय व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने देवरी को मुख्य मार्गों और ग्रामीण अंचलों से जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़कों के निर्माण, बैंक शाखाओं के विस्तार, एटीएम में नकदी की कमी और निराश्रित गोवंश से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद और कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश देते हुए व्यापारियों से व्यापार और श्रम नियमों का पालन करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में सहयोग का आह्वान किया। इस मौके पर एसपी आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुदाम खाड़े ने ओबेदुल्लागंज विकास खंड का दौरा कर विभागीय योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ओबेदुल्लागंज स्थित पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तथा ग्राम आशापुरी की दुग्ध सहकारी समिति का मुआयना कर पशु उपचार व्यवस्था, संक्रामक रोग नियंत्रण, करण और दुग्ध संकलन की स्थिति जांची। प्रमुख सचिव ने ओपीडी और औषधि भंडार का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, उन्नत नस्ल संवर्धन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पशुपालन संचालक डॉ. पीएस पटेल, उप संचालक डॉ. एसके कपूर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के कई अंचलों में सोयाबीन की फसल पर सफेद मक्खी के कारण पीला मोजेक रोग और तना मक्खी के प्रकोप से पौधे पीले होकर सूखने की समस्या सामने आई है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संयुक्त निगरानी दलों का गठन किया गया है। इसी क्रम में उप संचालक कृषि केपी भगत, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी और सहायक संचालक के ठाकुर के दल ने गैरतगंज विकासखंड के ग्राम सहजपुर, आलमपुर एवं पापड़ा के खेतों का बीते दिनों मुआयना किया। दल ने किसान चंद्रेश राजपूत, नीरज राजपूत, चैन सिंह यादव और रिजवान अहमद सहित अन्य किसानों से सीधे संवाद कर कीट व्याधि से फसलों के बचाव के लिए तकनीकी परामर्श और उपाय बताए। अब बात करते हैं लोक अदालत की। जिला न्यायालय परिसर समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश हर्षणी यादव ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में जिले में 9000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इस दौरान चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक और श्रम मामलों के साथ साथ जल कर, बिजली बिल और राजस्व विवादों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया गया। संत रविदास मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापना समारोह गरिमा में माहौल में संपन्न हुआ। समरसता संकल्प अभियान एवं रथ यात्रा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभु राम चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए समरसता, सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशाल समरसता भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर सहभागिता की। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने जिले में ब्लैक स्पॉट्स के रूप में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के समीप कैटाई, रेलिंग और आवश्यक संकेतक बोर्ड लगाने के साथ साथ स्कूल कॉलेजों में यातायात जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मातृ स्वास्थ्य एवं बच्चों का बेहतर पोषण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए अधिकारी लगातार दौरे करें और मैदानी अमले के कार्यों की निगरानी सुनिश्चित की जाए। वहीं औद्योगिक नगर मंडीदीप के शासकीय सिविल अस्पताल में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा सीएसआर मद से निर्मित 5 कक्षीय सर्व सुविधा युक्त ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और वर्धमान ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव आंगरा उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री और विधायक ने नवनिर्मित ब्लॉक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल परिसर में पौधरोपण भी किया। रायसेन जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: रायसेन जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था विनीत माहेश्वरी का, वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आइए सुनते हैं फिल्म संघर्ष से ये पहला गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, कड़ला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल ने, साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म परदेस से कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृषा घोड़के ने, और नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और तुलसी गोस्वामी ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, सूरज कुशल वर्मा ने। साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

फिल्म साथिया से साधना सरगम की आवाज़ में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरे मुलानी परिवार ने। साथ ही धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता साथी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आनंद ले रहे हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म राजनीति से इरशाद कामिल के लिखे प्रीतम के संगीतबद्ध किए इस गीत को मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज़ में। सुनने की फरमाइश की है न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या, श्रेया और देवांशु ने। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवश्री ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सुनिए फिल्म रेस से आतिफ असलम की आवाज़ में गीत। संगीतकार हैं प्रीतम, गीतकार हैं समीर। गीत को सुनने की फरमाइश की है गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और समस्त लोखंडे परिवार ने। साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज़ में इरशाद कामिल के लिखे प्रीतम के स्वरबद्ध किए इस गीत को, जिसे सुनने की फरमाइश की है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम बेलदार, अकरम बेलदार, उल्लाह बेलदार, आसमा बेलदार, डब्लू बेलदार और सोनम बेलदार ने। साथ ही बिहार कॉलोनी दिल्ली से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

अब सुनिए फिल्म रॉकस्टार से गीत मोहित चौहान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं एआर रहमान और सुनने की फरमाइश की है भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग और तान्या नारंग ने। साथ ही पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ममता अरोड़ा ने। इसी के साथ लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी ने। साथ ही खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा ने। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का और डुगू सिक्का ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल स्थित RCVP नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आज आगरमालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में एक और हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। यह DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिवस पर उज्जैन स्थित महाकाल महालोक सहित संपूर्ण प्रदेश में 58 लाख आशीर्वाद के दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इस मौके पर रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। देश ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। और जूनियर एशिया महिला हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप सभी की बातों और सुरीले गीतों से सजे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपका दोस्त और आज का हम सफर शिवम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर 80 और 90 के दशक यानी 80s और 90s का नॉस्टैल्जिया ट्रेंड कर रहा है, यानी कि छाया हुआ है। हर रील, हर पोस्ट हमें उसी दौर की सादगी और यादों की तरफ खींच रही हैं। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी आया था जब हम अपने आप को बूढ़ा होता हुआ, यानी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उम्र दराज हो जाएंगे, तब कैसे दिखेंगे। ये दौर भी हमने सोशल मीडिया पर ही देखा था। वो दौर बहुत ज़्यादा समय तक छाया नहीं रहा, लेकिन जब तक वो रहा, हर दिलो दिमाग पर उसकी धूम मची थी। मित्रों, वो दौर खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ट्रेंड की एक खामी है जो वर्तमान समय में 80s और 90s का जो दौर चल रहा है, उसकी एक खामी ये है कि ये हमें केवल बीते वक्त की बेफिक्री दिखाता है, उसके संघर्ष नहीं। और इसका असर ये होता है कि हम आज की खुशियों को भूलकर उस बीते हुए कल की हसरत करने लगते हैं, जो चाहकर भी हम लौटा कर नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि समय का पहिया जो होता है वो केवल और केवल आगे बढ़ता है। हम ना तो भविष्य में छलांग लगा सकते हैं, ना ही भूतकाल में यानी कि माजी में लौट सकते हैं। अतीत जो होता है ना, वो एक बंद किताब की तरह होता है। इसलिए इस ट्रेंड के भंवर में पूरी तरह बह जाना ठीक नहीं है। सच तो ये है कि जीवन का सच्चा और मुकम्मल आनंद जो होता है, वो केवल और केवल वर्तमान में है, आज में है, अभी में है। जो आज हमारे हाथ में है, वही असली सुख है। आज को खुलकर जी लीजिए, क्योंकि यही पल सबसे खूबसूरत याद बनकर रह जाने वाला है, और यही वो पल है जो हाथों से हमारे फिसलता जा रहा है। अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलिए, गहरी सांस लीजिए और उस खूबसूरत आज का स्वागत कीजिए। हमारे इस पल का स्वागत कीजिए। हमारे आइए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर हम आज से जुड़ें, अभी से जुड़ें और सुनें आपकी खूबसूरत बातें और मनपसंद नगमें।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है?
1: सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल से।
0: सचिन जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला संभल।
0: संभल ये कहाँ आता है?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
0: अच्छा।
1: मुरादाबाद की साइड।
0: तो सचिन भाई ये बताइए, किस माध्यम से आप हमारे कार्यक्रमों को सुन पाते हैं?
1: सर यहाँ पे रेडियो जो है वो आपके केंद्र को रात को तो पकड़ता है, लेकिन दिन में नहीं पकड़ता, तो मोबाइल के द्वारा हम सुनते हैं, मोबाइल ऐप से।
0: अच्छा जी। और चूंकि आज आपने फ़ोन लगाया है हमारे कार्यक्रम, फ़ोन करें गीत सुने में, तो कौन सा गीत हम आपके लिए आज निकालें?
1: तो सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा फ़ोन लगा है, फ़ोन करें गीत सुने में। तो आज मूवी का नाम रहेगा राजा हिंदुस्तानी। और उसमें गाने के बोल रहेंगे, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।

0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं और आपने फोन किया है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के लिए।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मोबाइल ऐप के जरिए सभी जगह पहुंच रहा है, मेरे हिसाब से दुनिया में प्रसारण जा रहा है इसका। और इसी कड़ी में फिर आपका आकाशवाणी से संपर्क हुआ है और हमारा संपर्क आकाशवाणी भोपाल से हुआ है। मैं बोल रहा हूँ दशरथ सेन, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर, पशुपतिनाथ की नगरी से।
0: जी जी।
1: और हमारे जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है भोपाल, वहाँ पर आकाशवाणी भोपाल के नाम से हमें जानते हैं और आकाशवाणी को सभी पहचानते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि

0: जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंचे आकाशवाणी।
1: क्या बात है, आपने बहुत सही बात कही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, पेशा क्या है आपका?
0: जी, पेशा आकाशवाणी के साथ साथ हम पेशा करते हैं, हेयर सैलून की दुकान चलाते हैं।
1: अच्छा जी।
0: और काफी कस्टमर लोग इसका आनंद हम उठाते हैं मोबाइल ऐप के जरिए। लोग पूछते हैं कि इतना साफ क्वालिटी कहाँ से मिल रही है। पहले तो हमारे पास चार सिल का रेडियो था, उसमें इतना स्पष्ट आवाज नहीं पहुंच पाती थी। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम, कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हमें आकाशवाणी को पकड़ना पड़ता था। अब तो पकड़ना नहीं पड़ता है, अब तो हमारे जेब में मोबाइल ऐप के जरिए साफ क्वालिटी में आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सभी तरफ पहुंच रहा है। इस तरह की बातें हम हमारे कस्टमर को बताते हैं कि आप भी सुने, इसमें बहुत पुराने गीत आपको निकल के आएंगे, मिलेंगे सूचनात्मक ज्ञानवर्धक बातें मिलेगी। इस तरह से हम हमारा जो धंधा है सैलून का वो चलाते हैं और आकाशवाणी के साथ रहते हैं।
1: तो दशरथ जी, कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें?
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल को फोन लगाया, बहुत दिनों बाद लगाया तो अच्छा लग रहा है। इसी बीच में एक फिल्म है, फिल्म का नाम है बेटा, उसमें उदित नारायण जी ने एक गीत गाया था, कोयल सी तेरी बोले।
1: अच्छा जी, आपने अच्छे गीत की फरमाइश की है। ये रहा आपकी पसंद का नगमा, आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम।

0: जी नमस्कार।
1: अरे नमस्कार श्रीमान जी।
0: हाँ जी।
1: अरे कहते हैं जैसे चंदा और किरण से, जैसे धरती और गगन से, जैसे राधा और कृष्ण से, जैसे राम और लखन से, जैसे भाई और बहन से, ऐसा हमारा प्यार है आपसे और आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश से बंधन।
0: वाह वाह वाह, चलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस टेलीफोन कॉल की शुरुआत की है। अब हम आपका परिचय, आपका तारुफ जानना चाहते हैं।
1: अरे श्रीमान जी, अभी मान के चलिए कि जब फोन लग ही गया है और सदियों गुजर गए, ये मान के चलिए कि मैं दुबला पड़ गया हूँ, मैं और आपकी भाभी जी दोनों समझ लो कि इतने दुबले पड़ गए हैं कि क्या बताएं। जब तक बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, और मैं पता बता दूं, क्योंकि पता बताने में बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप पहचान ही गए होंगे।
0: हम तो पहचान गए, हमारे बाकी के श्रोता जो पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आपको जान रहे हैं। जी जी।
1: अरे कमाल हो गया, सब तो धमाल हो गया और मैं माला माल हो गया श्रीमान जी। भगवान से दुआ ही कर रहा था कि हमारे शिवम भैया से कब बात हो जाए, तो आज उन्होंने सुन ही लिया। मैं बता दूं कि YouTube हिंदुस्तानी कलाकार वीडियो बनाते हैं, और ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से।
0: वाह जी, खान साहब आपके इस अंदाज के तो हम कायल हैं, जिस मोहब्बत से जिस
1: आप क्या होंगे, कायल तो हम हैं और कायल रहेंगे, परमानेंट श्रोता हैं, जो कभी ही आप लोगों से विदाई नहीं ले सकते। विदाई जब ही लेंगे जब ऊपर वाला टिकट काटेगा श्रीमान जी, नहीं तो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। और भाभी जी से थोड़ी बात कर लो, ये भी तड़प रही है, मचल रही है।
0: जी जी बताइए
2: भाई साहब।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: अरे भाई साहब कैसे हैं?
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत खैरियत से होंगे।
2: भाई साहब आप आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे।
0: आपकी आवाज से तो अभी हम फिलहाल जलेबी का जो स्वाद है वो ले ही रहे हैं।
1: ये गर्व की जलेबी बनाती हैं भाई साहब, और दही के साथ खिलाएंगे, आपको मजा आ जाएगा श्रीमान जी।
0: चलिए अभी तो फिलहाल आज आपके पसंद के गीत की बारी है, हमें हाँ, लगता है कि वो गीत भी आप बिल्कुल जलेबी के माफिक निकलवाएंगे।
1: बात हुई है सर जी, ये बहुत सही बात हुई है, क्योंकि ज्यादा इंतजार के बाद जो चीज मिलती है बहुत ही स्वीट, बहुत ही लवली और बहुत ही सबनम होती है। और हम लोग एक लाइन गुनगुनाएंगे और एक नाम सिर्फ बोल देना श्रीमान जी, प्रेमदास बाबा जी, जो हमारे गुरु हैं, बुजुर्ग हैं और चिपके रहते हैं। और फिल्म का नाम है आंखें।
0: आंखें फिल्म का नाम है?
1: हाँ, नई फिल्म है गोविंदा की, हम लोग गुनगुना ले दोनों लोग, तब तो मजा आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता।
2: नाम के दीवाने जरा काम तो बता। नमस्कार भाई साहब।
0: चलिए तो बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की है, हम आपकी पसंद का ये गीत पेश कर रहे हैं।
1: जी सर जी, और शिवम भैया आपके पूरे स्टाफ को दिल से नमन करता हूँ सर जी, पूरे स्टाफ को, क्योंकि कोई नाराज ना हो जाए इसलिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया सर जी। ग्राम हजाम बोल रहे गेंद्र लाल परिहार।
1: गेंदालाल परिहार जी, कितने दिनों के बाद आपने फोन लगाया है?
0: करीब 20-25 रोज हो गए सर। ग्राम
1: अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: उलझावन जिला सीहोर जी,
1: अच्छा जी, सीहोर से बोल रहे हैं।
0: उलझान गांव से।
1: अच्छा, ये कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
0: सीहोर से सर जी 16-17 किलोमीटर पड़ता है सर
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छा
0: बिल्किसगंज
1: नज़दीक
0: रोड पे।
1: अच्छा, नज़दीक ही है।
0: जी।
1: आपके गांव में क्या है देखने लायक, क्या खासियत है गांव की?
0: सर जी गांव में किसान लोग हैं सभी है, और यहाँ पे क्या कुलनासी नदी निकली हुई है यहाँ से गांव के किनारे से,
1: अच्छा,
0: जो भोपाल के तालाब को जोड़ती है सर जी।
1: हाँ, चलिए, तो आपने अच्छी जानकारी दी अपने गांव के बारे में। अब गीत के बारे में भी बता दीजिए, कौन सा गीत आज आपके लिए हम पेश करें?
0: सर हिना फिल्म को सुना दीजिए जी,
1: हिना फिल्म का,
0: देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए
1: अच्छा, देर ना हो जाए,
0: जी।
1: ये कव्वाली आप सुनना चाहते हैं?
0: जी सर।
1: चलिए,
0: और सर
1: तो
0: सब जी सभी को आने वाले गणेश चतुर्थी और हरतादि का शुभकामना।
1: हमारी ओर से भी हमारे सभी सुनने वालों को आने वाले त्योहारों की, पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये रहा आपकी पसंद का गीत।
0: जी धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: जी आपका परिचय जानना चाहते हैं हम।
1: जी हाँ सर, मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर मध्य प्रदेश से सर मैं गोलू अहरवाल बोल रहा हूँ।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: सर मैं तो बढ़िया हूँ, और आप बताइए आप कैसे सर?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं, और जब आपसे बात होती तो हम और खुश हो जाते हैं।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही मेरी सर।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और हमें उम्मीद है कि ये फ़ोन भी आपने कई दिनों के बाद लगाया होगा।
1: हाँ सर बिल्कुल, लगभग 1-1.5 महीने हो गए होंगे इस कार्यक्रम में हमें कॉल लगाए हुए सर।
0: हाँ हाँ मतलब आप हमारी इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और मानते भी हैं कि हमारे नए नए श्रोता जुड़ सकें इस कार्यक्रम के लिए, अपना वक्त निकाल सकें, इसलिए आप लगातार लंबे अंतरालों के बाद ही हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं।
1: जी सर, एक बार आपसे हुई थी बात, हमने कॉल किया था, और एक बार कॉल किया था सर जावेद सर से बात हुई थी बात।
0: तो
1: जी
0: गोलू
1: सर,
0: भाई आज
1: और
0: कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
1: सर आप मुझे अनोखा अंदाज फिल्म का सुनवा दीजिए, तू दीवाना पागल मेरा हो गया।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने।
1: जी हाँ
0: जी, मैं दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से भैया रोशन सिंह बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी, रोशन सिंह जी दादूपुरा से बोल रहे हैं?
0: दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश।
1: अच्छा
0: जी,
1: ये उत्तर प्रदेश में बांदा के पास में पड़ता है?
0: जी जी जी, बांदा के पास में तिंदवारा में।
1: अच्छा जी, क्या करते हैं जी?
0: जी भैया मैं घर पर रहता हूँ।
1: अच्छा, रेडियो सुनते रहते हैं?
0: जी जी, DDH के माध्यम से भैया जी सुनते हैं, क्योंकि अब न्यूज ऑन AIR ऐप पे आपका वो नहीं चलता है, कोई भी चैनल नहीं चलते हैं।
1: अच्छा,
0: कृपया इस पर थोड़ा सा मतलब फोकस करें तो उस मोबाइल ऐप पे उपलब्ध हो जाता है तो ज़्यादा आसानी हो जाती है सुनने में।
1: हाँ हाँ
0: जी जी,
1: तो उस ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देखिए, हो सकता है कि वो ऐप हो सकता है पुराना हो गया होगा, उसके नए नए अपडेटेड वर्ज़न आते रहते हैं।
0: जी जी,
1: तो नया वर्ज़न अगर आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए।
0: एक बार मैंने भैया कर लिया है, मतलब ये भी प्रॉब्लम जो आपने बताई है।
1: हाँ हाँ
0: तो मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल किया है।
1: अच्छा,
0: फिर भी नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी चैनल, मतलब मीडियम भी आपके कोई भी नहीं चल रहे।
1: अच्छा, आपने घर परिवार के किसी मित्र दोस्त के मोबाइल पे एक बार करके देखिए, और अगर तब भी
0: ओके,
1: नहीं
0: हाँ
1: होता है तो
0: ये हाँ
1: आपकी,
0: करके देख लेंगे तो
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: पता चल जाएगा कि क्या।
1: जी जी हो सकता है आपके मोबाइल की समस्या हो, या फिर ये समस्या सभी के साथ में हो, तो
0: जी
1: आपकी ये आवाज़ हमारे संबंधित विभाग तक पहुंच रही है।
0: जी जी जी
1: हम चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए।
0: जी जी भैया जी, मैं गाना बता दूं
1: हाँ,
0: पहले।
1: फिलहाल कौन सा गीत आपके लिए हम निकालें वो बता दें।
0: जी,
1: अच्छा
0: और भैया
1: जी
0: मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शायद मेरी आपसे पहली बार बात
1: जी
0: हो रही
1: हाँ,
0: है।
1: आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, शिवम।
0: जी जी भैया जी, इसीलिए मुझे थोड़ा जानी मतलब नई आवाज लगी, क्योंकि इतने दिनों से सुन रहे तो सारे मतलब उनको जानते हैं
1: चलिए चलिए, ये अच्छी
0: वो
1: बात है कि
0: सब।
1: आप लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं।
0: और भैया जी
1: और
0: मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगा कि ये आपने बहुत अच्छा किया है कि अब श्रोताओं से निवेदन करके कि मतलब 10 दिनों के बाद ही कॉल करें, ताकि नए श्रोता हैं जो, तो वो भी मौका मिल सके उन्हें भी।
1: हाँ, ये हमारे इस कार्यक्रम इस तरीके से प्रस्तुत करने का जो अंदाज हमने बदला है, वो उसकी वजह ही यही है कि
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: वो श्रोता फ़ोन लगाते रहते हैं
0: जी
1: लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं है, उनकी ये
0: जी
1: शिकायत हमने बार बार सुनी है। तो इस
0: जी
1: शिकायत को
0: जी
1: दूर करने का हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी जी जी मैंने 20 अगस्त को फोन किया था, आज मतलब 23 दिनों के बाद किया है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। दूसरा गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे।
0: एक गीत है, तारों को चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर आपको। मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी सर।
0: क्या करते हैं?

0: सर मेरी दुकान है जनरल स्टोर की सारनाथ में।
1: अच्छा जी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या ये? जी
0: जी बिल्कुल पड़ता है वाराणसी में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है।
0: जी बिल्कुल
1: जी हाँ, तो आप गए हैं सारनाथ के जो
0: तो
1: बौद्ध स्तूप? अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: ये महात्मा बुद्ध जी जो पहला उपदेश दिए थे यहाँ पर गया के बाद, वही उनकी स्थली है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। बाबा विश्वनाथ का।
1: बाबा विश्वनाथ, वाह
0: जी।
1: चलिए, आपने बहुत ही अच्छी जगह से फ़ोन किया है। आपके नज़दीक में इतने दर्शनीय स्थल हैं, सुप्रसिद्ध जगह हैं।
0: जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बनारस तो ऐसे अपने आप में अजूबा है।
1: हाँ हाँ, बनारस के कहने ही क्या है। शामे अवध और सुबह बनारस के तो कहने ही क्या।
0: बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कह दी, सुबह बनारस बहुत फेमस है।
1: चलिए तो बाबू यादव जी, बताइए, आज बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश आप करने जा रहे हैं, ऐसा हमें अंदाज है।
0: बिल्कुल सर सही आपने सोचा है
1: जी।
0: और मेरी फरमाइश रहेगी, एक फिल्म है हिमालय की गोद में।
1: अरे वाह।
0: और जिसमें मुकेश जी ने गाया हुआ है कि चांद सी महबूबा मेरी ऐसा मैंने कब सोचा था।
1: वाह वाह वाह वाह, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। और
0: दो लाइनें याद देंगे तो?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि मोहब्बत में वो ताकत है, सितमगढ़ टूट जाता है, और सरीका हो तो शीशे से भी पत्थर टूट जाता है, और कभी तिरछी नजर होती है कत्ल करने को काफी, कभी ऐसा भी होता है कि खंजर टूट जाता है।
1: क्या बात है क्या बात है बाबूजी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बातें कही हैं। हम आपको इतना ही एक खूबसूरत गीत सुनवाने जा रहे हैं जो आपकी फरमाइश का है। नमस्कार।
0: आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे उन श्रोताओं से जिनसे हमारी पहली बार बात होती है, और उन श्रोताओं से जो हमारे इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि हमारे अन्य श्रोताओं के लिए मौके छोड़ें, थोड़ा सा वक्त अंतराल के बाद में फ़ोन लगाएं। आपने हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन के माध्यम से इतने खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। ये रहा आपकी पसंद का बहुत ही सुंदर सा मीठा सा नगमा। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: नमस्ते। हाँ जी, किन बात कर रहे हैं हम इस समय?
0: जी सर, मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अन्य जिला महोबा से बोल रहा हूँ सर।
1: सुरेश कुमार जी महोबा से बोल रहे हैं?
0: आज जावेद सर जी बोल रहे थे?
1: जी नहीं, मैं आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ, शिवम।
0: अच्छा जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही
1: हाँ
0: है।
1: जी सुरेश जी, आपसे पहली बार हमारी बात हो पा रही है।
0: जी
1: बताइए, महोबा के बारे में कुछ जानकारी तो हमें है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने इस शहर के बारे में बताएं, ताकि हमारे बहुत से श्रोता जो इस बारे में जानते ना हो, उनकी जानकारी में
0: जी
1: इजाफा हो।
0: हमारा महोबा शहर ऐतिहासिक नगरी से जाना जाता है और यहाँ पे आला उदल की नगरी है जो महोबा, उसी से विख्यात है।
1: जी हाँ,
0: और सावन के महीने में यहाँ मेला भी लगता है और झांकी भी निकलती है आला उदल की।
1: अच्छा, कजरी महोत्सव
0: ये
1: होता
0: कजरी
1: होगा।
0: महोत्सव
1: जी
0: ये
1: हाँ
0: समय
1: जी
0: मेला
1: हाँ।
0: चल भी रहा है
1: तो
0: और
1: कुछ
0: काफी दूर दूर से दुकानदार आते हैं
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: काफी दूर दूर सभी के घरों में मेहमान भी आते हैं देखने के लिए।
1: अच्छा, तो
0: कजरी
1: आल्हा
0: जिस दिन
1: गायन
0: निकलते
1: में
0: होते
1: भी
0: हैं।
1: आपकी कुछ महारत है या कुछ रुझान है?
0: कैसा?
1: आल्हा गायन अगर आप जानते हो तो कुछ थोड़ा बहुत हमें भी सुनवाएं।
0: जी सर, मुझे तो नहीं आता आला गायन। जी
1: अच्छा,
0: जी
1: सुनते तो होंगे आप,
0: हाँ, सुनते तो हैं। जी
1: बड़ा जोशीला गायन होता है,
0: जी
1: सुनो तो ऐसा लगता है कि रगें फड़कने लगी हैं हमारी।
0: हाँ, बहुत जोश आ जाता है।
1: तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: आज आप सुनवा देना गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर, कोई भी गीत प्ले कर देना।
1: अच्छा जी, चलिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए सुनवा रहे हैं,
0: जी
1: और प्रथम पूज्य गणराज
0: जी
1: जिनका
0: जी
1: आगमन होने जा रहा है, तो
0: जी
1: उनको वंदन करते हुए आपकी पसंद का गीत ये रहा।

0: अभी सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को है, 11:58 हुए हैं और यह समय होता है 11:58 होता है इस घंटे की खास खबरों का। तो लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ये नेता इस समय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार विषय पर मुख्य सत्र में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ईरान के आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री सैयद अली मदनीजा देह के साथ आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा में प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की किस्त के 1,835 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिवस के मौके पर उज्जैन स्थित महाकाल महालोक स्थित संपूर्ण प्रदेश में 58 लाख आशीर्वाद के दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। रक्तदान शिविरों का आयोजन भी इस मौके पर किया जाएगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों में सघन गश्त, अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का अभ्यास किया है। और पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7:00 से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा और अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, दूसरी आवाज है चंद्रानी मुखर्जी की, फिल्म का नाम है जुल्म की पुकार और इस गाने को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है सोनी कोमी का। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, इसको लिखा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़ राही, श्रीमती सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ और आकार हाइट से बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गायकवाड़, सुमित और ध्वनि गायकवाड़ परी ने। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है, लिखने वाले हैं एरोड्रम थाने के पास बंदा वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक और संजना परी, ललिता नारायण और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। सुनिएगा।

हर लगाना लिया है हमने फिल्म जाल से, आवाज़ें हैं हेमंत कुमार और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, एस जी वर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सिंहपुर बड़ा से। लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। लिखने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, नीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इन्होंने इस गाने को पसंद किया है और इसी गाने के लिए एक फरमाइश और आई है। लिखने वाले हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक, जैतेग ब्रक, मीका ब्रक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आन मिलो सजना से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसौलिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये खत आया है मंडी हारजी राम मलोट से, लिखने वाले हैं महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। सुनिए ये गीत।

ये गीत था आई मिलन। अब हम आपको गाना सुनवा रहे हैं फिल्म आई मिलन की रात का। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजें हैं। समीर ने इस गाने को लिखा है और आनंद मिलन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में खत आया है। ये पहला खत है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मोहद से। लिखने वाले हैं मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजुबाई तड़वी और सनी बाबू, साथ में परु तड़वी और समस्त तड़वी परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है असालतपुरा मुरादाबाद से। लिखने वाले मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सत साहेब रेडियो श्रोता संघ ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से। बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी आराधना आराधना, सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा ने इस गाने को पसंद किया था। और इसी गाने के लिए एक फरमाइश ये भी है ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणिता गिरी, शैलेश, सोनम और धनुष पुरी ने। इन्होंने मनोरा वाशिम से ये खत लिखा है। सुनिए इनकी पसंद का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया की 26वीं कड़ी।
1: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया,

0: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिखकर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है जमुनिया। जहां कभी गांव तक आने के लिए पगडंडी भी ढंग से नहीं थी, वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, गली गली में खंभे बिछाए गए, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बने। इन्हें गांव के गुरुजी ने तेजस और रूपस नाम दिया और एक दिन ये दोनों बच्चे गांव लौटने वाले होते हैं। जमुनिया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है सुबह से, शाम होने तक तेजस और रूपस नहीं आते। चिंतित जमुनिया बच्चों के मंगल के लिए व्रत रखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। जयंत उसे ORS का घोल पिलाता है और झुल्लन दादा के साथ शहर के अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसको देखकर सबको संतुष्ट करता है और कहता है कि कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा पानी की कमी हो गई थी और जयंत ने उसे ORS का घोल देकर बहुत समझदारी का काम किया है। रात भर के इलाज के बाद जमुनिया को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो लोग घर आते हैं, तभी तेजस और रूपस भी गांव आते हैं। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। तभी अखबार से पता चलता है कि फतेहपुर गांव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है। जमुनिया, जयंत, झुल्लन, गुरुजी और दीवान गांव के अन्य लोगों के साथ शहर जाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और गांव की ओर वापसी होती है। अब आगे
1: जमुनिया जी
2: जिंदाबाद,
1: जमुनिया जी
2: जिंदाबाद,
1: जमुनिया जी
3: जिंदाबाद। अरे भाई, अरे ये क्या है, आप लोग इस तरह से जुलूस वुलूस निकाल रहे हैं? अरे भाई, ये अच्छा नहीं लगता।
4: वही तो मैं भी कह रही हूँ,
5: पर हमें अच्छा लगता है जमुनिया जी।
6: हाँ,
5: और क्या, कुछ हमारी मर्जी का भी तो हन दो। अरे ये जो सम्मान शहर में हुआ, इसका हम सब लोगों ने तो देखा, पर गांव के बहुत से लोग इसे देख नहीं पाए हैं। इसलिए हम सब मिलकर गांव में एक मीटिंग रखते हैं और इस सम्मान का उत्सव मनाएंगे।
7: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भैया, लोगों बिल्कुल ठीक। अरे भैया, सम्मान का उत्सव तो होना ही चाहिए। अरे भाई, जितने गांव की तकदीर बदल दी, उसके सम्मान का उत्सव तो पूरे धूमधाम से होना चाहिए।
8: जमुनिया बिटिया, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा।
4: गुरुजी प्रणाम, आप ही बताइए गुरुजी, क्या ये ठीक है?
9: भाई ऐसा है बेटा कि उत्सव और अहंकार दो चीजें होती हैं बेटा। किसी भी उपलब्धि पर उत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु उपलब्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बात तुम अपने बेटे तेजस और रूपस से भी सीख सकती हो। शिक्षा किसी भी कोने से आए, उसे ग्रहण करना चाहिए बेटा।
4: समझ गई गुरुजी, आप भी इन गांव वालों की तरफ ही हो गए। आप भी ना गुरुजी।
9: अब भाई, तुम्हें मेरी शिक्षा भी पक्षपात लगने लगी है।
4: नहीं गुरुजी, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ? जी नहीं गुरुजी, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, काफी देर हो गई है, अपने अपने घर चलते हैं।
9: अच्छा।

0: देखो भाइयों, जमुनिया जी ने न केवल इस गांव की तरक्की की है कि नहीं, बल्कि इसका नाम भी रोशन किया है और जिले में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का इनाम लेकर आई है। भैया ऐसा है कि सरकार ने तो उनका सम्मान कर दिया है, अब हम लोगों का कर्तव्य है कि जमुनिया का फतेहपुर गांव की ओर से एक बड़ा सम्मान होना चाहिए,
1: बिल्कुल होना चाहिए,
0: ताकि उनका हौसला बढ़े और साथ ही साथ हम लोगों को अच्छा लगेगा। भैया
2: आप ठीक कह रहे हो भैया, मैं भी अपनी रजामंदी देता हूँ। फतेहपुर ग्राम पंचायत की ओर से जमुनिया जी का भव्य स्वागत किया जाएगा, ताकि भैया सरकार तक ये संदेश जाए कि जमुनिया अपने गांव में भी कम लोकप्रिय नहीं है।
3: ठीक कह रहा भैया चंपालाल, बहुत सही बात कही तुमने। अरे गांव के सब लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम बनाओ यार, के ताकि जमुनिया जी के सम्मान का भव्य आयोजन हो, और न केवल जिले तक बल्कि पूरे प्रदेश तक हम लोगों की सफलता का संदेश
0: पहुंचेगा।
3: अरे भैया आज फतेहपुर के ग्रामवासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जमुनिया इस गांव की आदर्श है।
0: भैया हम लोग सहमत है, और क्या, और गांव के सब लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाएंगे,
3: बुलाओ,
0: जिसमें तय होगा कि जमुनिया जी का भव्य सम्मान कैसे किया जाए।
3: ये प्रोग्राम

0: अच्छा मुनिया, सुख दुख सफलता विफलता को आप इतनी आसानी से कैसे स्वीकार लेती हैं? जिस विफलता से आदमी टूट जाता है और जिस सफलता से उसका दिमाग खराब हो जाता है, दोनों में आप धैर्य से निकल जाती हैं। ये मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है।
1: आप लोगों को कुछ सुनाऊं?
2: क्या बाबा?
0: अरे बाबा, अब क्या सुनाएंगे आप? अभी आज जो कुछ शहर में हुआ है उससे हम सब गदगद हैं। अब और क्या हो गया?
1: अरे बेटा, आपको शायद पता नहीं होगा कि गांव में जमुनिया को सम्मानित करने के लिए एक योजना बन रही है। हाँ, और मुझे अभी अभी पता चला है कि गांव के लोग जमुनिया को ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं, और वो भी बेटा बड़े पैमाने पे।
0: अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने।
2: यही सब गड़बड़ है। इस तरह से सम्मान समारोह व्यक्ति का दिमाग खराब कर देता है, जिसमें वो अहंकारी हो जाता है। शायद इसीलिए गुरुजी ने ये बात कही थी कि उपलब्धि का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और गांव में, इस गांव में बस यही हो रहा है। समय, पैसा और श्रम,

0: सब बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा होता कि यही सब किसी रचनात्मक काम में लोग लगाते। 5 मिनट के लिए मुझे मंच पर बुलाकर हार फूल पहनाकर तालियां बजाकर अरे क्या हासिल होगा।
1: बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन अगर अच्छे काम का सम्मान ना भी किया जाए तो आदमी धीरे धीरे ऊब जाता है और फिर उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। कई बार ऐसे सम्मान और तालियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, ये मत भूलो।
0: अच्छा तू तो रहने दे, सिखा मत मुझे। जयंत बाबू आप बताइए ना।
2: अभी तो मैं तुम्हारे और तेजस के बीच में हूं, और तेजस की बात गलत नहीं है जमुनिया, और तुम भी सही कह रही हो, इसमें कहीं कोई टकराव नजर नहीं आता मुझे। हाँ, बस जब तक गुरुजी की शिक्षा काम में आए तब तक उपलब्धि अहंकार में ना बदल जाए।
0: मैं सब समझ रही हूं।
3: अरे बिटिया, जब समझ ही रही हो तो अब इतने लोगों की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी बिटिया।
0: मैं समझ गई बाबा, लोगों में रहकर आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते हो। फिर भी मैं कोशिश तो करूंगी कि उत्सव वगैरह ना हो।
3: हाँ बेटा।
4: चलो अच्छा, अब सब लोग आराम कर लो, थके हैं ना सब लोग, अब बाकी बातें अब हम कल करेंगे।
0: हाँ बेटा चलो आराम कर ले।

0: क्यों रूपस, तुझे नहीं लगता कि अम्मा कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रही हैं?
1: लग तो मुझे भी रहा है भैया, लेकिन जिन हालात से अम्मा गुजरी हैं उसमें प्रसन्न होने या उत्सव मनाने के अवसर बहुत कम थे, इसलिए वो ऐसी हो गई हैं।
0: देखो रूपस, जीवन भर एक ही सुख या एक ही दुख नहीं रहता, ये आते जाते झोंके हैं और हम सबको जैसा समय आए उसी हिसाब से चलना सीखना चाहिए।
1: ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर
0: हमेशा धारा के विरुद्ध चलना ही संघर्ष नहीं होता, कई बार समय के साथ भी चलना पड़ता है। चलो अच्छा, देखते हैं गांव वालों की क्या राय है।
1: हाँ भैया, देखते हैं।
2: अरे तुम लोग बाहर बैठे क्या कर रहे हो, अंदर आओ, थोड़ी गपशप करें, बातें करें। वैसे भी दो दिन बाद तो चले ही जाओगे ना।
0: अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं, अब रूपस तो यहीं रहेगी ना अम्मा, और मैं भी आता जाता रहूँगा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो और खुश रहना सीखो।
3: देखा जमुनिया, बच्चे भी तुमसे खुश होने की बात कह रहे हैं।
2: क्या केवल हंसने से ही खुशी जाहिर होती है?
3: अरे मैंने ऐसा कब कहा।
4: अरे भाइयों, सुनो यार भैया, मैं तो सोचता हूँ कि जमुनिया जी को,
5: सुनो यार,
4: हाँ भैया, मैं तो सोचता हूँ कि जमुनिया जी को सरकार ने 10,000 रुपया दिए हैं, है कि नहीं है? तो कम से कम हम लोग मिलकर उन्हें 15,000 की राशि, साल और श्रीफल दे।
6: अरे भैया, अरे भैया, रुपए पैसे से सम्मान कम ज्यादा नहीं होता भाइयों। हम लोग मिलकर जमुनिया जी का आदर करें, उनकी बात सुने, ये ही बहुत अच्छा होगा।
7: अच्छा, अरे अच्छा, देखो देखो, एक बात सुनो यार, चलो रुपए पैसे की बात छोड़ भी दो, पहले तो जमुनिया जी को पंचायत भवन की ओर से एक प्रशंसा पत्र बनवाएंगे, खूब अच्छा सा, और उसे फ्रेम करके गांव के जितने पंच हैं वो सब जमुनिया के बारे में एक एक करके बोलेंगे अपनी अपनी।
8: सही है ना
7: हाँ
8: भैया, ताकि अरे जमुनिया जी को लगना तो चाहिए कि उन्होंने जो श्रम इस गांव के लिए किया है उसका हम लोग कितना आदर करते हैं, है कि नहीं? अरे

0: अरे भैया, समय समय पर वो जो राय देती है ना, उसका भी उल्लेख करेंगे, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात हम सब सुनते हैं। हाँ, और हम सबसे उन्होंने कही थी कि 5 साल से बड़ा कोई बच्चा घर में नहीं रहेगा, है कि नहीं? याद है सब जनों को? कही थी ना, है ना? उसे स्कूल जाना है, यानी कि 5 साल से बड़ा हर बच्चा स्कूल जाएगा और घर का सारा काम बड़ों को ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। और उसे न केवल जमुनिया जी ने कहा, बल्कि भैया खुद भी किया, है कि नहीं? और आज देख लो, उनके बच्चे कितने होनहार निकले हैं।
1: हाँ भैया, भैया वो कहती रही कि मान लो बच्चे आपके काम नहीं भी आए, तो बच्चे अपने खुद के काम तो आएंगे और आप पर बोझ भी नहीं होंगे। उन्होंने साफ सफाई की बार बार अपील की और उसका लाभ हम लोग देख ही रहे हैं।
0: पुरस्कार मिल गया गांव की पंचायत।
2: अब देखो भैया, एक बात सुनो,
0: सुनो सुनो,
2: अब इधर की बात को इधर उधर मत मोड़ो यार। अबे हम लोग काय के लिए इकट्ठा हुए हैं बोलो? अरे भैया, इसलिए इकट्ठा हुए हैं ना कि जमरिया जी का भव्य स्वागत करना है।
1: जी हाँ, तो
2: है? करना है कि नहीं?
1: हाँ करना है। तो
2: भाई की बात करो ना यार।
1: वो तो ठीक है भाई, प्रस्ताव बनाया जाए और पढ़ा जाए।
0: तो भाइयों, ये सब तय करने से पहले हमें एक बार जमुनिया जी से पूछ लेना चाहिए, हैं? अब भैया मान लो हम सब तैयारी करें और वे राजी ना हो, तो अब कैसा लगेगा?
1: अरे ऐसे कैसे मना कर देंगी? उनका कहा हम सब लोग कर रहे हैं, तो फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगी क्या?
2: हाँ, ये बात तो सही है। तो भैया एक काम करो, फिर देखो यार, अब पहले बैठो, प्रस्ताव बनाओ।
0: ये भी सही है,
2: प्रस्ताव बनाओ और उसका अनुमोदन करो। उसके बाद फिर अपन जमुनिया जी को दिखाते हैं।
0: सही,
2: उसमें कुछ कुछ रद्दो बदल करनी हो, फेर फार, कुछ काटा पीटी कर देंगे,
0: संशोधन कर लेंगे।
2: ऐसा कर लो,
0: ठीक है भाई?
2: ठीक है,
0: चलो, सबकी राय हो गई।
3: देखिए, सरकार की तरफ से सम्मान हुआ, गांव का नाम हुआ, अच्छा लगा। अब अपने ही गांव में इस तरह का प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता।
4: देखिए जमुनिया जी, अब जो हमने तय कर लिया है उसमें ना नौकर की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी अपने ही गांव में अपने आदमी की ज्यादा कदर होती नहीं है। आपकी इज्जत हम लोगों के मन में बहुत है और इसलिए हम सबको एक उत्सव मनाने दीजिए। आप उसके तौर तरीकों पे कहीं कोई फेरबदल चाहेंगी तो हमें बता देना, आप, हम कर देंगे।
3: अरे भैया, जब आप लोग तय कर ही बैठे हैं तो फिर मेरी राय की कोई जरूरत नहीं है, जैसा उचित समझे कीजिए। पर मैं तो कहूँगी कि पैसा, समय और मेहनत व्यर्थ होता है इसमें।
0: अब आप तो ये सब तो आप छोड़िए जमुनिया जी, है? हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसलिए हम ग्राम सभा की ओर से आपका सम्मान करेंगे, ये तो तय है।
3: तो ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे क्या करना होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है?
1: अरे लगता है जमुनिया जी नाराज हो गई।
3: ना भाई, ना, ये इल्जाम तो मत दीजिए। नाराजगी की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बैठी रहूं और आप लोग मेरे मान सम्मान की बातें करें तो सुनकर वो भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग निर्णय कर डालिए, जो मुझे करना होगा वो बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ।
5: साथियों, हमारे गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है, जिसे सरकार ने जमुनिया जी को बड़े मान सम्मान के साथ प्रदान भी किया। पर इस अवसर को गांव के ज्यादातर लोग देख नहीं पाए, इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि आज जमुनिया जी को हम हमारे ही गांव में अपने लोगों के बीच में सम्मानित करेंगे और हम सब मिलकर उनकी बातें भी सुनेंगे। वैसे भी आप सबको

0: जैसे भी जब भी हमसे कहेंगी हम लोग उनके कहे अनुसार चलते रहेंगे। और भाइयों, कोई पंच कुछ और कहना चाहता है तो आमंत्रित है।
1: कहना तो बहरे में बदलते भारत का भविष्य है, जिसे मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जयंत जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिनके ज्ञान का लाभ इस गांव को मिला और हम लोग इस तरह से आगे बढ़े। बस धन्यवाद।
2: देखिए भाइयों, एक बात मुझे सिर्फ कहनी है कि जमुनिया जी जितनी गंभीरता से सोचती और मनन करती हैं और अपने गांव के भले के लिए रास्ते निकालती हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ।
0: और कोई बोलना चाहता है जमुनिया जी के बारे में? भाई जमुनिया जी तो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगी, पर मैं चाहता हूँ इससे पहले जयंत जी कुछ कहें। भाई आप सब ने देखा होगा कि जयंत जी ने इस गांव में इस तरह घुल मिलकर काम किया है, किसी को लगा ही नहीं कि जमुनिया की इतनी प्रबल सोच के पीछे किसका हाथ है। आइए जयंत जी, आप कुछ कहिए, जरूर कहिए आप कुछ।
3: साथियों, मैं जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा, पर मैं चाहता हूं कि गुरुजी पहले मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें।
0: आइए गुरुजी, आइए।
4: साथियों, मैं तो बहुत सालों से इस गांव में हूं और अब से पहले मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बातें, मेरा ज्ञान किसी के काम आएगा, पर जमुनिया जी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक गुरु शिष्य में अच्छा ज्ञान भर सकता है तो एक अच्छा शिष्य गुरु की यक्ष कीर्ति को दूर दूर तक फैला सकता है। मैं तहे दिल से जमुनिया को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबको बताना चाहता हूं कि अच्छे गुरु और शिष्य मिलकर समय की धारा को मोड़ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं इस अवसर पर। धन्यवाद।
0: अरे भाइयों, हमारे बीच दीवान जी भी बैठे हैं। दीवान जी, आप तो कुछ कहिए।
5: भाइयों, मैं इसके सिवाय और क्या कहूं कि आप लोगों के खुशी से दमकते चेहरे इस गांव की बदलती सूरत की कहानी बयान कर रहे हैं। अरे अच्छा नेतृत्व हो तो उसका साथ देने वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं। आप सबने एक अच्छे काम के लिए कंधे से कंधा मिलाया तो सुखी और खुशहाल गांव हमारे आपके सबके सामने हैं। अरे जमुनिया के साथ साथ मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। जय हिंद।
0: तो मित्रों, आपने सबकी बात सुनी और अब हम चाहेंगे जयंत जी अपनी बात कुछ ना कुछ जरूर कहें।
3: साथियों, मैं तो मेघा और शिल्पी के साथ इस गांव को एक पर्यटक की तरह देखने आया था। वो भी आज यहां होते तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। और इस बीच जमुनिया जी की तपस्या और आप सबकी गांव को बदलने की नियत देखकर मुझे लगा कि मुझे भी आपका साथ देना चाहिए और इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया। और आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस गांव का एक नागरिक हूं। अब और क्या कहो, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। और अब भाइयों, अंत में जमुनिया जी से उनकी बातें सुने, एक बार ताली बजाइए आप जमुनिया जी के लिए।
6: भाइयों, मुझे भाषण देना तो आता नहीं, मैं तो इस गांव में वो चीजें देखना चाहती थी जिसकी जरूरत हम सबको है। जयंत जी ने मुझे रास्ते बताए और आपने जो अधिकार दिया था उससे सारी चीजें इस गांव में आ पाई, और अभी तक जो नहीं आ पाया उसके लिए मैं कोशिश करती रहूंगी। इस मौके पर

0: अंत में झुल्लन बाबा, गुरुजी और जयंत जी का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, जो अगर न होते तो ये जमुनिया ऐसी ना होती। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद है जमुनिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो काम किया है सारे गांव के लिए। अब हम जमुनिया जी को उनका प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट करेंगे और साथ में 15,000 रुपये की सम्मान राशि भी देंगे साथियों। और एक बात और बता दें, ये सारे के सारे पैसे हम लोगों ने सम्मान के लिए आपस में मिलकर जुटाए हैं, इसलिए ये कोई अन्यथा ना ले कि हम कोई कृपादान कर रहे हैं, ठीक है ना साथियों?
0: आप सबके इस सम्मान का शुक्रिया। सरकार ने मुझे 10,000 रुपये दिए, 15,000 रुपये आप लोग दे रहे हैं, ये 25,000 रुपये मैं ग्राम सभा को देना चाहती हूं और इसका फंड बनाकर कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना चाहती हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जमुनिया की कहने सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करने गुनो मेरे भैया, जमुनिया की कहने सुनो मेरे भैया।
3: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया, कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने के हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सभ्यता में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि पूरक हैं। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ईरान के आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह के साथ आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जतेंद्र नाथ दास का सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा में प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की किस्त के 1,835 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में एक और हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। यह DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजा है। जी हाँ, और ये समय होता है महिला कार्यक्रम का। तो लीजिए, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतर शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बप्पा का प्रिय भोग मोदक। सखियों, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश के स्मरण से किया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनके स्वरूप में जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने के अनेक संदेश भी छिपे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस बार गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अनेक स्थानों पर 10 दिनों तक उत्सव का वातावरण बना रहता है। बहनों, गणेश जी का स्वरूप जीवन के कई संदेश देता है। भगवान गणेश का बड़ा मस्तक हमें बड़ी और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कान कहते हैं कि हमें अधिक सुनना और कम बोलना चाहिए। छोटी आँखें एकाग्रता का संदेश देती हैं, तो लंबी सूंड परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। जीवन में केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उचित समय और उचित स्थान पर विवेकपूर्ण उपयोग करना भी आवश्यक है। बहनों, हमारे शिवपुरी के गणेश उत्सव की रौनक और छटा देखते ही बनती है। यहाँ गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और हमारी अनूठी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत संगम है। बहनों, गणेश चतुर्थी आते ही पूरा शिवपुरी रोशनी से नहा उठता है। कमलागंज की वो विशाल और भव्य मूर्तियाँ, माधव चौक और राजेश्वरी रोड के वो जगमगाते पंडाल, सच मानिए इन रास्तों से गुजरते हुए मन भक्ति से भर जाता है। इन 10 दिनों में हमारे शहर के पंडाल छोटी छोटी कला दीर्घाएं बन जाते हैं। कहीं बच्चों के डांस और सिंगिंग कंपटीशन की खिलखिलाहट होती है, तो कहीं छप्पन भोग और महाआरती के बाद देर रात तक गूंजती भजन संध्या और रामधुन की स्वर। सखियों, गणेश उत्सव की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखाई देती है। बच्चे उत्साह से सजावट में भाग लेते हैं, महिलाएं पूजा और प्रसाद की व्यवस्था करती हैं, युवा आयोजन और सामाजिक गतिविधियों में योगदान देते हैं तथा बुजुर्ग अपने अनुभव और मार्गदर्शन से उत्सव को सार्थक बनाते हैं। गणेश उत्सव केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और सामूहिक सहभागिता बढ़ाने का पर्व भी बन जाता है। बहनों, मंगलदाता श्री गणेश हमारे जीवन के सभी विघ्न हरें, हमारे मन में सद्बुद्धि और विवेक भरें, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाएं और हमारा समाज प्रेम सद्भाव और सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता जाए।

0: बहनों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी राजभाषा हिंदी की। भारत विविधताओं का देश है, जहां कदम कदम पर बोलियां और भाषाएं बदल जाती हैं। इन सभी भाषाओं के बीच हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमारी मातृभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद साल 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और लोगों को अपनी संस्कृति व विरासत के प्रति जागरूक करना है। बहनों, हिंदी कितनी सुंदर है, इसे समझने के लिए हमें किसी बड़े शब्दकोश की आवश्यकता नहीं। घर में माँ की पुकार, पिता की सीख, दादी नानी की कहानी, मित्रों की हंसी मजाक और त्योहारों की शुभकामनाओं में जो भाषा सहज रूप से सुनाई देती है, वही तो हमारी हिंदी है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सरल भी है, सहज भी है और सरस भी। हिंदी हमारे संवाद को केवल अर्थ नहीं देती, उसमें अपनापन भी भर देती है। हिंदी हमारे जीवन के हर रंग में दिखाई देती है। लोकगीतों में हिंदी है, कहावतों में हिंदी है, कबीर के दोहों से लेकर तुलसीदास की चौपाइयों तक और प्रेमचंद की कहानियों से लेकर आधुनिक लेखन तक हिंदी ने समाज को सोचने और समझने की नई दृष्टि दी है। हाँ, समय के साथ भाषा भी बदलती है। हिंदी ने दूसरी भाषाओं से अनेक शब्द अपनाए हैं और दूसरी भाषाओं ने भी हिंदी से शब्द लिए हैं। भाषा का यही स्वभाव उसे जीवंत बनाता है, इसलिए किसी दूसरी भाषा को सीखना हिंदी से दूर होना नहीं है। हमें अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी हिंदी बोलने और लिखने में कभी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाषा किसी को छोटा बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए होती है। बहनों, हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि अपने संस्कार, अपनी संवेदना और अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बनाएं। सखियों, अब हम इसी विषय पर आपको एक वार्ता सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक। वार्ताकार हैं श्रीमती इंदु पाराशर।
1: हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशेष योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की दृष्टि से निम्न चार कालों में विभक्त किया गया है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल, जिसका संबंध 1050 से 1375 तक रहा। मध्यकाल, मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, संबत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीति काल, 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल संबत 1900 से अब तक। आदिकाल वीर गाथा काल विक्रम संबत 1050 से 1375 तक। हिंदी साहित्य में युद्धनाद, शास्त्रों की झनकार एवं कोलाहल विद्यमान रहा। इस काल में लिखे गए ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं हैं, अतः इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। वीर गाथाएं मुक्तक एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गईं। कवि प्राय राज्य आश्रित रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा गाकर करते थे। इस काल में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही। इस काल के कवि चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, दलपति विजय तथा जगनिक आदि प्रमुख थे। मध्यकाल दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संबत 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल कहा गया। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। हिंदू मुस्लिम के मध्य विद्वेष की भावनाओं को इस तरह एकता के सूत्र में बांधकर जनता में भक्ति का प्रचार किया गया। धर्म के मस्तिष्क पर से हटकर हृदय ने आश्रय लिया, इसलिए इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल की समय सीमा में दो काव्य धाराएं थीं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा, इस धारा में योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को अपनी कृतियों में प्रधानता दी। इस काल के कवियों ने आडंबर का विरोध कर मन की पवित्रता पर बल दिया। सगुण धारा, भक्ति काल में ही सगुण भक्ति का प्रतिपादन हुआ। आचार्य रामचरितमानस इस काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उत्तर काल यानी रीतिकाल, रीतिकाल का समय 1700 से संबत 1900 तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की काव्यगत रीतिबद्धता की मूल प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा गया। इस काल के कवि अपनी कविताओं में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुमुखी रूप से वर्णित करते थे। इस काल में श्रृंगारिक कविताएं लिखी गईं, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ हिंदी संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। आधुनिक विकास के क्रम को निम्न भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। भारतेंदु युग हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव स्वरूप इस काल में भक्ति प्रेम और रहस्यवाद से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे महान कवि हुए थे। रीतिकाल लगभग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इस काल में श्रृंगार सौंदर्य और राज दरबारों से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं विकसित हुईं, जिसमें केशवदास, बिहारी, घनानंद जैसे कवि हुए। अब आता है आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक। यह काल हिंदी गद्य और पद्य के विकास का काल है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविताएं जैसे विभिन्न साहित्यिक दौर आए। इसमें खड़ी बोली गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का गद्य है। सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परेशानियों को प्रमुखता से उकेरा गया है। भारत में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना के अनुकरण का गहरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। इसमें हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का विकास किया गया। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस काल का कवि समकालीन परिस्थितियों का मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने में अनूठी सफलता प्राप्त कर चुका। बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन वेश। सामाजिक चेतना के स्वर में ऐसे ही विचार हमें प्रताप नारायण मिश्र के काव्य में मिलते हैं, जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध करते हैं। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवें, करे पतिव्रता यज्ञ लेवें। यत्र तत्र राम और कृष्ण पर आधारित रचनाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निर्गुण भक्ति का अनुराग प्रस्तुत किया है। सांझ सवेरे पंछी सब क्या करते हैं, कुछ तो हो रहा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। मैं नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, भूतल को स्वर्ग बनाने आया। अब द्वितीय योग, इसमें हमें देशभक्ति का स्वर उत्तरोत्तर विकास होता गया। भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्बुद्ध और प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। कवि शंकर का बलिदान गान शीर्षक कविता की पंक्तियां दृष्टव्य हैं। देशभक्त वीरो, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब यदि हम आदिकाल के कवियों के विषय में चर्चा करें तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथाकाल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन, चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन। यह काल हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ और हिंदी साहित्य का विकास भी हुआ, हिंदी भाषा का भी विकास हुआ। अब यदि हम आदिकाल से आधुनिक काल की विशेषताओं के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जिसमें धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर रचनाएं हैं, जैसे रासोकाव्य। रासोकाव्य वीरगाथात्मक साहित्य का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें वीरता, प्रेम और युद्धों का वर्णन है। इसके प्रमुख उदाहरण पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और परमार रासो है। इसके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे कि विद्यापति की पदावली। आदिकाल में युद्धों के वर्णन के बाद भक्ति काल में भक्त कवियों ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक समानता पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत भक्ति और प्रेम, सामाजिक समानता, गुरु महिमा, काव्य शैलियों का प्रयोग, लोक कल्याण, साकार और निराकार

0: साकार ब्रह्म की उपासना रहस्यवादी कविता का प्रारंभ है। आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। अतः हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यकार हैं जिनका स्थान अद्वितीय है। जिस प्रकार से आकाश में असंख्य तारे हैं किंतु चंद्रमा को ही अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में अनेक कवि हैं किंतु हिंदी पद्य साहित्य में कतिपय कवियों का स्थान ही सर्वोपरि है।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक। वार्ताकार थी श्रीमती इंदु पाराशर। बहनों, अब हम बात करेंगे उस माध्यम की जिसने भारत के करोड़ों घरों में केवल मनोरंजन ही नहीं पहुंचाया, बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कार और भारतीय संस्कृति को भी घर घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दूरदर्शन की। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1959 में भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। आगे चलकर दूरदर्शन देश के जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का सफर केवल तकनीक के विकास की कहानी नहीं है, यह भारत के बदलते सामाजिक जीवन, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक स्मृतियों की भी कहानी है। एक समय था जब घर में टेलीविजन आना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। शाम होते ही परिवार के सदस्य एक साथ बैठते और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का इंतजार करते। उस समय मनोरंजन केवल मनोरंजन नहीं था, उसमें सीख भी थी और संस्कार भी। दूरदर्शन ने हमें देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति से परिचित कराया। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएं, त्योहार, परंपराएं और देश के विभिन्न क्षेत्रों की जीवन शैली, इन सबको दूरदर्शन ने लाखों दर्शकों तक पहुंचाया। दूरदर्शन की एक बड़ी विशेषता रही है ज्ञान को सरल भाषा में घर घर तक पहुंचाना। शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता मिली। कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकों और उपयोगी जानकारियों से परिचित कराया गया। स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों ने भी लोगों को शिक्षित किया। विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए दूरदर्शन लंबे समय तक जानकारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहा। जिस व्यक्ति के लिए किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं था, उसके घर तक दूरदर्शन के माध्यम से वह जानकारी पहुंच जाती थी। दूरदर्शन के पुराने कार्यक्रम आज भी अनेक लोगों की स्मृतियों में बसे हुए हैं। परिवार के साथ बैठकर कार्यक्रम देखना, किसी लोकप्रिय धारावाहिक के समय घर के काम रोककर टेलीविजन के सामने बैठ जाना, ये सब हमारी पीढ़ी की खूबसूरत यादों का हिस्सा है। बहनों, दूरदर्शन ने देश को केवल दिखाया नहीं, बल्कि देश के अलग अलग रंगों को एक दूसरे से परिचित कराया। उसने गांव और शहर, पहाड़ और मैदान, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सभी को एक साझा राष्ट्रीय मंच दिया। सखियों, दूरदर्शन को केवल एक प्रसारण माध्यम कहना उसके योगदान को सीमित करना होगा। यह हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों का संग्रहालय, ज्ञान का माध्यम, जन जागरूकता का साधन और भारत की विविधता को दिखाने वाला एक दर्पण रहा है। सखियों, बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। सिंहासन सजेगा, घर महकेगा और भोग की थाली भी होगी विशिष्ट। इस गणेशोत्सव बप्पा को अपने हाथों से बनाकर खिलाएं उनके प्रिय मोदक। तो आज खाना खजाना में हम आपको बता रहे हैं नारियल गुड़ मोदक की विधि। तो पहले नोट कीजिए इसमें लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, 1 कप पानी, 1 छोटी चम्मच घी, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले भरावन तैयार करेंगे। कढ़ाई में नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गुड़ पिघल जाए और नारियल में अच्छी तरह से मिल जाए, और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब आप गैस बंद कर दें। अब इसमें इलायची पाउडर डाल दें और भरावन को ठंडा होने दें। अब एक पैन में पानी घी डालकर उबालें। पानी उबलने लगे तो गैस धीमी करके चावल का आटा डाल दें और उसे अच्छी तरह से मिला लें। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। हल्का ठंडा होने पर हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर आटे को नरम और चिकना गूंथ लें। अब आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लें। एक लोई को हथेली पर रखकर कटोरी जैसा आकार दें। इसमें 1 चम्मच भरावन रखें और किनारों को ऊपर लाकर अच्छी तरह से बंद कर दें। मोदक को घी लगी छलनी या स्टीमर में रखें। ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट भाप में पकाएं। जब मोदक चमकदार दिखाई देने लगे तो वे तैयार हैं। तैयार मोदक पर थोड़ा सा घी लगाएं और भगवान गणेश को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। बहनों, बप्पा हमारे घर आंगन में सुख शांति लेकर आएं, हर परिवार में खुशियां भरें और हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। इसी मंगल कामना के साथ अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगी हमारी अगली प्रस्तुति।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की।

0: best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं विनोद कुमार सेन और साथी रतन कुमार, रतन लाल कुशवाहा और बादाम सिंह और साथी।

0: ये थी शीला वर्मा। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम, आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी ये। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हो चुके हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।
2: मुझे मत रोको,

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आशा से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कुछ ही देरों में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। सम्मेलन में ब्रिक्स देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन

0: गाइडलाइन तैयार की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, बुरुंडी, युगांडा और नाइजीरिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शनिवार को ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली के घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में सीधे 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई जाएगी। अब तक महिलाओं के खातों में करीब 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मानव अधिकारों के संरक्षण और शासकीय योजनाओं की पहुंच पर चर्चा हुई। इस दौरान जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने आयोग की विषय आधारित स्मारिका और डायरी का विमोचन किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हर व्यक्ति के हितों अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58,00,000 आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेजों की खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। इसके तहत 12 से 16 सितंबर तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस दौरान सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों में खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी 16 सितम्बर तक संबंधित कॉलेज में पहुंचकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भगवान महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया और पंचामृत से अभिषेक पूजन हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सूखे मेवे, सिंदूर और आभूषणों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज धार, बड़वानी में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जबकि इंदौर, उज्जैन संभाग सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के

0: लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिशकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स के स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
6: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो,

0: उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बाल सभा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी बच्चों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी संयोगिता दीदी। तो देखिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं बहुत सारे बच्चे और उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बारी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निहिरा उपाध्याय और मेरे तरफ से सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा कि हम गणेश उत्सव हर साल सेलिब्रेट करते हैं 10 दिनों के लिए। इको फ्रेंडली गणेश जी को लेकर आते हैं, उनको दुर्वा अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनकी आरती करते हैं हर दिन
0: आरती करते हैं। और बच्चों को साल भर इंतजार होता है गणेश उत्सव का, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चारों दिशाओं से बच्चों की, हमारे परिवार की सुरक्षा भी करते हैं।

करते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं बच्चों कि गणेश उत्सव की सार्वजनिक रूप से शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बताती हूँ। सार्वजनिक गणेश उत्सव की आधुनिक शुरुआत है ना भारतवर्ष में 1893 में महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बड़े पैमाने पर सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का रूप तिलक जी ने दिया था। भारतीयों को एकजुट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीयों को एक मंच पर लाने का काम गणेश उत्सव के दौरान किया गया। जातिगत दूरियां मिटाना, समाज में सभी वर्गों को एकजुट करना, एक साथ जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। मेल मिलाप और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए देशभक्ति की भावना जगाना अंग्रेजी काल में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। तो तिलक जी ने सोचा कि सबसे अच्छा मौका है भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का। तो उन्होंने बड़े स्तर पर गणेश उत्सव की शुरुआत की और ये परंपरा आज पूरे भारतवर्ष में हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में दिखाई दे रही है। तो आप लोग भी इस उत्सव में शामिल हों और बुद्धि के देवता जो चहुं ओर से हमारी रक्षा करते हैं उनका उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं बच्चों। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, इको फ्रेंडली गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी घर पर ही बनाएं और उन्हें घर पर ही विसर्जित करें ताकि हमारी नदियां, तालाब और कुएं सुरक्षित।

0: तो नीरा ने तो बता दिया कि किस तरह से वो तैयारी करती हैं। और एक बात और मैं नीरा से जानना चाहती हूँ, जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करती हैं, तो क्या मन में लेकर आराधना करती हैं नीरा?
1: जी हाँ, मैं मन में आराधना लेकर आती हूँ कि गणेश जी बुद्धि के देवता है और हमें

0: हर बार आगे बढ़ाते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हर बच्चा गणेश जी की पूजा करे और आगे बढ़ता रहे। नेहरा, ये तो हुई गणेश उत्सव की बातें जो हम कल मनाने वाले हैं, है ना। इसके अलावा आप कौन सी क्लास में हैं, अपने श्रोता साथियों को ये भी बताएं।
0: जी, मैं 6th class में हूँ और मैं कराटे भी खेलती हूँ 5 साल से ऐसे तो।
1: हाँ, तो निहिरा खेलती हैं कराटे गेम, है ना। तो निहिरा, ये शुरुआत आपने कैसे की, इस गेम को चूज आपने किस तरह से किया?
0: ऐसे तो ये गेम मैंने नहीं चूज किया है, पर मेरी माँ ने चूज किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं और मेरी माँ घूम रहे थे और मेरी मम्मी को दिखा गया कि एक कराटे क्लास हो रही थी, तो उनको लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए कि थोड़ा लड़ते हुए, क्योंकि मैं तो बहुत नन्ही सी बच्ची थी।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन करवा दिया।
1: हाँ, तो ज्वाइन करने के बाद अब आप एंजॉय कर रही हैं?
0: जी, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: कितने साल से आप कराटे गेम्स में हैं?
0: अब मैंने तो 2021 में स्टार्ट किया था, तो अभी मुझे 5 साल हो गए हैं।
1: अच्छा, तो 5 साल की जो प्रैक्टिस रही है आपकी, वो किस तरह की रही है? जो नन्हे साथी हैं उनको ये भी बताइए।
0: बहुत मेहनती है कराटे खेलना। बहुत मन लगा के खेलना होता है। मेहनत करनी होती है, मन लगा के खेलना होता है। और दिमाग से भी तेज होना चाहिए कि आपका ओपोनेंट क्या कर रहा है।
1: कोई भी गेम जब हम खेलते हैं तो हम अपने विरोधी को ध्यान में रखकर खेलते हैं, है ना। उसको अगर ध्यान में नहीं रखकर खेलेंगे तो हमारी पराजय भी हो सकती है। यही कहना चाहती हो नीरा?
0: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ।
1: आपकी कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है?
0: हर रोज मेरी 1.5 घंटे की प्रैक्टिस होती है, मतलब 3 घंटे।
1: 3 घंटे, तो 3 घंटे कैसे डिवाइड करती हैं आप? लगातार 3 घंटे खेलती हैं?
0: नहीं, मैं सुबह सुबह 1.5 घंटे खेलती हूँ, 2 से 3.5 1.5 घंटे खेलती हूँ।
1: अच्छा, तो इस बीच में जो आपके स्कूल की पढ़ाई है वो मैनेज कर लेती हैं आप?
0: जी, मैं तो कर लेती हूँ।
1: कैसे मैनेज कर पाती हैं?
0: देखिए, मैं आफ्टरनून के प्रैक्टिस के बाद घर आती हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं 1.5 घंटे के लिए पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद खेलती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मेरा सोने का समय हो जाता है।
1: अच्छा, तो कराटे जब आप खेलती हैं तो इसके जो मूवमेंट होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो मतलब किस तरह से हैं, हमारे बच्चों को बताइए ना।
0: एक्शंस ऐसे हैं जैसे आपको अपना हाथ चलाना होता है, पैर चलाने होते हैं, और ऐसे तो 2 टाइप्स के होते हैं, कुमीते और काता। कुमीते आपको फाइट जैसा होता है, और काता एक सीरीज ऑफ किक्स एंड पंचेस होते हैं।
1: तो ये जो पंचेस होते हैं आपके, किक्स होते हैं, तो बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप अटैक कर सकते हैं, या बॉडी के अपर पार्ट या लोअर पार्ट, ऐसा कुछ डिवाइड है इसमें?
0: ऐसे तो लोअर पार्ट में कभी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपको वार्निंग मिल जाती है, और
1: अच्छा,
0: नेक पे भी मारना अलाउड नहीं है।
1: अच्छा, ये ध्यान रखना होता है आपको।
0: हाँ।
1: तो ये प्रैक्टिस के समय भी आपको आपके जो कोच हैं वो बताते हैं पूरा?
0: जी, हमें तो बताते हैं। ये
1: अपने विरोधी के साथ खेलती हैं तो किन बातों का, किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखती हैं, ये बताइए।
0: मैं ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखती हूँ जैसे किक मुंह पे मारनी है तो 3 पॉइंट्स मिलते हैं, पंच क्लियर आनी चाहिए, शोल्डर पूरा मूव होना चाहिए, पूरा रोटेट।
1: ध्यान रखती हैं आप इनका?
0: हाँ, ध्यान रखती हूँ मैं तो।
1: आपका डाइट प्लान क्या होता है?
0: मेरा डाइट प्लान होता है सुबह उठ के दूध पीती हूँ और एक ब्रेकफास्ट करती हूँ जिसमें एवोकाडो टोस्ट और ब्रेड रहता है।
1: अच्छा।
0: फिर स्कूल में आके होता है, और शॉर्ट ब्रेक के टाइम में मैं केला और फ्रूट्स खाती हूँ। फिर उसके बाद स्कूल का लंच भी करती हूँ मैं, जिसके अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता और थोड़े सब क्यूकम्बर और कैरेट।
1: अच्छा।
0: फिर घर आके अगर मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें भी थोड़े ओट्स रख देती हूँ। फिर घर आके शाम में जो खाना बनता है रोटी सब्जी, मैं वो खा लेती हूँ।
1: अच्छा, कोई नखरी तो नहीं करती?
0: नहीं।
1: के श्रोता साथी है ना, उनको बताना चाहती हूँ कि ये मतलब बहुत नाजुक सी, दुबली पतली सी है, तो उसको देख के लगता नहीं है कि ये कराटे खेलती होगी, पर हाँ, कराटे में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ये निहरा, आप बताइए कि आपको मतलब बेल्ट जो मिले हुए हैं या जो आपको इनाम मिले हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं?
0: मेरे पास 11 मेडल्स हैं, 4 गोल्ड, 5 सिल्वर,
1: अरे वाह,
0: और 2 ब्रॉन्ज। इनमें से मुझे इंदौर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन से मिले हैं, स्टेट लेवल कंपटीशन से मिले हैं, नेशनल कंपटीशन से मिले हैं, और एक भारत रत्न कंपटीशन, जो भी नेशनल्स ही है और

0: उसमें से ओपन नेशनल कॉम्पिटिशन है।
1: अच्छा, तो इतने सारे आप मेडल जीत चुकी हैं।
0: जी,
1: तो कैसा लगता है इतने सारे मेडल देख के आपको?
0: बहुत खुशी की बात होती है। मेरे घर पे एक पूरा कबर्ड है जिसपे मेरा नाम लिखा रहता है और उसके अंदर मेरे ट्रॉफीज और मेडल्स रखे रहते हैं।
1: कबर्ड आप खोलती हैं तब आपको कैसा लगता है?
0: मुझे बहुत खुशी की बात लगती है कि मैंने इतने सारे मेडल्स अर्न किए हैं खुद से।
1: इतने सारे मेडल के बाद अभी आगे भी जाना है, तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी?
0: आगे की प्लानिंग है कि मैं ओलंपिक्स में खेलूं।
1: बिल्कुल।
0: और भारत का नाम शाइन हो जाएगा और मेरा गोल है कि मुझे 20 मेडल मिल जाए और 20 ट्रॉफीज।
1: 11 तो हो गए हैं, है ना? अभी 9 और बाकी हैं। अभी आप 6ठी क्लास में हैं, 11 मेडल आपके पास है, 9 मेडल आपके टारगेट में हैं, तो वो 9 मेडल तक आप ओलंपिक जा सकती हैं क्या?
0: जी हाँ, मुझे ऐसा लगता ही है कि मैं जा सकती हूँ।
1: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं निहिरा आपके साथ है। और ये सभी बच्चे सुन रहे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में 11 मेडल के साथ निहिरा कराटे खेल रही हैं, ओलंपिक में भी जाना चाहती हैं, तो हम चाहते हैं कि निहिरा और आगे बढ़ें और खेलती रहें।
0: हाँ। दीदी, सिंस हमारी इतनी बातें हो गई हैं, मैं मैरी कॉम फिल का गाना सुनना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, हम निहिरा की पसंद पर सुनवाएंगे बच्चों मैरी कॉम फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आइए मिलकर सुनते हैं।
2: जहाँ

0: नेहरा से इतनी ढेर सारी बातें हो चुकी हैं बच्चों, और भी बच्चे हैं हमारे साथ जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं।
1: हेलो भैया।
2: हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और नेहरा मैं आपको सुन रहा था, आप कराटे की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के।
0: अच्छा लगा आपको? अच्छा, नेहरा की बातें तो आपने सुन ली, अब आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में हैं।
2: मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट थोड़ा अलग टाइप का स्टूडेंट। बचपन से ही मुझे पढ़ाई के साथ साथ चीजें बनाने का और एक्सपेरिमेंट करने का शौक रहा है।
0: कृष्णा को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। नेहरा, अपन जाने कृष्णा भैया से कि वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं।
1: कृष्णा भैया, आप क्या क्या बनाते हैं, आप बताइए।
2: मैं अलग अलग चीजें बनाता हूँ, पर अभी कुछ समय से मैं एक स्पेसिफिक चीज के काम कर रहा हूँ।
0: अपने श्रोता साथियों को जरूर बताओ।
2: वो एक रिवर क्लीनिंग डिस्क सिस्टम है।
0: रिवर क्लीनिंग डिस्क सिस्टम पर कृष्णा काम कर रहे हैं और वो विस्तार से आप सभी बच्चों को बताएंगे।
2: तो मैं अभी एक रिवर क्लीनिंग डिस्क सिस्टम बना रहा हूँ
0: जी।
2: इसमें एक डिस्क होती है जो पानी में तैरती है, इनफैक्ट सो मेनी डिस्क होती है, और वो पानी में रोटेट करेगी हाइडल पावर की वजह से, और जो भी कचरा रहता है पानी में जो फ्लोट करता है वो एक डिस्क से दूसरी डिस्क में पुश होगा अंटिल लास्ट डिस्क, जहां पर एक कलेक्टिंग चेम्बर होता है और जो भी कचरा रहता है वहां पर कलेक्ट हो जाता है। और साथ ही जो डिस्क में एक लेयर होती है, फिल्टर लेयर, जिसमें जो भी ऑयल एंड ग्रीस रहता है रिवर का वो भी फिल्टर हो जाता है।
0: रिवर क्लीनिंग डिस्क पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कृष्णा कि मुझे इस पर काम करना है कि नदी की गंदगी या पानी की गंदगी को साफ करने वाली जो डिस्क आप तैयार करें, ये आइडिया कैसे आया आपके मन में?
2: तो जहाँ

0: मैं रहता हूँ उस घर के पास एक नाला है, और मुझे पता चला कि वो एक्चुअली नाला नहीं था, वो एक समय पर नदी हुआ करती थी, अब वो नाले में परिवर्तित हो चुकी है। तो मुझे ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना इसे वापस से क्लीन करने का प्रयास किया जाए।
1: वही सुंदर स्वरूप लौटाना चाहते थे आप?
0: हाँ,
1: हाँ
0: मैं वही सुंदर स्वरूप वापस लौटाना चाहता था। उनका आइडिया आया मेरी सिस्टर से, और मैंने इस पे प्रयास करा, मैंने इस पे मॉडल्स बनाए, और लास्ट ईयर मैं अपने स्कूल में मैंने मनक इंस्पायर अवार्ड में 10,000 रुपीज़ का अवार्ड भी जीता था, और अराउंड जनवरी के समय पर मैंने सोशल समिट इवेंट में भी इसको पेश करा था, जहाँ पर मेरी टीम को और मुझे 3rd प्राइज़ मिला।
1: अच्छी बात है, आपको 3rd प्राइज़ मिला। हम चाहते हैं कि इस पर आप बहुत अच्छा काम करें, और जो कान नदी की सुंदरता है, जो नाले में परिवर्तित हो चुकी है, कान नदी की सुंदरता को आप वापस लौटाएं। देखिए, अभी आप बहुत छोटी उम्र में हैं, लगातार अगर आप प्रयास करते रहे तो इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
2: कृष्णा भैया, ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, पर मुझे भी जानना है कि आप इस प्रोजेक्ट पे और कुछ करेंगे क्या?
0: हाँ नीरा, अभी मैंने इस प्रोजेक्ट पर एक रफ मॉडल बनाया है, और बाद में मैं इस मॉडल का 3D प्रोजेक्ट भी बनाना चाहता हूँ, और मैं इस प्रोजेक्ट को इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ले जाना चाहता हूँ। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअल में नदी में इम्प्लीमेंट हो पाए।
1: बिल्कुल, नदी में इम्प्लीमेंट भी होगा, आपका प्रोजेक्ट पास भी होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखो बच्चों, इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी सोच कि उन्होंने देखा कि आपके घर के पास की जो नदी है वो गंदी है, तो उसे साफ करने के लिए क्या आइडिया लगाया जाए, तो जुगाड़ लगाया कृष्णा ने, और कृष्णा का प्रोजेक्ट को इनाम भी मिला है, और वो आगे के लिए काम भी कर रहे हैं। तो कृष्णा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाए और आप आगे भी इस तरह के काम करते रहें।
3: नेहरा और कृष्णा के साथ सभी श्रोता भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं आपके लिए कविता लाई हूँ, ये जो मैंने खुद ने रचना की है, और थोड़ी सी मिलावट भी है उसमें। खैर, महाभारत कमेटी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ अलग अलग रोल्स होते हैं जो आप लेते हैं, तो मैंने दुर्योधन का रोल चूज किया था उस टाइम पे।
1: इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन आपने अपने श्रोता साथियों को नाम तो बताया नहीं।
3: मेरा नाम जिज्ञासा है।
1: जिज्ञासा की कविता आप सभी बच्चों के लिए।
3: है सभा वालों बात सुनो, मैं नीच नराधम दुर्योधन हूँ, मैं पाप मूर्ति में कली रूप में अधर्म का सचित धन हूँ, मैं विषघट हूँ कुलनाशक में अनीति का वृहद वृक्ष हूँ, भातृशक्तु में कुटिल कामी में क्रोध लोभ का प्रबल पक्ष हूँ, है कितने ही अवगुण अपार, मैं महाभारत का हूँ आधार, मेरे कारण गीता कही पाप स्वयं सत का आधार, तुम धर्म स्वयं को कहते हो सत्य सनातन बनते हो, पापों का दमन ध्येय तुम्हारा इस हेतु देह नर धरते हो, क्या पाप कहो मैंने किया, क्या संत साधु को कष्ट दिया, क्या नारी का हरण किया या निरअपराध को कष्ट दिया, क्या मैंने गौ ब्राह्मण मारा या सुख बहनों को दिया नहीं, प्रेम सहोदर किया नहीं मान मात्र पितु को दिया नहीं, हाँ राज्य लालसा थी मेरी इसमें क्या गलत कहो माधव, वैभव की चाह नहीं जिसको निश्चित है पशु ना वो मानव, अधिकार पिता का था भू पर सत्ता पर ज्येष्ठ सदा बैठे, अंधता योग्यता लील गई परिणाम पांडु पर पद बैठे, उस समय पितामह विदुर द्रोण ने क्या राज्य विभाजन सोचा नहीं, अधिकार पिता का करु वरण तो अब कहते हैं मैं अच्छा नहीं, अरे मैं ज्येष्ठ पिता का ज्येष्ठ पुत्र साम्राज्य भोग अधिकारी था, पांडव कैसे भागी होंगे न्याय विदुर का भारी था।
1: बहुत अच्छी कविता लिखी है जिज्ञासा ने। इस कविता के बाद निहिरा क्या लगा मन में सोचकर?
2: मुझे लगा कि कविता बहुत अच्छी थी, बहुत मीनिंगफुल थी, पर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम दुर्योधन नहीं बने पर अर्जुन बने।
1: बिल्कुल, अर्जुन की तरह सत्य की राह पर चलें, और अर्जुन की तरह ही अपने गुरु का सम्मान करें, है ना, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर निशाना साधने की कोशिश करें। आप सभी बच्चों का लक्ष्य अभी क्या है? अपनी पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप अलग से क्रिएटिव करते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, कविता लिखते हैं, जैसे कृष्णा ने अभी मॉडल तैयार किया है, निहरा कराटे खेलती हैं, तो उसको भी साथ साथ आप पूरी ईमानदारी से निभाते चलें बच्चों।

बच्चों आज छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहूंगी बच्चों कि आज है विश्व सकारात्मक दिवस। जी हाँ, अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहें, यही प्रेरणा देता है आज का दिन। सकारात्मक सोच का मतलब यह है बिल्कुल भी नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों और सच्चाइयों से आंखें मूंद लें या समस्याओं को नज़रअंदाज करें। इसका सीधा साधा अर्थ आप बच्चों के लिए यही है कि हम चुनौती या विपरीत परिस्थिति जब भी आए तो उसमें निराश ना हों, बल्कि समाधान या उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश करें। और बच्चों ये एक मानसिक दृष्टिकोण है, अच्छे परिणामों की अपेक्षा की ओर हमें ले जाती है हमारी सकारात्मक सोच। घर के बड़े लोग आपको यही समझाते हैं हमेशा कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वो तनाव, चिंता या डिप्रेशन से दूर रहते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी हमें यही बताता है कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई, हम जो भी क्रिएटिव कर रहे हैं ना बच्चों, वो अच्छी तरह से होता रहे। और आप बच्चों की उम्र तो अभी खेलने की है, पढ़ाई करने की है, मौज मस्ती करने की है, तो आप बिल्कुल भी नकारात्मक ना हो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। और हम अपने कार्यक्रम को सकारात्मक बनाते हैं बच्चों प्यारे प्यारे गीत सुनवा कर।

बाल सभा कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है बच्चों। आपको बता दें कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। मिलेंगे बच्चों अगले कार्यक्रम में आपके नए दोस्तों के साथ। ले रही है संयोगिता दीदी आपसे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का मंच है। प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी देशों का आभार जताया और सभी प्रतिनिधियों की सुखद यात्रा की कामना की। वहीं चीन को अगली ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री यहां कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जनजाति कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के तहत जन कल्याण और सुशासन जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन 17 सितंबर की शाम उज्जैन के महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58,00,000 आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज धार और बड़वानी में अति भारी बारिश जबकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। हम आपको याद दिला दें आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के बारे में। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर और शाम 6 बजे। और 7:30 पर आप सुनेंगे महिला कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेब डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शीला वर्मा के गाए गीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में एक गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म वक्त की दीवार से। अनजान ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चाई का एक गीत, आवाज़ें मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की है। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: सच्चे तो पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ए दोस्त

ने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

दोस्ताना ये फिल्म का नाम है। इसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है।

ये गाना था दोस्ती के ऊपर, फिल्म का नाम था दोस्ताना। और अब एक और हम आपको ड्यूट सुनवा रहे हैं, आवाज़ें किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की हैं, फिल्म का नाम है राम बलराम। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना है फिल्म शान का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी आर डी बर्मन और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का ही संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58

0: मिनट होने को है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: इस घंटे की खास खबरें। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का एक इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। उन्होंने सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं चीन को अगली ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पटना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की समृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगर प्रवास के दौरान बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, बाबा बैजनाथ महादेव का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त के 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने यहाँ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और मौसम विभाग ने आज धार और बड़वानी में अति भारी बारिश जबकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से अगले दो दिन की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, 14 सितंबर यानि सूमर जे ॾींहुं असांजा विघ्नहर्ता गणेश भॻवानु विराजमान थींदा। पंहिंजे माउ पीउ में पूरे ब्रह्मांड खे ॾिसण वारो गणपति बप्पा पूरे धूमधाम सां उन्हनि जो स्वागत कयो वेंदो। हर साल बडरे महीने जी शुक्ल पक्ष जी चौथ ते हिननि जो आगमन थींदो आहे। भॻवान गणेश विघ्नहर्ता जे नाले सां सॾायो वेंदो आहे, जेको हर कष्ट हर मुश्किल खे कटे छॾींदो आहे। हिननि खे बुद्धि ज्ञान सुख समृद्धि जो देवता मञियो वेंदो आहे। हुननि जो सिर हाथीअ जो ऐं शरीर माण्हूअ जो आहे, इन्हीअ करे त हिननि खे घणनि ई नालनि सां पुकारियो थो वञे, जीअं त लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, एकदंत, की ख़ासि करे ॿारनि जो त ही दोस्त चवायो वेंदो आहे। गणेश चतुर्थीअ जे ॾींहुं घरनि मंदरनि ऐं घणनि ई हंधि झांकियूं विहारियूं वेंदियूं आहिनि। झांकी रखण लाइ चंदो घर घर मां वठियो वेंदो आहे। हर गली पाड़े ओड़े जी रौनक त वधी वेंदी आहे, उन सां गॾु हर घर में रौनक अची वेंदी आहे। 11 ॾींहं पंहिंजे घरनि में पाठ पूॼा आरती करे गणपतीअ खे दिलि सां पुकारियो वेंदो आहे। हर घर में मौज मती पई हूंदी आहे। घर घर में नारा गूंजजंदा आहिनि, गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। 11 ॾींहं अलॻि अलॻि प्रसादनि जो भोॻ लॻाइबो आहे, पर गणपतीअ जो प्रिय प्रसाद आहे मोदक ऐं लड्डू। उन्हनि खे दुर्वा बि चढ़ाई वेंदी आहे। रोज़ मिठा मिठा प्रसाद खाराए गणपतीअ खे प्रसन्न कयो वेंदो आहे। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन त्योहार के अन्या वड़े पैमाने ते मल्हायो वेंदो आहे। उते गणपति जी स्थापना घणे घरन में 1.5 ॾींहं, 3 ॾींहं या 5 ॾींहं जी हुंदी आहे। ही त्योहार ही त आहिनि जेके जीवन में खुशी ऐं उमंग खणी ईंदा आहिनि। 11 ॾींहं पूरो शहर जगमगाईंदो आहे। त्योहार जो ख़ासि मक़सदु इहो आहे कि सभु हिकु थी वेंदा आहिनि, जिन सां अञा एकता वधंदी आहे। हाणे त पर्यावरण जो बि ख़ासि ध्यानु रखियो थो वञे, इन्हीअ करे त गणपतीअ जी मूर्ति ईको फ्रेंडली अची वियूं आहिनि। घणेई माण्हू जागरूक थी विया आहिनि, इन्हीअ करे त घणेई माण्हू मिटीअ सां पंहिंजे घरनि में ई मूर्ति

लाइ करे स्थापित कंदा आहिनि ऐं विसर्जन ते पंहिंजे ही घरनि में पाणीअ में विसर्जित करे ऐं उहा जेकी मिटी आहे जेकी गरी वेंदी आहे उनखे गमलनि में वापराईंदा आहिनि। केॾी सुठी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजी त इहा ई गुज़ारिश आहे कि मूर्ति इको फ्रेंडली ही वठो, जंहिंसां असांजो पर्यावरण बि सुरक्षित रहे, असां पंहिंजो त्योहार बि खूब मौज मस्तीअ सां मनायूं ऐं असांजे पर्यावरण खे कोई नुक़सान बि न थिए। त दोस्तो, आराधना भक्ति कंदे, गीत ॻाईंदा, मौज मचाईंदा, गणपतिअ खे बाजाईंदे ॿुधूं था ही सुहिणो ऐं प्यारो गीत।

0: दोस्तों अॼु असां सां गॾु आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि कन्यो मोटवानी माधवभाऊ जी। तव्हांजो घणो घणो स्वागत आहे।
1: महिरबानी।
0: मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदमि की वर्तमान साहित्य क्षेत्र में सिंधी कविता जो महत्व छा आहे?
1: सिंधी कविता जो ॾाढो महत्व आहे
0: जी।
1: जीअं हिंदीअ में महत्व आहे, उर्दूअ में महत्व आहे, तीअं सिंधी ॿोलीअ में बि पंहिंजो कविता जो, ग़ज़ल जो, नज़्म जो, ॿिए बि घणेई सनफू आहिनि, सभिनी जो महत्व पंहिंजे अलॻि अलॻि स्थान आहे हुन जो। त सिंधी भाषा जो बि ॾाढो सुठो हींअर मतिलबु ग़ज़ल में त ॾाढो सुठो आहे
0: जी।
1: ग़ज़ल जेके शाइर आहिनि उन्हनि त ॾाढो सुठो मतिलबु ग़ज़ल लिखियो आहे सिंधीअ में। अॻिते वधी वई आहे ॾाढी पंहिंजी सिंधी भाषा।
0: मतिलबु असांजे आद जुगाद खां जेकी सिंधी कविताउनि जो जेको चलन हले पियो उहो अञा ताईं हले ई
1: अञा ताईं हले पियो थो। पर हींअर छा आहे त

0: थोरो ॿोली जेका आहे न भाषा जेका पंहिंजी सिंधी भाषा आहे मेन उहा अॼुकल्ह केरु पढ़े कोन थो न को मतिलबु इंट्रेस्ट ॾाढो घटि था ॾेखारनि माण्हू त हींअर थोरो मतिलबु सरकार बि इन जे पुठियां लॻी पई आहे त भई पढ़नि ॿार त पंजे ताईं शायदि कंपलसरी कयो अथनि हींअर पंहिंजी भाषा जेका आहे उहा ॿार पढ़नि पर हाणे ॾिठो वञे थो त थोरो कुझु ॿार हींअर पढ़नि था पर असां आशावादी आहियूं अॻिते हली करे भाषा जो ज़रूरु सुठो थींदो
1: जीअं असां अॻियां वधायोसीं तीअं असांजा अॻियां ॿार बि उनखे अॻियां
0: वधाईंदा वधाईंदा बिल्कुलु वधाईंदा
1: मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि की तव्हांखे कॾहिं खां वठी रुचि थी कविताउनि में
0: मूंखे लॻभॻि 1995 खां मां लिखणु चालू कयो आहे पर पहिरियों कचियूं फिकियूं लिखंदो हुउसि ईअं ई मतिलबु बेसिर पेर जूं उन खां पोइ मूंखे उस्तादु मिलियो श्री खीमन यू मूलानी मुंहिंजो उस्तादु आहे उहे वॾा शाइर आहिनि गज़लगू शाइर उन्हनि खे साहित्य अकादमी पुरस्कार बि मिली चुका आहिनि त उहे मूंखे मिलिया उन्हनि मूंखे सॼो गज़ल जे बारे में सेखारियो त हाणे मां पंहिंजो किताबु बि छापारायो आहे हिकिड़ो आस जा कख गज़ल जो किताबु आहे उन ते मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमीअ मां इनाम मिली चुको आहे
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे
0: महिरबानी थैंक
1: यू त तव्हांखे छा थो लॻे की असांजी जेकी नई टही आहे उहा अॻियां असांजे इन चलन खे वधाईंदी
0: बिल्कुलु वधाईंदी भई ॿोली सिखंदा भाषा पढ़ंदा
1: जी
0: त ज़रूरु अॻिते वधंदी
1: ऐं असां आशा बि कयूं था वधाइनि
0: बिल्कुलु आशावादी आहियूं अॻिते वधंदी
1: छो जो कविताउनि में ॾिठो थो वञे की हाणे धीरे धीरे धीरे रुचि घटिजंदी थी पए थी वञे
0: न त ॿोलीअ जे मथां न हाणे भाषा कंहिंखे ईंदी न त उहो कीअं लिखंदो पंहिंजे ॿोलीअ में त ॿोली पढ़ाई पढ़ंदा कंदा त पोइ ज़रूरु लिखंदा
1: जी त दोस्तो इहो हो की वर्तमान समय में असांजी सिंधी कविता कीअं अॻियां वधे पई थी ऐं कीअं अञा असांजी नई पीढ़ी जेकी आहे उहा इनखे वधाईंदी त अचो मांदे भाऊअ खां ॿुधूं था कुझु उन्हनि जूं ॾाढियूं सुहिणियूं कविताऊं
0: मां कुझु ग़ज़ल ॿुधाए रहियो आहियां तव्हांखे मुंहिंजी पहिरीं ग़ज़ल आहे मतिला आहे सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई शेर पेश आहे बाफ अहिड़ी आहे जहां जी जंहिंमें बाफ अहिड़ी आहे जहां जी जंहिंमें रोज़ ख़्वाहिश का उॾामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई ॿोलीअ जे बारे में ई शेर आहे फूक ॾेई को त ॿारण ॿारे फूक ॾेई को त ॿारण ॿारे चिणग ॿोलीअ जी विसामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई आबरूअ जी न आ चिंता कंहिंखे आबरूअ जी न आ चिंता कंहिंखे जे विकामे थी विकामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई अकुल वारनि जी ज़बानी जंग में अकुल वारनि जी ज़बानी जंग में ॻाल्हि चरियनि जी अघामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई सुखनि लाइ वक़्तु लॻे थो लेकिन सुखनि लाइ वक़्तु लॻे थो लेकिन पीड़ा हर रोज़ विहामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई मक्ता पेश आहे दाव जे हुन जो लॻो आहे मांदा दाव जे हुन जो लॻो आहे मांदा दिलि भला तुंहिंजी छो खामे पई सिगरी जज़्बनि जी उझामे पई आस ख़्वाबनि जी उभामे पई ॿियो ग़ज़ल पेश आहे मतिला आहे ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया निंड अखियुनि जी खणंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। ग़म जो सायो आयो जॾहिं, ग़म जो सायो आयो जॾहिं, वेसह जा फर उॾंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मूं त मिलणु पिए चाहियो पर, मूं त मिलणु पिए चाहियो पर, विच में दलाल घुसंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। जॾहिं बि माठ हो ॻाल्हायो, जॾहिं बि माठ हो ॻाल्हायो, केॾा किसा ठहंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मन त सोच में उलझी वियो, मन त सोच में उलझी वियो, पेर वक़्त जा डुकंदा विया। मन त सोच में उलझी वियो, पेर वक़्त जा डुकंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। हीअ शइ ॾिसंदा, मानी त मुंहुं तकींदी रही, मानी त मुंहुं तकींदी रही, महफ़िल मां सभु लुॾंदा विया। मानी त मुंहुं तकींदी रही, महफ़िल मां सभु लुॾंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, हाल कोच खां पुछंदा विया। मरीज़ पलंग ते ऐं अज़ीज़, हाल कोच खां पुछंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मक्ता पेश आहे, उहे त अमर आहिनि मांदा, उहे त अमर आहिनि मांदा, सचा अखर जे लिखंदा विया। ख़्याल ज़हन में घिड़ंदा विया, निंड अखियुनि जी खणंदा विया। मुंहिंजो टियों ग़ज़ल पेश आहे, रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। शेर पेश आहे, अहसाननि हो जकड़ियो चपनि खे, अहसाननि हो जकड़ियो चपनि खे, लफ़्ज़ निड़ीअ में ई लुछंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। घुर्जुनि जे गहरे सागर अंदरि, घुर्जुनि जे गहरे सागर अंदरि, अहसास समूरा बुॾंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। हीअ शइ ॾिसंदा, सिक दुनियादारी खाई वई, सिक दुनियादारी खाई वई, रिश्ता ॻोढ़नि खे चुहंदा रहिया। सिक दुनियादारी खाई वई, रिश्ता ॻोढ़नि खे चुहंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। चहिरे जी मर खे मेटणु छॾे, चहिरे जी मर खे मेटणु छॾे, सभु आईननि खे उघंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। छांव ॾिसी पाछा त विया लिकी, छांव ॾिसी पाछा त विया लिकी, ओसीड़े में वण सुकंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। कोन ॿुधो कंहिं ख़ामोशीअ खे, कोन ॿुधो कंहिं ख़ामोशीअ खे, बक बक ते सभई कुॾंदा रहिया। कोन ॿुधो कंहिं ख़ामोशीअ खे, बक बक ते सभई कुॾंदा रहिया। रस्ता तेजीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया। मक्ता पेश आहे, यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं, यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं, मांदा उमिरि सॼी ॾुहंदा रहिया। यादूं ही सुपना ही ख़्वाहिशूं, मांदा उमिरि सॼी ॾुहंदा रहिया। रस्ता तेज़ीअ सां डुकंदा रहिया, के किरंदा ऐं के उथंदा रहिया।
1: तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं असांजे श्रोताउनि खे हेॾियूं सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायव।
0: महिरबानी जानवी।
1: दोस्त, त्योहारनि जी त ॻाल्हि हले ई पई। भारत देश में जेतिरा धर्म आहिनि ओतिरा ई अलॻि अलॻि त्योहार। तीअं ई हिंदू धर्म में हिकु त्योहारु आहे हरितालिका तीज, जेको भद्रे महीने जी शुक्ल पक्ष जी तीज ते मल्हायो वेंदो आहे। जीअं असांजी टीजड़ी हूंदी आहे, तीअं ही हीअ टीज हिंदू धर्म में वॾे उत्साह सां शिव ऐं पार्वतीअ जी प्रेम तपस्या ऐं समर्पण जी यादि में मल्हाई वेंदी आहे। धार्मिक मान्यता जे मुताबिक़ माता पार्वती भॻवानु शिव खे पतीअ जे रूप में पाइण लाइ घणी घोर तपस्या कई हुई ऐं भॻवानु शिव माता पार्वतीअ जी तपस्या सां प्रसन्न थी हुन सां विवाह करण जी इच्छा स्वीकार कई। माता पार्वतीअ जी तपस्या शक्ति धैर्य जो वॾो उदाहरण आहे। इन्हीअ करे हिन टीज ते शादीशुदा जाइफ़ूं पंहिंजे घोट जी वॾी उमिरि ऐं सुठे स्वास्थ्य लाइ व्रत रखंदियूं आहिनि। घणेई त निर्जला व्रत बि कंदियूं आहिनि। न्याणियूं पंहिंजे मनपसंद जीवन साथी मिलण जी कामना सां ही व्रत कंदियूं आहिनि। जाइफ़ूं 16 सिंगार करे माता पार्वती ऐं शिव जी पूॼा कंदियूं आहिनि। माता पार्वतीअ जी कथा ॿुधबी आहे ऐं शिव भॻवान जी आरती कई वेंदी आहे। भॼन कीर्तन गीत ॻाए शिव पार्वतीअ जी आराधना कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि खे मल्हायो वेंदो आहे। अॼु बि त्योहार असांखे कुझु न कुझु ज़रूरु सेखारे वेंदा आहिनि। ॾिसो, इहो ई आहे असांजो भारत देश, त अॼु बि असांजी संस्कृतीअ खे ज़िंदो रखियो वियो आहे हिन त्योहारनि जे ज़रिए। ही त्योहार भारत देश जी सुंदरता खे अञा निखारींदा आहिनि। त दोस्तो, त्योहारनि जो ईअं ई मज़ो माणींदे ॿुधूं था हिकु चटपटो, हिकु सुहिणो, हिकु प्यारो, हिकु खिलंदो गीत।

दोस्तों हाणे एक जरूरी ॼाण। हर साल 15 सितंबर ते अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हे ॾींहुं लोकतंत्र जी अहमियत खे सभ ताईं पहुचाए थो कि लोकतांत्रिक मूल्यनि जे बारे में हर माण्हूअ खे जागरूक कयो वञे। संयुक्त राष्ट्र संघ पारां 15 सितंबर ते हिन ॾींहुं खे मल्हाइण जी घोषणा कई वई। लोकतंत्र जी माना आहे लोकनि जी सरकार। लोकतंत्र में जनता पंहिंजे प्रतिनिधिअ खे वोटनि जे ज़रिए चुनंदी आहे। लोकतंत्र में हर नागरिक खे पंहिंजे वीचारनि खे रखणु, वोट ॾियणु ऐं पंहिंजे अधिकारनि जी संभाल करण जो अधिकार हूंदो आहे। हर नागरिक खे वोट ॾियण जो अधिकार आहे। भारत देश जी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान ते टिकियल आहे। संविधान सब नागरिकनि खे समानता, स्वतंत्रता ऐं न्याय जो अधिकार ॾिए थी। वक़्त वक़्त ते चुनाव थींदा आहिनि जिन सां हर नागरिक पंहिंजे प्रतिनिधिअ खे चूंडींदी आहे। लोकतंत्र सिर्फ़ वठण ताईं सीमित नाहे कि असांखे अधिकार मिलंदा आहिनि, उन सां गॾु असांखे कर्तव्य बि निभाइणा पवंदा आहिनि, जीअं त कानून जी पालना करणु, नियमनि खे समुझणु, देश जी एकता खे क़ाइमु रखणु ऐं समाज जी भलाईअ में बि पंहिंजो योगदान ॾियणु। जंहिं देश जा नागरिक शिक्षित, जागरूक ऐं ज़िमेदार हूंदा, उते लोकतंत्र बि मज़बूत थींदो। अॼुकल्ह सोशल मीडिया एॾो घणो वधी वियो आहे कि उन्हनि ते घणेई ख़बरूं ऐं जानकारियूं मिलनि त थियूं, पर कुझु अहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि जेके ग़लति बि फैलायूं वञनि थियूं। असांजो फ़र्ज़ु आहे कि कंहिं बि ख़बर खे बिना परखे न फैलायूं। घणेई अफ़वाहूं बि हूंदियूं आहिनि जिन जे करे व्यवस्था खे नुक़सान बि पहुचंदो आहे। पंहिंजे अधिकार सां गॾु पंहिंजी ज़िमेदारीअ जो बि सही इस्तेमालु करणु घुरिजे। मज़बूत लोकतंत्र याने असांजो मज़बूत भारत। त दोस्तों हाणे वक़्तु आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने को हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जमुनिया धारावाहिक की 26वीं कड़ी।

0: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिखकर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है जमुनिया। जहां कभी गांव तक आने के लिए पगडंडी भी ढंग से नहीं थी, वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, गली गली में खंभे बिछाए गए, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बने। इन्हें गांव के गुरुजी ने तेजस और रूपस नाम दिया और एक दिन ये दोनों बच्चे गांव लौटने वाले होते हैं। जमुनिया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है सुबह से, शाम होने तक तेजस और रूपस नहीं आते। चिंतित जमुनिया बच्चों के मंगल के लिए व्रत रखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। जयंत उसे ORS का घोल पिलाता है और झुल्लन दादा के साथ शहर के अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसको देखकर सबको संतुष्ट करता है और कहता है कि कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा पानी की कमी हो गई थी और जयंत ने उसे ORS का घोल देकर बहुत समझदारी का काम किया है। रात भर के इलाज के बाद जमुनिया को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो लोग घर आते हैं, तभी तेजस और रूपस भी गांव आते हैं। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। तभी अखबार से पता चलता है कि फतेहपुर गांव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है। जमुनिया, जयंत, झुल्लन, गुरुजी और दीवान गांव के अन्य लोगों के साथ शहर जाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और गांव की ओर वापसी होती है। अब आगे
1: जमुनिया जी
2: जिंदाबाद,
1: जमुनिया जी
2: जिंदाबाद,
1: जमुनिया जी
2: जिंदाबाद।
3: भैया चलो आजा, सब लोग चलो आजा, चलो आजा, चलो आजा, गाड़ी पे आजा।
4: अरे भाई, अरे ये क्या है, आप लोग इस तरह से जुलूस वुलूस निकाल रहे हैं? अरे भाई, ये अच्छा नहीं लगता।
5: वही तो मैं भी कह रही हूँ।
6: पर हमें अच्छा लगता है जमुनिया जी।
7: हाँ,
6: और क्या, कुछ हमारी मर्जी का भी तो हन दो। अरे ये जो सम्मान शहर में हुआ, इसका हम सब लोगों ने तो देखा, पर गांव के बहुत से लोग इसे देख नहीं पाए हैं। इसलिए हम सब मिलकर गांव में एक मीटिंग रखते हैं और इस सम्मान का उत्सव मनाएंगे।
8: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भैया, लोगों बिल्कुल ठीक। अरे भैया, सम्मान का उत्सव तो होना ही चाहिए। अरे भाई, जितने गांव की तकदीर बदल दी, उसके सम्मान का उत्सव तो पूरे धूमधाम से होना चाहिए।
9: जमुनिया बिटिया, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ
5: गुरुजी प्रणाम। आप ही बताइए गुरुजी, क्या ये ठीक है?
10: भाई ऐसा है बेटा कि उत्सव और अहंकार दो चीजें होती हैं बेटा। किसी भी उपलब्धि पर उत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु उपलब्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बात तुम अपने बेटे तेजस और रूपस से भी सीख सकती हो। शिक्षा किसी भी कोने से आए, उसे ग्रहण करना चाहिए बेटा।
5: समझ गई गुरुजी, आप भी इन गांव वालों की तरफ ही हो गए। आप भी ना गुरुजी।
10: अब भाई, तुम्हें मेरी शिक्षा भी पक्षपात लगने लगी है।
5: नहीं गुरुजी, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ? जी नहीं गुरुजी, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, काफी देर हो गई है, अपने अपने घर चलते हैं।
10: अच्छा अच्छा

0: देखो भाइयों, जमुनिया जी ने न केवल इस गांव की तरक्की की है कि नहीं, बल्कि इसका नाम भी रोशन किया है और जिले में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का इनाम लेकर आई है। भैया ऐसा है कि सरकार ने तो उनका सम्मान कर दिया है, अब हम लोगों का कर्तव्य है कि जमुनिया का फतेहपुर गांव की ओर से एक बड़ा सम्मान होना चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़े और साथ ही साथ हम लोगों को अच्छा लगेगा। भैया
1: आप ठीक कह रहे हो भैया, मैं भी अपनी रजामंदी देता हूँ। फतेहपुर ग्राम पंचायत की ओर से जमुनिया जी का भव्य स्वागत किया जाएगा, ताकि भैया सरकार तक ये संदेश जाए कि जमुनिया अपने गांव में भी कम लोकप्रिय नहीं है।
2: ठीक कह रहा भैया चंपालाल, बहुत सही बात कही तुमने। अरे गांव के सब लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम बनाओ यार, के ताकि जमुनिया जी के सम्मान का भव्य आयोजन हो और ना केवल जिले तक बल्कि पूरे प्रदेश तक हम लोगों की सफलता का संदेश पहुंचे। अरे भैया आज फतेहपुर के ग्रामवासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जमुनिया इस गांव की आदर्श है।
0: भैया हम लोग सहमत है और गांव के सब लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें तय होगा कि जमुनिया जी का भव्य सम्मान कैसे किया जाए।
2: ये प्रोग्राम

0: जमुनिया, सुख दुख सफलता विफलता को आप इतनी आसानी से कैसे स्वीकार लेती हैं? जिस विफलता से आदमी टूट जाता है और जिस सफलता से उसका दिमाग खराब हो जाता है, दोनों में आप धैर्य से निकल जाती हैं। ये मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है।
1: आप लोगों को कुछ सुनाऊं?
2: क्या बाबा?
0: अरे बाबा, अब क्या सुनाएंगे आप? अभी आज जो कुछ शहर में हुआ है उससे हम सब गदगद हैं। अब और क्या हो गया?
1: अरे बेटा, आपको शायद पता नहीं होगा कि गांव में जमुनिया को सम्मानित करने के लिए एक योजना बन रही है। हाँ, और मुझे अभी अभी पता चला है कि गांव के लोग जमुनिया को ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं, और वो भी बेटा बड़े पैमाने पे।
0: अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने।
2: यही सब गड़बड़ है। इस तरह से सम्मान समारोह व्यक्ति का दिमाग खराब कर देता है, जिसमें वो अहंकारी हो जाता है। शायद इसीलिए गुरुजी ने ये बात कही थी कि उपलब्धि का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और इस गांव में बस यही हो रहा है। समय, पैसा और श्रम सब बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा होता कि यही सब किसी रचनात्मक काम में लोग लगाते। 5 मिनट के लिए मुझे मंच पर बुलाकर, हार फूल पहनाकर, तालियां बजाकर, अरे क्या हासिल होगा?
3: बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन अगर अच्छे काम का सम्मान ना भी किया जाए तो आदमी धीरे धीरे ऊब जाता है और फिर उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। कई बार ऐसे सम्मान और तालियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, ये मत भूलो।
2: अच्छा, तू तो रहने दे, सिखा मत मुझे। जयंत बाबू, आप बताइए ना।
0: अभी तो मैं तुम्हारे और तेजस के बीच में हूं, और तेजस की बात गलत नहीं है जमुनिया, और तुम भी सही कह रही हो, इसमें कहीं कोई टकराव नजर नहीं आता मुझे। हाँ, बस जब तक गुरुजी की शिक्षा काम में आए तब तक उपलब्धि अहंकार में ना बदल जाए।
2: मैं सब समझ रही हूँ।
1: अरे बिटिया, जब समझ ही रही हो तो अब इतने लोगों की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी बिटिया।
2: मैं समझ गई बाबा, लोगों में रहकर आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते हो। फिर भी मैं कोशिश तो करूंगी कि उत्सव वगैरह ना हो।
4: हाँ बेटा।
5: चलो अच्छा, अब सब लोग आराम कर लो, थके हैं ना सब लोग। अब बाकी बातें अब हम कल करेंगे।
2: हाँ बेटा, चलो आराम कर ले।

0: क्यों रूपस, तुझे नहीं लगता कि अम्मा कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रही हैं?
1: लग तो मुझे भी रहा है भैया, लेकिन जिन हालात से अम्मा गुजरी हैं उसमें प्रसन्न होने या उत्सव मनाने के अवसर बहुत कम थे, इसलिए वो ऐसी हो गई हैं।
0: देखो रूपस, जीवन भर एक ही सुख या एक ही दुख नहीं रहता, ये आते जाते झोंके हैं, और हम सबको जैसा समय आए उसी हिसाब से चलना सीखना चाहिए।
1: ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर
0: हमेशा धारा के विरुद्ध चलना ही संघर्ष नहीं होता, कई बार समय के साथ भी चलना पड़ता है। चलो अच्छा, देखते हैं गांव वालों की क्या राय है।
1: हाँ भैया, देखते हैं।
2: अरे तुम लोग बाहर बैठे क्या कर रहे हो? अंदर आओ, थोड़ी गपशप करें, बातें करें। वैसे भी दो दिन बाद तो चले ही जाओगे ना?
0: अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं, अब रूपस तो यहीं रहेगी ना अम्मा।

0: और मैं भी आता जाता रहूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और खुश रहना सीखो।
1: देखा जमुनिया, बच्चे भी तुमसे खुश होने की बात कह रहे हैं।
2: क्या केवल हंसने से ही खुशी जाहिर होती है?
1: अरे मैंने ऐसा कब कहा?
3: अरे भाइयों, सुनो यार भैया, मैं तो सोचता हूँ कि जमुनिया जी को,
4: सुनो यार,
3: हाँ भैया, मैं तो सोचता हूँ कि जमुनिया जी को सरकार ने 10,000 रुपया दिए हैं, है कि नहीं है? तो कम से कम हम लोग मिलकर उन्हें 15,000 की राशि साल और श्रीफल दे।
5: अरे भैया, अरे भैया, रुपए पैसे से सम्मान कम ज्यादा नहीं होता भाइयों। हम लोग मिलकर जमुनिया जी का आदर करें, उनकी बात सुने, ये ही बहुत अच्छा होगा।
6: अच्छा, अरे अच्छा, देखो देखो, एक बात सुनो यार, चलो रुपए पैसे की बात छोड़ भी दो, पहले तो जमुनिया जी को पंचायत भवन की ओर से एक प्रशंसा पत्र बनवाएंगे, खूब अच्छा सा, और उसे फ्रेम करके गांव के जितने पंच हैं वो सब जमुनिया के बारे में एक एक करके बोलेंगे अपनी अपनी।
7: सही है ना
6: हाँ
7: भैया, ताकि अरे जमुनिया जी को लगना तो चाहिए कि उन्होंने जो श्रम इस गांव के लिए किया है उसका हम लोग कितना आदर करते हैं, है कि नहीं? अरे अरे भैया, समय समय पर वो जो राय देती है ना उसका भी उल्लेख करेंगे, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात हम सब सुनते हैं। हाँ, और हम सब से उन्होंने कही थी कि 5 साल से बड़ा कोई बच्चा घर में नहीं रहेगा, है कि नहीं? याद है सब जनों को? कही थी ना, है ना? उसे स्कूल जाना है, यानी कि 5 साल से बड़ा हर बच्चा स्कूल जाएगा और घर का सारा काम बड़ों को ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब ये तो करना ही पड़ेगा। और उसे न केवल जमुनिया जी ने कहा बल्कि भैया खुद भी किया, है कि नहीं? और आज देख लो उनके बच्चे कितने होनहार निकले हैं।
5: हाँ भैया, भैया वो कहती रही कि मान लो बच्चे आपके काम नहीं भी आए तो बच्चे अपने खुद के काम तो आएंगे और आप पर बोझ भी नहीं होंगे। उन्होंने साफ सफाई की बार बार अपील की और उसका लाभ हम लोग देख ही रहे हैं।
8: भैया पुरस्कार मिल गया गांव की पंचायत।
6: अब देखो भैया, एक बात सुनो,
8: सुनो सुनो,
6: अब इधर की बात को इधर उधर मत मोड़ो यार। अबे हम लोग काय के लिए इकट्ठा हुए हैं बोलो? अरे भैया, इसलिए इकट्ठा हुए हैं ना कि जमुनिया जी का भव्य स्वागत करना है।
5: जी हाँ, तो
6: करना है कि नहीं?
5: हाँ करना है। तो
6: भाई की बात करो ना यार।
5: वो तो ठीक है भाई, प्रस्ताव बनाया जाए और पढ़ा जाए।
7: हाँ। तो भाइयों, ये सब तय करने से पहले हमें एक बार जमुनिया जी से पूछ लेना चाहिए, हैं? अब भैया मान लो हम सब तैयारी करें और वे राजी ना हो तो अब कैसा लगेगा?
5: अरे ऐसे कैसे मना कर देंगी? उनका कहा हम सब लोग कर रहे हैं तो फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगी क्या?
6: हाँ ये बात तो सही है। तो भैया एक काम करो, फिर देखो यार, अब पहले बैठो, प्रस्ताव बनाओ।
7: ये भी सही है,
6: प्रस्ताव बनाओ और उसका अनुमोदन करो। उसके बाद फिर अपन जमुनिया जी को दिखाते हैं, उसमें कुछ कुछ रद्दो बदल करनी हो, फेर फार, कुछ काटा पीटी कर देंगे,
7: संशोधन कर लेंगे।
6: ऐसा कर लो,
7: ठीक है भाई?
6: ठीक है,
8: सब लोग मानने में राजी हैं। चलो, सबकी राय हो गई।
2: देखिए, सरकार की तरफ से सम्मान हुआ, गांव का नाम हुआ, अच्छा लगा। अब अपने ही गांव में इस तरह का प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता।
9: देखिए जमुनिया जी, अब जो हमने तय कर लिया है उसमें ना नौकर की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी अपने ही गांव में अपने आदमी की ज्यादा कदर होती नहीं है। आपकी इज्जत हम लोगों के मन में बहुत है और इसलिए हम सबको एक उत्सव मनाने दीजिए। आप उसके तौर तरीकों पे कहीं कोई फेरबदल चाहेंगी तो हमें बता देना आप, हम कर देंगे।
2: अरे भैया, जब आप लोग तय कर ही बैठे हैं तो फिर मेरी राय की कोई जरूरत नहीं है, जैसा उचित समझे कीजिए। पर मैं तो कहूँगी कि पैसा, समय और मेहनत व्यर्थ होता है इसमें।
3: अब आप तो ये सब तो आप छोड़िए जमुनिया जी, है हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसलिए हम ग्राम सभा की ओर से आपका सम्मान करेंगे, ये तो तय है।
2: तो ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे क्या करना होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है?
5: अरे लगता है जमुनिया जी नाराज हो गई।
2: ना भाई ना, ये इल्जाम तो मत दीजिए। नाराजगी की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बैठी रहूं और आप लोग मेरे मान सम्मान की बातें करें तो सुनकर वो भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग निर्णय कर डालिए, जो मुझे करना होगा वो बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ।
10: साथियों, हमारे गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है, जिसे सरकार ने जमुनिया जी को बड़े मान सम्मान के साथ प्रदान भी किया, पर इस अवसर को गांव के ज्यादातर लोग देख नहीं पाए, इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि आज जमुनिया जी को हम हमारे ही गांव में अपने लोगों के बीच में सम्मानित करेंगे और हम सब मिलकर उनकी बातें भी सुनेंगे। वैसे भी आप सबको पता है कि कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको अपने घर में कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई उसके अपने गांव के लोग उसका आदर नहीं करते। पर साथियों, जमुनिया जी एक बहुत अलग शख्सियत हैं। हम सब जानते हैं इसके पीछे हमारे गांव के गुरुजी का बड़ा योगदान है। अब जमुनिया जी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने गुरुजी की शिक्षा जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और जमुनिया का आत्मविश्वास भी इस गांव को यहां तक लेकर आया। जिन परिस्थितियों में साथियों लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जमुनिया जी ने उससे बाहर निकलकर न केवल इस गांव को तरक्की की राह पर डाला, बल्कि उन्होंने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी नहीं कर पाते। आज हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस गांव की तरक्की के लिए वो जैसे भी जब भी हमसे कहेंगी, हम लोग उनके कहे अनुसार चलते रहेंगे। और भाइयों, कोई पंच कुछ और कहना चाहता है तो आमंत्रित है।
9: कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं साथियों, पर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि जमुनिया जी के चेहरे में बदलते भारत का भविष्य है, जिसे मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जयंत जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिनके ज्ञान का लाभ इस गांव को मिला और हम लोग इस तरह से आगे बढ़े। बस धन्यवाद।
11: देखिए भाइयों, एक बात मुझे सिर्फ कहनी है कि जमुनिया जी जितनी गंभीरता से सोचती और मनन करती हैं और अपने गांव के भले के लिए रास्ते निकालती हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूं।
10: और कोई बोलना चाहता है जमुनिया जी के बारे में? भाई जमुनिया जी तो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगी, पर मैं चाहता हूँ इससे पहले जयन जी कुछ कहें। भाई आप सब ने देखा होगा कि जयन जी ने इस गांव में इस तरह घुल मिलकर काम किया है, किसी को लगा ही नहीं कि जमुनिया की इतनी प्रबल सोच के पीछे किसका हाथ है। आइए जयन जी, आप कुछ कहिए, जरूर कहिए आप कुछ।
1: साथियों, मैं जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा, पर मैं चाहता हूं कि गुरुजी पहले मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें।
10: आइए गुरुजी, आइए।
12: साथियों, मैं तो बहुत सालों से इस गांव में हूं और अब से पहले मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बातें, मेरा ज्ञान किसी के काम आएगा, पर जमुनिया जी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक गुरु शिष्य में अच्छा ज्ञान भर सकता है तो एक अच्छा शिष्य गुरु की यक्ष कीर्ति को दूर दूर तक फैला सकता। मैं तहे दिल से जमुनिया को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबको बताना चाहता हूं कि अच्छे गुरु और शिष्य मिलकर समय की धारा को

0: वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं। आप सबने एक अच्छे काम के लिए कंधे से कंधा मिलाया तो सुखी और खुशहाल गांव हमारे आपके सबके सामने हैं। अरे जमुनिया के साथ साथ मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: तो मित्रों, आपने सबकी बात सुनी और अब हम चाहेंगे जयंत जी अपनी बात कुछ ना कुछ जरूर कहें।
3: साथियों, मैं तो मेघा और शिल्पी के साथ इस गांव को एक पर्यटक की तरह देखने आया था। वो भी आज यहां होते तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। और इस बीच जमुनिया जी की तपस्या और आप सबकी गांव को बदलने की नियत देखकर मुझे लगा कि मुझे भी आपका साथ देना चाहिए और इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया। और आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस गांव का एक नागरिक हूं। अब और क्या कहूं, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जयन जी। और अब भाइयों, अंत में जमुनिया जी से उनकी बातें सुने, एक बार ताली बजाइए आप जमुनिया जी के लिए।
4: भाइयों, मुझे भाषण देना तो आता नहीं, मैं तो इस गांव में वो चीजें देखना चाहती थी जिसकी जरूरत हम सबको है। जयंत जी ने मुझे रास्ते बताए और आपने जो अधिकार दिया था उससे सारी चीजें इस गांव में आ पाई, और अभी तक जो नहीं आ पाया उसके लिए मैं कोशिश करती रहूंगी। इस मौके पर अंत में झुल्लन बाबा, गुरुजी और जयंत जी का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूं, जो अगर न होते तो ये जमुनिया ऐसी ना होती। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद है जमुनिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो काम किया है सारे गांव के लिए। अब हम जमुनिया जी को उनका प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट करेंगे और साथ में 15,000 रुपये की सम्मान राशि भी देंगे। साथियों, और एक बात और बता दें, ये सारे के सारे पैसे हम लोगों ने सम्मान के लिए आपस में मिलकर जुटाए हैं, इसलिए ये कोई अन्यथा ना ले कि हम कोई कृपा दान कर रहे हैं। ठीक है ना साथियों?
4: आप सबके इस सम्मान का शुक्रिया। सरकार ने मुझे 10,000 रुपए दिए, 15,000 रुपए आप लोग दे रहे हैं, ये 25,000 रुपए मैं ग्राम सभा को देना चाहती हूं और इसका फंड बनाकर कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना चाहती हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 26वीं कड़ी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेशे इस घंटे की खास खबरें। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का मंच है। प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी देशों का आभार जताया और सभी प्रतिनिधियों की सुखद यात्रा की कामना की। वहीं चीन को अगली ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आगरमालवा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने यहां कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री हरि विष्णु के तृतीय अवतार भगवान वराहमिहिर की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि भगवान वराह का अवतार धरा की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेजों की खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और अवसर के तहत 12 से 16 सितम्बर तक अतिरिक्त काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 16 सितंबर को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में होगा। और मौसम विभाग ने आज धार बड़वानी में अति भारी बारिश जबकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे हमारे आज के विषय गणेश चतुर्थी पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा हिंदी दिवस एवं सकारात्मक सोच दिवस। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय एकता और भाईचारे का प्रतीक गणेश चतुर्थी पर। वार्ताकार हैं श्रीमती हेमलता जाटव। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे हमारे विषय मोबाइल एडिक्शन से बचें पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर। साथियों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग अनेक त्योहारों को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह त्यौहार भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

इस दिन लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति स्थापित करते हैं। घरों की साफ सफाई की जाती है और उन्हें फूलों, रंगोली और सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है। दोस्तों, मोदक भगवान गणेश का प्रिय प्रसाद माना जाता है। साथियों, गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे गणेश विसर्जन कहा जाता है। पूजा के बाद श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा को जुलूस के रूप में नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत तक ले जाते हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित की जाती है। भक्त उनसे अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करते हैं। साथियों, आज गणेश चतुर्थी मनाते हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण हो सकता है, इसलिए हमें मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी हमें अनेक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता, एकता और अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय हिंदी दिवस पर चर्चा करने का। साथियों, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। इन सभी को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और करोड़ों लोग इसे बोलते और समझते हैं। हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने और लोगों में इसके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथियों, हिंदी दिवस का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा के महत्व को समझने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। साथियों, हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बोली और समझी जाती है। हिंदी का साहित्य बहुत समृद्ध है। हिंदी में अनेक महान कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा दी है। दोस्तों, हिंदी दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भाषण, निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद, कहानी लेखन जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया जाता है। कई संस्थानों में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार और सम्मान भी दिए जाते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे धार्मिक ग्रंथों, लोकगीतों, कहानियों, कविताओं और फिल्मों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। हिंदी भाषा लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, हिंदी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें अपनी भाषा को केवल एक दिन याद नहीं करना चाहिए बल्कि उसे पूरे वर्ष उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हिंदी को सरल, सुंदर और आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें हिंदी में पढ़ने, लिखने और बोलने की आदत विकसित करनी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय सकारात्मक सोच दिवस पर चर्चा करने का। साथियों, मनुष्य के जीवन में सोच का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा व्यवहार और जीवन भी बनता है। सकारात्मक सोच अर्थात जीवन की परिस्थितियों को आशावादी दृष्टिकोण से देखना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर समस्या को नज़रअंदाज करें बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वासी, साहसी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं है। वह असफलता को अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानता है। यदि किसी कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती तो वह अपनी गलतियों से सीखता है और दोबारा प्रयास करता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी सी समस्या से भी निराश हो जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तब हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है और वह यह सोचता है कि वह आगे मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है तो वह अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए मेहनत करेगा। यही सकारात्मक सोच उसे भविष्य में सफलता दिला सकती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक लोगों की बातें सुनना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और अपने कार्यों की योजना बनाना

0: सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव भी हमारी सोच पर पड़ता है, इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करें और कठिन समय में हमारा उत्साह बढ़ाएं। हमें दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने की बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, सकारात्मक सोच का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों की सहायता करें। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है, समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। एक सकारात्मक व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। साथियों, सकारात्मक सोच जीवन को बेहतर बनाने की एक शक्तिशाली कुंजी है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने, असफलताओं से सीखने और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें हर परिस्थिति में आशावादी रहना चाहिए और समस्याओं के बजाय उनके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी बेहतर योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में। हमारे आज के विषय एकता और भाईचारे का प्रतीक गणेश चतुर्थी पर आपको वार्ता सुनवाने का वार्ताकार है श्रीमती हेमलता जाटव।
1: श्रोताओं, भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक त्यौहार का अपना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। यानी प्रमुख त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। यह भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समृद्धि और सुखता का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है, इसी कारण उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसका विशेष महत्व है, लेकिन आज यह त्यौहार देश के अनेक राज्यों और शहरों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भक्तगण की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। श्रोताओं, भगवान गणेश का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और प्रतीकात्मक है। उनका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का है। उनके बड़े कान हमें अधिक सुनने का संदेश देते हैं। उनका बड़ा मस्तक अधिक सोचने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। उनकी सूंड लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न वस्तुएं दिखाई जाती हैं, जिसका अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। उनका वाहन चूहा गणेश जी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में बुद्धि, धैर्य, विनम्रता और विवेक का बहुत महत्व है। श्रोताओं, गणेश जी के जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक किसी को अंदर न आने दिया जाए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उन्हें अपनी माता का आदेश याद था। भगवान शिव गणेश जी को पहचानते नहीं थे। दोनों के बीच विवाद हुआ और भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवन देने का वचन दिया। इसके बाद एक हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर लगाया और वे पुनः जीवित हो। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। अलग अलग स्थानों पर यह उत्सव कई दिनों तक चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश स्थापना के समय भक्त भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। उन्हें फूल, दूर्वा, फल, मिठाई और विशेष रूप से मोदक अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान गणेश जी की आरती की जाती है और परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा पूर्वक इसमें भाग लेते हैं। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी आने से पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, बाजारों से गणेश जी की मूर्तियां, पूजा सामग्री, फूल, सजावट की वस्तुएं और मिठाइयां बिकने लगती हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव के लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। कहीं फूलों से सजावट की जाती है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से पंडाल सजाए जाते हैं। आजकल कई स्थानों पर सामाजिक संदेश देने वाली सजावट

भी की जाती है। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाता है। गणेश मूर्ति की स्थापना। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की मूर्ति को घर या पंडाल में लाया जाता है। मूर्ति स्थापना से पहले स्थान को साफ करके सजाया जाता है। पूजा की विभिन्न विधियों के द्वारा भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। भक्तगण भगवान गणेश को फूल माला, दुर्वा फल, नारियल और मिठाई अर्पित करते हैं। मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद माना जाता है। पूजा के बाद परिवार के सभी लोग भगवान गणेश की आरती करते हैं। गणेश जी की आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। आरती के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है। इसे कई प्रकार से बनाया जाता है। महाराष्ट्र में मोदक का विशेष महत्व है। मोदक को ज्ञान और आनंद का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाहरी रूप और अंदर के मीठे स्वाद को भी जीवन के एक सुंदर संदेश से जोड़ा जाता है कि बाहरी कठिनाइयों के पीछे ज्ञान और सुख छिपा हो सकता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। श्रोताओं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में बड़े बड़े सार्वजनिक गणेश पंडाल लगाए जाते हैं। लाखों लोग इन पंडालों में भगवान गणेश के दर्शन करने जाते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा को लोकप्रिय बनाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप देकर लोगों को एक साथ आने और सामाजिक एकता मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। उस समय यह उत्सव लोगों को एकजुट करने का माध्यम बना। आज भी गणेश उत्सव सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक त्यौहार नहीं है बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। इस अवसर पर अलग अलग वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। सार्वजनिक पंडालों में लोग मिलकर पूजा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। गणेश उत्सव के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, संगीत कार्यक्रम, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसमें बच्चों और युवाओं में अपनी प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ती है तथा इसमें सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहले कई स्थानों पर ऐसी मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था जिनके विसर्जन से जल प्रदूषण बढ़ सकता था। मूर्तियों में उपयोग होने वाले कुछ रासायनिक रंग और अन्य सामग्री जल में घुलकर नदियों, तालाबों और झीलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए आज के लोगों को मिट्टी से बनी पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित होती हैं। हमें गणेश चतुर्थी मनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भक्ति से प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। श्रोताओं, गणेश उत्सव के अंतिम दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। ढोल, नगाड़ों और भजनों के साथ लोग गणेश जी को विदा करते हैं। विसर्जन के समय लोग भावुक हो जाते हैं। वे भगवान गणेश से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर अक्सर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं। गणेश विसर्जन हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य की याद दिलाता है कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आता है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्रोताओं, धार्मिक दृष्टि से गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता भी माने जाते हैं। विद्यार्थी विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं और उनकी अच्छी बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्रार्थना करते हैं। श्रोताओं, भगवान गणेश का जीवन और उनका स्वरूप हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। उनके बड़े कान हमें अधिक सुनने और कम बोलने की सीख देते हैं। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। उनका बड़ा मस्तिष्क ज्ञान और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। उनका वाहन छोटा चूहा यह संदेश देता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गणेश जी का सरल और विनम्र स्वरूप हमें अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी बच्चों के लिए भी बहुत आनंद का त्यौहार है। बच्चे घर की सजावट में भाग लेते हैं। वे गणेश जी की मूर्ति के लिए फूल और सजावट की सामग्री लाते हैं। कई बच्चे चित्रकला और हस्तकला के माध्यम से गणेश जी की सुंदर आकृतियां बनाते हैं। स्कूलों में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भाषण, निबंध, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है।
श्रोताओं, भारत में अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इसके

0: बावजूद त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। गणेश उत्सव भी लोगों को मिलजुल कर रहने और सहयोग करने की प्रेरणा देता है। सार्वजनिक गणेश पंडालों में लोग मिलकर व्यवस्था संभालते हैं, कोई सजावट करता है, कोई पूजा की व्यवस्था करता है, कोई प्रसाद वितरण करता है और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निभाता है। इस प्रकार लोगों में सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। श्रोताओं, आज के समय में गणेश चतुर्थी मनाने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के कारण लोग गणेश उत्सव की तस्वीरें और वीडियो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कई जगहों पर बड़े पंडालों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, जरूरतमंद लोगों की सहायता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य भी गणेश उत्सव में जोड़े जा रहे हैं। यह एक अच्छी परंपरा है क्योंकि इससे धार्मिक उत्सव के साथ साथ समाज सेवा की भावना भी बढ़ती है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी मनाते समय हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। त्यौहार खुशी और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से बचना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर और नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी श्रद्धा, भक्ति, आनंद और सामाजिक एकता का सुंदर त्यौहार है। यह हमें भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ ज्ञान, विवेक, विनम्रता, धैर्य और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। इस त्यौहार का वास्तविक उद्देश्य केवल बड़े बड़े पंडाल बनाना या उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ाना भी है। हमें गणेश चतुर्थी को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भगवान गणेश हमें सद्बुद्धि दें, हमारे जीवन की बाधाएं दूर करें और हमें समाज तथा देश के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दें।
1: साथियों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय एकता और भाईचारे का प्रतीक गणेश चतुर्थी पर। वार्ताकार थी हेमलता जाडव। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। दोस्तों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के माध्यम से हम कुछ ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और घर बैठे अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। आज विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में मोबाइल की लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, इसकी लत से बचना चाहिए। दोस्तों, मोबाइल की लत का अर्थ है व्यक्ति आवश्यकता न होने पर भी बार बार मोबाइल देखे और लंबे समय तक उसका उपयोग करे। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो गेम्स, मनोरंजन के कारण लोग घंटों तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कई बच्चे पढ़ाई के समय भी मोबाइल पर गेम खेलते हैं। धीरे धीरे उन्हें मोबाइल की आदत हो जाती है और वे अपना महत्वपूर्ण समय व्यर्थ करने लगते हैं। साथियों, मोबाइल के अत्यधिक उपयोग का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी पढ़ाई और कार्यक्षमता पर पड़ता है। विद्यार्थी यदि लगातार मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है। मोबाइल पर मिलने वाले लगातार संदेश और सूचनाएं एकाग्रता को कम कर सकती है। इससे समय की बर्बादी होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है। साथियों, मोबाइल का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सिरदर्द और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद का समय कम हो जाता है। लगातार बैठे रहने के कारण शारीरिक गतिविधियां भी कम हो सकती हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए मोबाइल के साथ साथ खेल, व्यायाम और अन्य शारीरिक गतिविधियों को भी समय देना आवश्यक है। दोस्तों, मोबाइल का एडिक्शन हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। कई लोग परिवार के साथ बैठे होने के बावजूद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम हो जाती है। मित्रों और रिश्तेदारों से आमने सामने मिलने की बजाय केवल ऑनलाइन बातचीत करने की आदत पड़ सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि मोबाइल लोगों से जुड़ने का साधन है, लोगों से दूरी बनाने का माध्यम नहीं। साथियों, हमें खाली समय में मोबाइल चलाने की बजाय परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए, योग करना, खेलना, चित्र बनाना, संगीत सीखना और प्रकृति के बीच समय बिताना अच्छे विकल्प हो सकते हैं। यदि हम

अपने दिन की एक समय सारणी बनाकर उसका पालन करें तो मोबाइल के अनावश्यक उपयोग को आसानी से कम किया जा सकता है। मोबाइल हमारे लिए एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका एडिक्शन हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमें मोबाइल का उपयोग समय सीमा में रहकर करना चाहिए। दोस्तों, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसे मोबाइल की स्क्रीन पर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम मोबाइल का उपयोग सीमित और समझदारी से करें तो हम अपने स्वास्थ्य, पढ़ाई, रिश्तों और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं भी मोबाइल के एडिक्शन से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: किधर है? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट, ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: आरबीआई कहता है,
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
6: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।
9: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
10: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
9: RBI कहता है, जानकार बनिए,
10: सतर्क रहिए।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शुरुआत करते हैं गीत जो कि गणपति देव को समर्पित है अजय की आवाज़ में। अग्निपथ फिल्म से ये गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और अजय अतुल ने इसे संगीत दिया है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अगला गीत सुनिए, मैं अटल हूँ, फिल्म से, जिसे गाया, लिखा और संगीत दिया है कैलाश खेर ने।

अगली आवाज़ सुनिए नीरज श्रीधर की फिल्म भूल भुलैया से। समीर का लिखा हुआ गीत है जिसे संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब समय है एक अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का मंच है। प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी देशों का आभार जताया और सभी प्रतिनिधियों की सुखद यात्रा की कामना की। वहीं चीन को अगली ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आगरमालवा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने यहां कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने श्री हरि विष्णु के तृतीय अवतार भगवान वराह की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अपने संदेश में कहा कि भगवान वराह का अवतार धरा की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेजों की खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और अवसर के तहत 12 से 16 सितंबर तक अतिरिक्त काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना

के अंतर्गत 16 सितंबर को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में होगा और मौसम विभाग ने आज धार और बड़वानी में अति बारिश जबकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए शिवाय फिल्म से ये गीत महादेव को समर्पित, जिसमें आवाज दी है मिथुन मोहित चौहान और साथियों ने। इसे लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने और संगीत में पिरोया है मिथुन ने।

भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में।

अगली आवाज़ सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की फिल्म पत्थर के सनम से। ये गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगली आवाज सुनिए किशोर कुमार की फिल्म याराना से। ये गीत लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत सुनिए पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गीतों का। अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, हम आपको सुना रहे हैं रंगीला फिल्म से, जिसे लिखा है महबूब ने और संगीत में भी रोया है ए आर रहमान ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म वास्तव से समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए शान उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में। जबी मेड फिल्म से ये गीत है जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनिए धूम 3 फिल्म से, सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज़ है, समीर अनजान के लिखे हुए बोल हैं जिसे संगीत में पिरोया है जूलियस पैक चैम ने।

अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और ज्योति नूरान की फिल्म सयोनी से। इस गीत को लिखा है अलौकिक राही और जुनून बैंड ने, साथ ही संगीत भी दिया है जुनून बैंड ने और जॉय अनजान ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं हाईवे फिल्म से सुल्ताना ज्योति नूरान की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए रूही फिल्म से। शमूर और रश्मि कौर की आवाज़ है, आईपी सिंह सचिन जिगर के लिखे हुए बोल और संगीत है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने ये दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडी के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। शाम 7:30 से आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। अब कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, जो आप सुनेंगे कल सोमवार यानी 14 सितंबर की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। सुबह 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में विषय हमारी मातृभाषा पर सुनिएगा। सुबह 6:45 पर कृषि कार्यक्रम में पराली प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:40 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत में बुंदेली लोक गीतों का आनंद लीजिएगा विमला श्रीवास्तव की आवाज में। चौदह सितंबर की सभा में सुबह 10 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। अब कल सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 11:00 से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12:00 और 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजे गए गीतों की फरमाइश। कल दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 27वीं कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1:00 आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दोपहर 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। शाम 5:33, 6:30, 8:15 पर फिल्म संगीत सुनिएगा और कल शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। कल शाम 6:40 पर आजकल और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इस कार्यक्रम का आकर्षण होगा लोक रंग। कल रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। और कल रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में राग वाचस्पति में कलाकार मुन्ने खां से सारंगी वादन का आनंद लीजिएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न, पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं के से द्विपक्षीय बैठकें। आगर मालवा से प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की लाडली बहना की 40वीं किस्त जारी। पन्ना में 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन, किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी। और बालाघाट में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के दिए निर्देश, 67 नए मेडिकल ऑफिसर पदस्थ। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का एक इकोसिस्टम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा विजन और भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ब्रिक्स देशों को अपनी योजना और फैसले को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के तीसरे दशक में प्रवेश के साथ दुनिया अब ठोस नतीजों की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों और उनकी टीमों का आभार जताया और 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी।
8: ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो का यीफ के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और नई तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा हुई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फत्ताह असीसी के साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी साझेदारी पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, रेलवे, शिक्षा, पर्यटन और तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा में लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश के 1,25,00,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं के खातों में 40वीं मासिक सहायता राशि भेजी गई। महिलाओं के खातों में एक क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में करीब 226 करोड़ रुपए की लागत वाले 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं करीब 28 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 विकास कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजना के माध्यम से हर महीने बहनों को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।
9: पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,10,000 से ज्यादा बहनों सबके खाते में पैसे गए। रक्षाबंधन पे एक बार बहन को भाई के हाथ से कुछ मिल जाए, जो मिल जाए वो भी भगवान की दया है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बहनों को हर महीने बिना नागा उनका 1,500 रुपया दे रही।
10: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पन्ना में प्रदेश के 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आज आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों की जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन जैसी गतिविधियों को अपनाकर आय बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना और सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, डेयरी और कृषि स्टार्टअप के अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बालाघाट जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिले में 67 नए मेडिकल ऑफिसरों की पदस्थापना की गई और स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 उप स्वास्थ्य केंद्र और 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता, एनडीए सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी के जरिए विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और अक्टूबर में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भी पूरे होंगे। वहीं प्रदेश में 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। भोपाल के सिंधु भवन में आज प्रादेशिक सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सिंधी समाज के अधिकारों, संरक्षण, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ समाज के मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सिंधी समाज के अधिकारों और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा झेलने के बाद भी सिंधी समाज ने अपने पुरुषार्थ और सेवा भाव से देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। सम्मेलन में समाज की एकता, समस्याओं के समाधान और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। सागर जिले के बंडा में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शिवंजा राजपूत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कठुआ नाला के जंगल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस का दावा है कि गिरने के बाद आरोपी ने टीम पर 3 राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए। इस दौरान गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाली मेधावी विद्यार्थियों को 16 सितंबर को ई स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के पात्र विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में पहली कोशिश में कम से कम 70% अंक और अपने स्कूल में प्रथम स्थान रहा हो। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ कल सुबह 10 बजे ध्वजा पूजन और विशेष अनुष्ठान के साथ होगा। उत्सव के पहले दिन भगवान गणेश को 1.25 लाख मोदकों का महाभोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर दिन शाम को 11,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाएगा। उत्सव के दौरान भगवान गणेश का स्वर्ण और हीरे के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कटनी पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों से बेचने वाले एक POS एजेंट को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 98 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान हैं और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला आजाद रुबई में मौजूद चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। बड़वानी के सेंधवा में नदी नाले उफान पर हैं, जबकि रलावली का बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है। टीकमगढ़ में तेज बारिश के बाद बांसुजारा बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। शाजापुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, धार और महू समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा और झाबुआ समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के मुकट रोड थाना पुलिस ने आनंद नगर के एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई कर 3 लोगों को पकड़ा और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया। नर्मदापुरम जिले के डोलरिया तहसील के नानपा और कजलास में 2 नई रेत खदानों घोषित की गई हैं।

0: खदानों के लिए कुल 30 हेक्टेयर क्षेत्र तय किया गया है। आगरमालवा जिले में लोक अदालत की 10 खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय में लंबित 291 और 237 प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया गया। वहीं मोटर दुर्घटना के 14 मामलों में करीब 60 लाख रुपए का अवार्ड पारित हुआ। शिवपुरी में इस बार 100 से ज्यादा गणेश पंडाल लगाए जा रहे हैं। ये विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। कटनी जिले में हुए जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 160 बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झाबुआ में बिजली चोरी और अनाधिकृत बिजली उपयोग पर रोक लगाने के लिए आम लोगों से सहयोग की अपील की गई। नागरिक बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और हुकिंग जैसी अनियमितताओं की सूचना विभाग को दे सकते हैं। सीहोर जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान हर दिन अलग अलग थीम पर स्थानीय खाद्य पदार्थों से पोषक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न। पीएम मोदी की कई देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें। आगरमालवा से प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना की 40वीं किस्त जारी। पन्ना में 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी। और बालाघाट में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के दिए निर्देश। 67 नए मेडिकल ऑफिसर पदस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: अभी है
7: mmsky.mp.gov.in पर जाएं, सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Sawhney. We now bring you ball-by-ball commentary of the final T20 cricket match to be played between India and Sri Lanka of the Women's Asia Cup T20 Cricket Tournament 2026. Before that, listen to a special program. First Ball 20.
1: First Ball 20. मंच तैयार है, लीजिए, ले चलते हैं आपको सीधा दुबई, टॉस होने जा रहा है।
2: From Bangladesh, Harman, you've got the coin, go for it.
3: Head. Head is the call.
2: Heads is the call.
3: Tail. Still bad for.
2: Tails it is. Well, Harmanpreet Kaur has won the toss for the first time in this tournament. What's your decision and why?
3: We are going to bat first today.
2: And
3: so it's a very important game for us, and I think having a score on the board is always a positive, and that is the reason we decided as a group that we'll bat first.
2: Well, we all remember the 2024 final, Harman. How exciting is this opportunity to write a different ending tonight?
3: Well, I think every final is it's very important, and at the same time you have a lot of pressure, and I think today is the game about, you know, playing good cricket and staying in the moment and giving your best.
2: Any changes to your starting 11?
3: Yes, we do have one change. Today, Pratika is resting and the place of her, Kamalini, is back in the side.
2: Tell us more about the 18-year-old G. Kamalini, such a promising youngster.
3: Yeah, definitely. I think she has a lot of ability and hopefully she'll enjoy herself today.
2: And any target you have in mind?
3: Well, I think we are not keeping anything in mind. I think it's all about, you know, using the batting power play and then see how much we can get in end of the day.
2: Go well.
3: Thank you.
2: In comes the Sri Lankan skipper. Chamari, had you won the toss, what would you have done?
4: If we won the toss, definitely we will bowl first, honestly. Because we back in our skills. Last few games, we are bowling really good. So if we won the toss, we will decide bat. Bowl first.
2: Chamari, you've led Sri Lanka with such great distinction over the years. What would a successful title defense tonight mean for you personally?
4: Actually, it's a really good thing for me as well as the team. As a country, we need to improve our cricket all the time. So we had good players, we stick with our plans, and we try to play our positive cricket in the middle.
2: What is your playing combination looking like for tonight?
4: We are going with one change. Vishmi back into the side for Sanjana Kavindi.
2: And what necessitates that change?
4: Because we are going with some kind of experience. I feel we need some experienced players, so we decide to go with Vishmi.
2: And what's a good total to restrict India to in the final?
4: Yeah, the thing is, they have good batters, but we prepare ourselves for the challenge, and first 6 overs is very crucial in this game. So if we can get few wickets early, I think pressure on them.
2: Have a good crack at this one.
4: Thank you very much.
2: Well, the news from the center is India, led by Harmanpreet Kaur, have won the toss and decided to bat first.
5: रोज सुबह आपकी आंख खुले और चाय का गर्मा गर्म प्याला आपके सामने हो तो उस चाय की कोई कदर खास होती नहीं, लेकिन किसी एक दिन वो चाय का कप आपके सामने ना हो तो फिर उसकी कमी जरूर खलती है। भारतीय टीम का वुमेन्स एशिया कप में सफर कुछ इसी प्रकार का रहा है। 9 संस्करणों में 7 बार ये टीम चैंपियन बनी है, लेकिन 2024 में जब श्रीलंका के खिलाफ हार मिली तो वो हर एक भारतीय प्रशंसक को बहुत चुभी थी। क्या आज वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी? क्या भारतीय टीम एक बार फिर शिखर के पास पहुंच लड़खड़ाएगी, या फिर आज शाम खत्म होने तक भारतीय टीम बन जाएगी 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन? जानेंगे साथ में। आप सुन रहे हैं फ्री हिट 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ हैं मुदिता।
6: Shukriya Darpan, namaskar and a very good evening to all our listeners. The stage is set for the Women's Asia Cup final at Dubai International Stadium. Ek baar phir se, balki lagatar teesri baar Bharat aur Sri Lanka hain aamne saamne Asia Cup ke final mein. And we are here to break down all the matchups, key players, tactical shifts with our experts. और हमारे साथ मौजूद हैं लतिका कुमारी, former Indian cricketer. बहुत स्वागत लतिका आपका। और साथ ही हैं उत्तरा गणेशन, senior sports journalist. Very warm welcome to you, उत्तरा।
5: तो सबसे बड़ी खबर ये है, प्रतिका रावल जिनका ये जो प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, वो थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहा है लतिका, उनकी जगह टीनेज प्रोडिजी कहलाने वाली जी कामलिनी को जगह मिली है, कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को?
7: देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी इसी प्रोग्राम में कि जब प्रतिका रावल को आप मौके दे रहे हैं, नो डाउट वो क्रिकेटर बहुत अच्छी हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन लगता है T20 में वो शायद इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाई हैं और उन्होंने पिछले कुछ टाइम से T20 गेम्स खेले भी नहीं है। तो ये कहूंगी कि सही डिसीजन है कमलिनी का आज जो उनको मौका मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी हम बात करें चाहे WPL की हम बात करें तो कमलिनी के पास वो एक्सपोजर है, वो एक्सपीरियंस है जो कि आज के मैच में शायद उनको और हेल्प करेगा। और ये चेंज मैं पहले ही देख रही थी लेकिन आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर खिला रहे हैं मैनेजमेंट और कप्तान, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा। एक लेफ्ट हैंड बैटर भी आपके पास जुड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा अगर आपको प्रेशर में डालना है तो आपके पास अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन आता है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा।
6: जी बिल्कुल, उत्तरा अभी तक जो भारत का सफर रहा है इस टूर्नामेंट में वो कमोबेश थोड़ा आसान कहेंगे या काफी हद तक वन साइडेड मैचेस हमने खेले हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह की चुनौती दी है, और उसके बाद उसी सेमीफाइनल में श्रीलंका ने जिस तरह का खेल दिखाया है, टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला है और उसे जीता है। डू यू फील उस मैच को देखते हुए कि दैट टुडेज मैच कुड बी इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द टूर्नामेंट?
8: डेफिनेटली, एंड अगर इससे पहले खेला भी होता है इंडिया ने तो फाइनल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। तो फाइनल में जो प्रेशर होता है, फाइनल का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अलग होता है हमेशा से, तो ये बिल्कुल सही है। और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा उतना मुश्किल नहीं रहा इंडिया का सफ़र, फॉर मी नॉट हैविंग प्लेड अ कंपैरेटिवली टफ मैच इज ऑलवेज अ डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज ऑन वन हैंड ऑफ कोर्स यू हैव प्लेड एंड यू वन इजीली, सो यू हैव द मोमेंटम, यू हैव द कॉन्फिडेंस, द सेम टाइम यू हैव एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड, एंड the one or two times that you were tested your middle order did not perform the way it should have. Aapka Shefali Verma ko agar hata diya jaye, स्मृति ने सेंचुरी ज़रूर मारी थी बट वो हांगकांग के साथ मारी है आपने, शेफाली को अगर हटा दिया जाए तो आपको उस तरह के स्टार्ट्स नहीं मिले हैं जो आपको चाहिए। एंड T20 में अ गुड स्टार्ट इज़ हाफ द बैटल वन, एंड द मिडिल ऑर्डर हैज़ एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड एज मच एज दे शुड हैव बीन। और वहाँ पे मुझे लगता है कि जो श्रीलंका है उनका, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एडवांटेज है, but they've had more than one match winners in the four matches that they have played, which is why despite the fact that Chamari Atapattu has not scored many runs, they still have managed to find someone or the other getting those runs in the middle. Lagatar unki middle order struggle kar rahi hai lekin lagatar wo kahin na kahin se ek match winner dhoond ke la rahe hain, and now as a team that gives you a confidence that we are not dependent on any one player, so every time something goes wrong they find a new hero, and that for me in a team event is always a little bit of edge to the team.
6: बिल्कुल, और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। जी बिट्टू जी अपना सवाल पूछे।
5: जी, जी
6: आप पूछिए, लतिका जी सुन रही हैं आपको।
7: बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, और यही हमारे लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से कि मिडिल ऑर्डर हमारा इस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है। और हम बात पहले करते थे जमीमा को लेकर नंबर 3 के लिए, फिर उसके बाद ऋचा घोष को हम देख रहे थे वर्ल्ड कप में भी, हमने देखा कि एक तरीके से मैच फिनिशर की तरह उनको हमने यूज़ किया। दीप्ति शर्मा जब भी टीम लड़खड़ाती है तो उनको भेजा जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो बल्लेबाज हैं, या तो आप उनकी प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं पीछे से ताकि आप उनको किसी भी नंबर पे भेजेंगे तो वो वहाँ जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे। और T20 गेम एक ऐसा है जहाँ पर अगर आपके ओपनर्स अच्छे चलते हैं, उसके बाद ओवर्स पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी एक मैच में बची हुई है, वहाँ कौन इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा, तो इस हिसाब से भी आपके जो बैटिंग ऑर्डर है वो समटाइम्स चेंज हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ पर कौन से मैच के फेज में कौन सा बल्लेबाज जो है जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है कि ये मैच कंडीशन है, मैच सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कब कौन कहाँ कैसे जा रहा है।
5: मैच सिचुएशंस और टीम की सोच क्या है ये मायने रखता है, लेकिन उस सोच पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कामेलिनी को जगह मिली है, प्रतिका को आपने ड्रॉप किया है, उतना हम देख रहे हैं श्रीलंका ने बिल्कुल इसका उलट किया है। उन्होंने संजना काविंदी जो कि युवा प्रतिभा है उनको हटाया है और वो कह रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बैक एक्सपीरियंस। हसीनी परेरा ने बहुत लंबे समय से T20 क्रिकेट में कुछ खास किया नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई एकमात्र मुकाबला मिला जिसमें शून्य उन्होंने बनाया, लेकिन आज उनको वापस लाया गया है, विश्मी गुणरत्ने को वापस लाया गया है, दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस। हाउ डू यू लुक एट दैट?
6: दर्पण, इस सवाल पे हम आते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम उनका सवाल भी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जी अपना नमस्कार, जी अपना सवाल पूछे। जी बिल्कुल उत्तरा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे।
9: देखिए अगेन जो हरमनप्रीत ने कहा, कहीं ना कहीं उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि एक तो फाइनल है तो आप नहीं चाहते कि आपकी बैटिंग किसी भी तरह के प्रेशर में खेले। तो जब आप पहले बैट करते हैं तो टारगेट का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरह से चल पाई है, तो एडिंग एक्स्ट्रा प्रेशर इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे। फ्री होके खेलेंगे, टारगेट सेट करके खेलेंगे, और अगर आपको अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे भरोसा है कि आप जितना भी टारगेट दें उसको डिफेंड कर पाएंगे, सो फाइनल के हिसाब से अपनी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और फ्रीली खेलने देने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बैटिंग करने का फैसला बेटर था थोड़ा सा इनका। और जो दूसरा उन्होंने कहा फील्डिंग का, उस पर तो खैर जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, बिकॉज T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो अगर आपके सामने थोड़ी सी भी मजबूत टीम होगी तो वो आपको के आप दे विल मेक यू पे द प्राइस फॉर इट। अभी तक इंडिया को वो नहीं झेलना पड़ा है क्योंकि उस तरह की टीम नहीं मिली है इनको सामने खेलती हुई, बट आई होप के पिछले मैच और इसके बीच में जो इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है उसमें इस चीज़ पे ज़रूर बात की हो टीम मैनेजमेंट ने कि आप फील्डिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं।
5: चलिए टॉस पर हमने सुना कि चामरी अच्छापट्टू ने कहा द फर्स्ट सिक्स ओवर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी। भारत के लिए स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ओपन करेगी, और वापस स्मृति मानधना पर आते हैं लतिका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिलाओं के क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज्यादा रन बनाए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फैन बेस में एक वो चर्चा रहती है कि बड़े मुकाबलों में शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। जैसा अभी उत्तरा ने भी कहा, जो सेंचुरी आई वो हांगकांग के खिलाफ आई, पिछले दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल बांग्लादेश के खिलाफ, वहां रन नहीं बने। आप कैसे देखते हैं इसको?
7: हाँ देखिए, कोई भी प्लेयर होता है और खासकर स्मृति जैसा प्लेयर जिसने काफी लंबा सफर अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में अपना निभाया भी है, और हमने देखा है कि साल दर साल वो इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं, जो नंबर ऑफ रन्स हैं उनके बल्ले से ज़्यादा निकल रहे हैं। आप अगर एबिलिटी देखें उनके सिक्सेस लगाने की या बिग शॉट्स लगाने की, वो पहले इतनी नहीं दिखती थी, जो आज के टाइम में उनके बैटिंग में ये फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रन बनाती हैं वहाँ पर उनकी जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, और अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। एक कोई भी प्लेयर होता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, वो पर्टिकुलरली डे पे किस तरीके से, किस माइंडसेट से वो खेलना चाहता है, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है या किस तरीके से देखता है। T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खासकर जो ओपनर्स होते हैं, पावर प्ले का इतना प्रेशर रहता है कि इस पावर प्ले को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज जो है रन्स ले सकते हैं, तो वहां पर कई बार आपको एग्रेशन के साथ खेलना होता है जैसा कि शेफाली वर्मा खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ भी रखनी पड़ती है कि सामने जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी वहाँ कर रहे हैं और जो विकेट है वो किस तरीके से खेल रहा है। जो सरफेस है कई बार उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप खुल के अपने वो शॉट्स नहीं खेल पाते। स्मृति की यही बात करूँगी, ओवरऑल ग्लोब में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है और जो टाइमिंग के उस्ताद वो बन चुकी हैं, जिस तरीके से वो बल्ले से गेंद को जब टच करती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में और बाउंड्री के बाहर भी जाता है। तो लगता है कि आज के मैच में उनसे काफ़ी उम्मीद है कि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शेफाली और स्मृति देंगे।
6: जी लतिका, आपने बात करी शेफाली की, तो शेफाली जब तक क्रीज पर हैं वो पेस कम नहीं होने देती हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पिच भी बॉलर्स को मदद कर रही थी, तब 64 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है, लकी भी रही उस दिन, लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड शी इज़ अ फियरलेस बैटर। ओडीआई वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी और नाउ शी हैज़ बिकम इररिप्लेसेबल। उनके ग्राफ को आप कैसे देखते हैं?
7: देखिए, मैं बार बार कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो उनके लिए यही कहती हूँ कि पिछले जब वो ड्रॉप हुए थे भारतीय टीम से, उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेला है। वहाँ पर उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है और जिसका उनको भरपूर फ़ायदा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप पे उनको कॉल आया, वहाँ पर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनका परफॉर्मेंस आई, तो ये एक कमबैक जो उनका रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और वो अहमियत जानती हैं कि जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जब आप टीम में आते हैं तो वो डिफरेंस जानती हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है। इस शेफाली वर्मा में हमें वो चेंज दिखाई दिया है कि एग्रेशन के साथ साथ आपको लंबी पारी कैसे खेलनी
5: जी। और सिमिलैरिटीज अगर देखें, इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स, उतरा द सेम पैरेलल टू जी कामलिनी, अगेन अ टीनेज प्रोडिजी एंड अगेन शी हैज बीन ड्राफ्टेड इनटू द साइड इन द बिग फिनाले, हैज प्लेड ओनली वन गेम फॉर इंडिया बिफोर दिस। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट फॉर हर टुडे एंड डू यू सी हर बैटिंग एट नंबर 3 इन प्लेस ऑफ प्रतिका और डू यू सी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर?
9: सी, जैसा लतिका ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्पेशली T20 फॉर्मेट में इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एट दैट मोमेंट। अगर स्मृति और शेफाली ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया बोथ इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एंड द रन स्कोर्ड, तो हो सकता है कि

0: वहाँ पर सूट करती हैं, क्योंकि ऋचा घोष, दीप्ति, अभी कमलिनी है, फिर हरमन है, तो इनके बाद ही अगर वो आती हैं तो मुझे लगता है ठीक है,
1: क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है। और लतिका, आपने भी कहा कि आप पहले दूसरे मैच में ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत ने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए, इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई बदलाव किया है। वहीं श्रीलंका हैव चेंज्ड देयर प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम। व्हाई डिड इंडिया शाय

0: सवाल है, आप जानते हैं दोनों टीमें अपराजित हैं और दोनों ने बिना किसी मैच को गवाए फाइनल तक जगह बनाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कह सकते हैं श्रीलंका का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में कुछ हद तक परेशान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद अंततः श्रीलंका ने बाजी मारी और फाइनल में जगह बनाई। जहां तक दुबई का सवाल, हमारे प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं कि यहां का विकेट थोड़ा सा धीमा है, रन्स कम बन रहे हैं और इस लिहाज से 140-45 के आसपास का स्कोर एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के ऊपर। टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब देखना है कि भारत श्रीलंका के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर पेश करने वाला है। और अब वक्त है हमारे पास स्वागत करने का अपने मित्र मुनीश जॉली का। वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच संजय दा, एंड आई होप ऑल द लिसनर्स अराउंड द कंट्री एंड आल्सो पीपल हु आर ट्यून्ड इन विद इन आर कीपिंग वेल, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग गेम, इट्स अ सुपर संडे, बोथ मेन एंड वुमेन टीम आर प्लेइंग, बट बिगर गेम हियर एट दुबई इज बिटवीन द इंडियन वुमेन एंड द श्रीलंकन वुमेन, ऑफ कोर्स वाइंग फॉर द ऑनर्स फॉर द एशिया कप। इंडिया मेकिंग वन चेंज दादा, surprisingly the words that I heard from Harmanpreet was that Pratika Rawal has been rested, and that word rested in a final doesn't come in so easily, not able to digest that easily. Kamalini though comes in, but I think that's a strategic change that they've made. Your views on it?
0: मुनीश, ये पहला परिवर्तन किया है भारत ने, जितने मैचेस खेले हैं दुबई के अंदर अब तक अनचेंज टीम के साथ उतरे, पहला परिवर्तन किया और वो भी फाइनल में किया। अब इसकी वजह क्या थी, क्या प्रतिका रावल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत संतोषजनक नहीं था, उन्होंने 56 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो ऐसे में उन्हें परिवर्तन के तौर पर बाहर रखना और कमलिनी को लाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ये क्रिकेट है और यहाँ पर जब आप रिस्क लेते हैं तो कई बार आप बेहतर भी करते हैं। अंपायर्स अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने में बस अब चंद लम्हे बाकी हैं। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है और जाहिर है 8वीं बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी।
1: एब्सोल्युटली, एंड बोथ द ओपनर्स कमिंग आउट इन द मिडल, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, द लेफ्ट एंड द राइट हैंड कॉम्बिनेशन, बट इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एट दुबई। द टेम्परेचर्स ऑफ कोर्स, इट्स अ क्लियर वेदर, नो चांसेस ऑफ रेन, एंड टू वुमेन हु वॉक ऑन इन द मिडल विद अ ट्रिमेंडस स्ट्राइक रेट व्हिच यू वर मेंशनिंग ऑफ एयर ऑल्सो दादा, 126 फॉर स्मृति मानधना, एंड ऑफ कोर्स 176 मैचेस विद ओवर 4600 रन्स, 8 मोर रन्स टू रीच टू 4700 रन्स इन हर T20 करियर, बट शिफाली वर्मा इज इक्वली गुड।
0: बिल्कुल, कम उम्र में ही शेफाली ने जिस तरह से अपने आप को पुख्ता किया है भारतीय टीम के अंदर, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और शुरू में शेफाली सिर्फ बल्ले से अपना जौहर दिखाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से लगातार वो गेंद के साथ भी बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। मिथाली अयोध्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी श्रीलंका के लिए, ये उनका 11वां मैच है, कुल मिलाकर 10 विकेट ले चुकी है। अगर तेज गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका के पास एक लौता तेज गेंदबाज मिताली के तौर पर है,
1: एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लिंग आर्म एक्शन जस्ट लाइक मलिंगा। दादा, वर यू सरप्राइज्ड? एंड इट्स अ डिफिकल्ट एक्शन दो।
0: बिल्कुल।

0: बहुत मुश्किल एक्शन होता है, लेकिन जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कई बार वो जो बैटर होता है उसे परेशान भी करता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की गेंदों को। लेकिन सामने जो दो बैटर्स हैं भारत के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में उनका शुमार है। पहली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत इत्मीनान के साथ प्लेस किया, खाता खोला चार के साथ, तो भारत ने खाता खोल लिया है इस मुकाबले के अंदर। स्मृति मांधना के बल्ले से निकला ये पहला चौका और बहुत इत्मीनान के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को प्लेस किया चार के लिए।
1: And what a timing. She resembles Sourav Ganguly so much, and I've said that in a number of occasions, even while the live commentary. Of course, Smriti Mandhana, Shefali Verma, G. Kamalini is going to come at number three, Harmanpreet Kaur, Richa Ghosh, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Prema Rawat, Kranti Gaur, Sri Charni and Nandini Sharma are the women in 11.
0: Mithali ki game, off stump ke bahar, aur jaisa ke aap jante hain, thoda sa slinging action hai, aur game ki disha अक्सर स्टंप के ऊपर नहीं रहती। मिताली की अगर आप गेंदें लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने में ज्यादा यकीन रखती हैं। और फाइनल है, फाइनल में भारत खेल रहा है तो दर्शकों की संख्या कैसे कम हो सकती है, खचाखच तो नहीं, लेकिन हां कई जगहों पर ठीक ठाक भरा हुआ ये स्टेडियम दुबई में। श्रीलंका और भारत फाइनल खेलते हुए, भारत अब तक हर फाइनल में भारत ने जगह बनाई है इस टूर्नामेंट के। मिताली की अगली गेंद शेफाली के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन के तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को।
1: एब्सोल्युटली, एंड द बॉल कीपिंग लो आल्सो दादा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट टू रीड आउट द 11 ऑफ श्रीलंका, इमेशा दुलानी, चमरिया थपथु द कैप्टन, विश्मी गुना रत्ने, हसिनी परेरा, हर स्थिता, समर विक्रमा, कविशा दिलहारी, निलक्षिका सिल्वा, कौशिनी नृत्यांगना, सुगंधिका कुमारी।
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना काविंदी, कुल मिलाकर 29 रन बनाए थे उन्होंने चार मैचेस के अंदर। पांचवी गेंद और इस बार स्टंप पर, आमतौर पर आप उनकी गेंदों को स्टंप पर नहीं देखेंगे, ये पहली गेंद थी जो स्टंप पर आई थी और इसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया और सीधे खेला। कप्तान चामरी अटापट्टू इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं बोला और ये परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। चामरी अटापट्टू जिनकी बल्लेबाजी खौफ पैदा करती है विपक्षी टीम के मस्तिष्क में, वो चल नहीं पाई। आखिरी गेंद ये भी स्टंप पर और इस बार रक्षात्मक तरीके से, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती शेफाली शुरुआती।

0: less strokes left.
1: Thank you so much, Dada. And of course, the English and the Hindi commentary for all our listeners around the country. Akashwani bringing you the live coverage of the Asia Cup 2026. Of course, India playing Sri Lanka. The women are the champions in the 50-over format. Mithali continuing from the other end. Again, that slinging arm action, just pitching the ball on the middle and leg for the left-handed Smriti Mandhana. The field, of course, five fielders for Smriti Mandhana on the leg side. It was a mid-on, mid-wicket, a short fine leg, a player in the deep. They also had one player at long one for her. But a different field placement for Shefali Verma. The short third man, fine leg inside the circle, which is, of course, a 23-meter circle for the women cricket. Shefali Verma on strike. She's batting on 8 off 8. She played the four first balls at dot balls. Gets a short off-land delivery and guides the ball on the right side of the short third man fielder, and the ball races down to the boundary for a four. Now, this looks like to be a better shot by Shefali compared to the couple of runs she took in the previous over from Kavisha Dilhari.
0: बिल्कुल पूरे संयम के साथ उन्होंने इंतजार किया और चूंकि हल्का स्विंग हमेशा मिलता है उसे देखते हुए इंतजार किया और आखिरी वक्त पर सिर्फ गेंद को दिशा दे दी खूबसूरत स्ट्रोक एक और चार
1: Well, they got two fielders outside the 23-meter area circle. One at the deep mid-wicket, the other as a sweeper, not as a point or a backward third man. Meanwhile, the next delivery on the middle and leg, and she times the ball beautifully towards the mid-wicket boundary for a four.
0: Munish, agar ye jodi set ho gayi aur ye पावर प्ले को इन्होंने निकाल दिया तो ये मान करके चलिए कि श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अमोल मजूमदार जो कि भारतीय टीम के कोच हैं लगातार टीम को संवारते हुए
1: But the one thing is absolutely sure that there isn't enough bounce on this wicket. It's going to keep low. And the Indian players and, of course, the batters of Sri Lanka, they have to be very careful. So you start reading the wicket as early as possible. So it's keeping low at the Dubai International Cricket Stadium. Shefali batting on 16 off 10. Smriti Mandhana, the non-strikers. And mind you, she's batting on 11. And boy, what timing she's doing. 11 off 5. At the moment, Shefali facing... Mithali Ayodhya comes in right arm over the wicket. And a short of length delivery, Apesh. Then there's a deep point. There's no short point. So the ball does fly in the air for some time near the 23-meter area. Drops and then races down to the fielder. So a single, and good to see that there's a rotation of a strike also when there's a good ball. So 10 runs in this over already. And mind you, 5 boundaries have been scored by the Indian batters. And they're batting strongly. The total at the moment for India is 28 without loss. And Sri Lanka... Of course, they lost the toss. India won the toss, and Harmanpreet said that it's a big game and we want to bat first.
0: हालांकि चामरी ने कहा था टॉस हारने के बाद कि वो फील्डिंग ही करना चाहती थी पहले तो उस लिहाज से जो वो चाहती थी उन्हें मिला जो हरमनप्रीत चाहती थी वो उन्हें मिला
1: Next delivery from Mithali Ayodhya, right arm over the wicket, and she comes in short of length delivery, and Smriti Mandhana does it well to watch the ball. It kept low after pitching, a short of length delivery, and she just went back and gently plays the ball back to the bowler. Quickly she goes to the run-up. Mithali just walking and now runs to bowl another delivery. This time straying down the leg side and short of length delivery. They've got a deep square leg also plays for Smriti Mandhana. She's a good attacker of the ball. So a single to end this over. Number three. And India have had a wonderful start now. And this, of course, is a single that will take India to 29 without loss. Mandhana batting on 12. Shefali Verma. Four dot balls to start with. And I tell you what, she's raised up to 17 in 11 deliveries.
0: कमाल की बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट के दौरान शेफाली वर्मा ने कुल मिलाकर 168 रन बनाए उन्होंने इससे पहले इस टूर्नामेंट में और उनसे ठीक पीछे हैं स्मृति मांधना और अगर आप टॉप बैटर्स की फहरिस्त देखें इस टूर्नामेंट में तो टॉप दो की पोजीशन पर शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना काबिज हैं कमाल की बल्लेबाजी कर रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से आज भी जिस तरह से विकेट को पढ़ करके इन्होंने खेलना शुरू किया है और ये बिल्कुल सही रणनीति के है कि आप शुरू में कुछ गेंदों को सम्मान दें और उसके बाद कमजोर गेंदों पर आक्रामक रुख अख्तियार करें
1: Sugandhika Kumari has been now invited to bowl. Of course, 106 matches with 81 wickets in her T20 career. And the left-arm spinner starts coming around the wicket, and a slower delivery. It was a floater of a ball coming left-arm around the wicket, and a short of a land delivery to Smriti Mandhana. And she's doing just the right thing, Sanjita, that she is waiting for the loose opportunity. Otherwise, she's just timing the ball well, and she does it to perfection this time. Picks up a single.
0: बिल्कुल यही तरीका भी होना चाहिए मुनीश के इस समय कोई रन्स बनाने की आपको बहुत जल्दी नहीं अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन खुद ब खुद बनेंगे और तेजी के साथ बनेंगे.
1: With that single, Shefali will come on strike faces, and she steps out to this flatter delivery. Good to see that once she saw Sugandhika just checking that length and bowling a tight line at short of length, she just places the ball to the mid-off fielder. Didn't get a run, so she's on strike once again. Smriti's batting on 13, Shefali on 17. And a short delivery that kept low, and we're going to say that again and again because that's the highlight of this big wicket at Dubai International. She did go for a shot across. Plays it down to the deep mid-wicket area for a single. India with that single move on to 31 without loss. But the ball is keeping really low, Sanjeda.
0: ये कई बार परेशान करता है बैटर्स को, लेकिन अब चूंकि लगातार आप इसी विकेट पर खेल रहे हैं दुबई में, तो जाहिर है थोड़ा सा अनुमान तो अंदाज हो ही गया है.
1: Another delivery outside the off stump. Mandhana times the ball well, but then the fielders inside the 23-meter area circle. Wide-ish, short third man, a backward point, then they've got a cover and an extra cover. There's also one fielder longer for Smriti Mandhana. She's got that tendency of stepping out of the spinner. Sugandhika, just two runs conceded in four balls, comes again, once again, short delivery, and she pulls it towards the deep mid-wicket area, and the ball races down to the boundary for a four for Smriti Mandhana.
0: एक और चौका, और इस चौके के साथ भारत पहुंच गया है 35 पर बिना किसी नुकसान के. सुगंधिका को परिवर्तन के तौर पर लाया गया और शुरुआत की दो तीन गेंदों पर बहुत इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी की शेफाली वर्मा ने, और जैसे ही एक कमजोर गेंद मिली स्मृति मानधना को, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया.
1: So then three boundaries each for Smriti Mandhana and Shefali Verma, as our scorer Ranjit Singh Rawat tells us. That and he also points out that Smriti Mandhana is timing the ball to perfection, and yes, indeed, because the next delivery was a short of land delivery way outside the off stump. She didn't go for a cut, and Dada, I tell you what, that's a good technique because the ball is keeping low, and the coaches and you know, the guides tell you that you shouldn't go for a cut shot if the ball is keeping low. That's exactly what Smriti Mandhana did. Didn't get a run though, but she went for a back foot punch, plays the ball to the cover fielder. So after the end of the over number four, India are 35 without loss. Mandhana batting on 17. Verma, oh boy, what a start she had. Four dot balls and then racing and overtaking Mandhana. I tell you what, 18 happens to be till now her best score in Asia Cup
0: 2026.
1: In fact, the final, because she hasn't really done well in the final. She had a lovely semi-final, but as far as the finals are concerned, the new stat that came to us from our scorer Ranjit Singh and of course Ajay Goel, our statistician, that this is the best score in a final of a big event.
0: बिल्कुल तीसरा फाइनल खेल रही है वो, और अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. परिवर्तन, चामरी अटापट्टू, पहली गेंद और सीधे चार रनों के लिए डिस्पैच. मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया शेफाली ने, मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रही थी, और सिर्फ शेफाली को सिर्फ अपना बल्ला चलाना था. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चार.
1: What a shot then. It was a short delivery, and I think that was just a warm-up delivery for the Sri Lankan captain. Short enough for Shefali, who's already set and hits that ball to perfection. Though there was a fielder, but it was hit on the right side and a very powerful shot.
0: सबसे ज्यादा विकेट चामरी के नाम है श्रीलंका के लिए. एक और स्ट्रोक, और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है. गैप्स जितनी शानदार तरीके से उन्होंने निकाले, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के गेंद फील्ड हुई. कवर पर पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में से यह स्ट्रोक खेला था, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेफाली अब पहुंच गई हैं 24 पर. 15 गेंदों में 24 रन. स्मृति मानधना 11 गेंदों में 17 रन बना चुकी हैं. चामरी अटापट्टू इस बार विकेट तो जरूर उन्हें मिले, लेकिन बल्ले से रन नहीं बने, और ये श्रीलंका के लिए परेशानी है. और ये एक और स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए. ये पहला छक्का शेफाली के बल्ले से. चामरी अटापट्टू जैसे ही आई, अचानक आक्रामक हो गई शेफाली.
2: कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में अटपट्टू के, कहीं कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट कराने की कोशिश, हाफ बॉली पर लिया और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेंद को उठा दिया एकदम लॉफ्टेड ड्राइव 6 रनों के लिए। और अब सेलिब्रेशन का टाइम इंडियन दर्शकों के लिए दुबई के अंदर।
1: जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट 50 रन मार्क एंड व्हाट अ स्टार्ट इंडिया हैज। स्मृति एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड जस्ट प्लेइंग दैट रोल ऑफ अ मैच्योर्ड बैटर। शेफाली ऑन स्ट्राइक बैटिंग ऑन 30।
2: कमाल की बल्लेबाजी, इस बार बैकफुट पर गई और चूंकि गेंद में बहुत ज्यादा गति नहीं थी स्ट्रोक खेलने का मौका मिला, यहां रन भी मिले साथ ही साथ। तो भारतीय दोनों बैटर्स बिना किसी परेशानी के अब तक चलती हुई और जो वर्तमान रनों का औसत है वो 10.29 है। पावर प्ले चल रहा है बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर निकल रहा है और ऐसा लगता है कि फील्डर के पैर पर थोड़ी सी चोट है, लेकिन चामरी अटापट्टू मुनीश बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाए इस पूरे टूर्नामेंट में। 63 रन है उनके नाम 4 मैचेस में और श्रीलंका की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो पूरी तरह से चामरी अटापट्टू पर निर्भर है और अगर वो ही नहीं चलती हैं तो फिर टीम परेशानी में पड़ती है।
1: Well, she did lead the chase and get close to her half century. But after that, yes, she's scripting, trying to script another victory. But then we see an injury on the field and that's a twist of an ankle. And that's not a good news for the Sri Lankan team because I tell you what, there isn't any role that the other batters or the fielders have played till now because Sri Lanka into the fifth over fielding and then they don't want to see a player getting injured while fielding. We can understand that if there's a bowler who's coming in and bowling and there's a hamstring pull or while the batter is batting between the running between the wickets, there is an injury. But then right at the start of the game, in the very first power play, where India have raced on to a blazing start with 48 without loss, the rhythm of the game has been held up because there is an injury right there in the middle. We'll quickly identify the player because she's been crowded around by the other players. Smriti Mandhana, Shefali right there in the middle and standing quite apart talking to each other. Smriti doing the much of the talking and that's needed. And that's not a good sight that we see just now because the stretcher has been brought in.
2: बिल्कुल, जब इस तरह की चोट होती है, अगर आपका बैट ट्विस्ट कर जाए तो वो आपको परेशान करता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, शेफाली की पल्ले से आज 17 गेंदों पर अब तक 31 रन बन चुके हैं, एक छक्का लगा चुकी हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं। बढ़िया पारी शेफाली की और अगर आप सलामी जोड़ी का जिक्र करें तो ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन है फाइनल के अंदर T20 क्रिकेट में, एशिया कप फाइनल में। भारत की इन दोनों बैटर्स का और कुछ लम्हों के लिए खेल में व्यवधान।
1: We still have to figure out what's happening because the umpires are definitely trying to get things sorted out here because it's not helping as far as the rhythm of the game is concerned. And of course, at the center, there's a lot of crowd and it seems that Shefali and Mandhana have also spoken to the umpire in case there is an injury which is really dangerous and if the player is injured, we need to get the player substituted.
2: बिल्कुल, विश्मि गुणरत्ने को आज टीम के अंदर शामिल किया गया, मौका मिला उन्हें फाइनल के अंदर लेकिन चोट की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है और बाहर गई हैं वो, स्ट्रेचर पर उन्हें बाहर ले जाया गया है। इस बार गेम का इंतजार किया चामरी अटापट्टू ने और हल्के से केवल दिशा दी उसे मिड विकेट पर। स्मृति मंधाना और शेफाली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है। उन्हें पता है कि उन्होंने भारत के लिए गजब का स्टार्ट दिया है, एक सॉलिड स्टार्ट दिया है। 150 रन 140 प्लस निश्चित तौर पर श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं। चामरी अटापट्टू की ये गेंद और इस बार फिर स्ट्रेट खेला एकदम सामने, अब देखना है ये 6 है या 4 है। जाकर के गेंद रोप के नजदीक लगी है, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली, खासतौर पर चामरी की गेंद पर उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। ऊंचा शॉट खेला, दूसरा शॉट था इस ओवर में और गेंद सीधे जाकर के रोप से क्या पहले गिरी या रोप पर गिरी, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला करना होगा। मुनीश, आपकी नजरें क्या कह रही
1: हैं? टू मी इट लुक्स लाइक अ सिक्स एंड नाउ इट्स बीन गिवन बाय द अंपायर एज वेल एंड विद दैट सिक्स इंडिया क्रॉस द 50 रन मार्क एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय इंडिया इन द वेरी फर्स्ट 5 ओवर्स। 23 मिनट्स ऑफ बैटिंग इंडिया हैव क्रॉस्ड द 50 रन मार्क एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल विकेट, सो 55 आफ्टर द एंड ऑफ 5 ओवर्स।
0: सुगंधिका का नए ओवर की शुरुआत, ये दूसरा ओवर है सुगंधिका का। अच्छी गेंदबाज हैं जहां तक सुगंधिका का सवाल है, अनुभव है उनके पास, 100 के आसपास मैचेस खेले हैं, 35 वर्ष की उम्र है, 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, तकरीबन 11 साल का सफर तय कर चुकी हैं और बढ़िया बल्लेबाजी की है। आज खासतौर पर चामरी अठापट्टू के आत्मविश्वास को हिला करके रख दिया शेफाली वर्मा ने। दायरे पर गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और यह मौका मिल गया दोनों बैटर्स को दौड़ करके एक रन ले लेने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। करंट रन रेट जो है वो अब लगातार ऊपर जाता हुआ 10.7 पर पहुंच गया है, यानी कि 11 रन प्रति ओवर और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है भारत के लिए। स्मृति तैयार और इस बार हल्के से केवल दूर किया अपने शरीर से गेंद को लेकिन कोई रन नहीं। स्मृति थोड़ा सा संयमित होकर के खेल रही है और

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक

0: ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
6: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में

कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से

0: ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity.

0: cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remained confined to one region in today's interconnected world. We have a report from our correspondent.
2: The two-day summit focused on resilience, innovation, cooperation and sustainability with more than 50 practical outcomes. The summit deliberated on major global and regional issues, including global governance reform, international trade, terrorism, peace and security, artificial intelligence, climate change, healthcare and sustainable development. The leaders supported a stronger cooperation in pandemic preparedness and integrated early warning system for infectious diseases. On the situation in West Asia, BRICS leaders called for maximum restraint, dialogue and diplomacy and stressed the need to protect civilians and civilian infrastructure. The leaders strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and reiterated their commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism. The New Delhi Declaration is expected to pave the way for enhanced BRICS cooperation in economic development, technology, healthcare, climate action and global governance while strengthening the voice of the Global South. This summit was highly significant from the perspective of global politics, the economy and the multilateral cooperation. The discussions on the situation in West Asia and issues related to international peace and security made it clear that BRICS is no longer merely a platform for economic cooperation, but its role in the global political discourse is also steadily expanding. With BRICS team, this is Ankit Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: The External Affairs Ministry today said the BRICS summit, which concluded in New Delhi today, produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said that more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
0: Mr. Dalela said the summit also received reports from the BRICS Business Council and the BRICS Women's Business Alliance, bringing the perspectives of businesses, particularly women entrepreneurs, directly to the leaders. He said Prime Minister Narendra Modi delivered the closing remarks at the conclusion of the open session.
3: In his closing remarks, Honorable Prime Minister extended his best wishes to President Xi Jinping as the next host of BRICS for 2027 and thanked all delegations and their team for the success of New Delhi BRICS Summit.
0: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. The Prime Minister today held bilateral talks with leaders of Kazakhstan, Egypt, Indonesia and Philippines, South Africa, Burundi, Nigeria, and Uganda. The Prime Minister met President of Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev. The two leaders reviewed cooperation in a range of areas, including politics, trade, defense and security, connectivity, energy, critical minerals, emerging technologies and creative economy and people-to-people ties. The Prime Minister also held a meeting with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi and Indonesian President Prabowo Subianto. Mr. Modi also held talks with Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. He welcomed the Philippines' decision to join the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. During his meeting with South African President Cyril Ramaphosa, Mr. Modi reviewed the full range of the India-South Africa strategic partnership. The Prime Minister also met Nigerian Vice President Kashim Shettima. Yesterday, Mr. Modi held bilateral meetings with leaders from Ethiopia, Malaysia, UAE, Vietnam and China. On Friday, the Prime Minister met leaders from Russia and Iran and also the UN Secretary General. This is Akashwani giving you the news.
4: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back to the news at 9. Union Home Minister Amit Shah has called upon Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said the nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds.
5: I urge all of you that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds, whether it is making the machinery, producing lab-grown diamonds, crafting jewelry, or establishing brand presence and opening showrooms in cities around the world, the entire chain should be under the control of India, under the control of my diamond merchants.
0: The Home Minister said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. Meanwhile, addressing media persons in Mumbai, Mr. Shah has announced that the Bharatiya Janata Party workers, NDA partners and several voluntary organizations will undertake the Seva Sankalp Abhiyan across the country between 17th of this month and the 17th of October. Mr. Shah said the campaign aims to contribute to the vision of a Viksit Bharat through Jan Bhagidari.
6: हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी
5: All of us constituent parties of the NDA and the Bharatiya Janata Party have decided that from September 17 to October 17 we will organize the 1 month the Seva Sankalp Abhiyan. The Seva Sankalp Abhiyan will be conducted across the country. We will reach out to the people through this campaign covering every administrative unit, every district, every Lok Sabha and assembly constituency and all the way down to every booth.
6: Sankalp Abhiyan ko lekar hum desh ki janata tak pahunchne wale.
0: In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. Diplomatic efforts are gaining renewed focus this week as the ongoing US-Iran conflict continues to disrupt the Gulf region and expand into other areas. Iran and the Gulf states are due to meet in Oman tomorrow to discuss the Strait of Hormuz and broader regional security. We have a report from our West Asia correspondent.
7: Even as maritime security along the Strait of Hormuz and Red Sea continues to remain a concern, diplomatic efforts are back in focus this week. Iran and the Gulf countries are expected to meet in Oman on Monday to discuss the Strait of Hormuz and broader regional security. Iran says it has reached an understanding with Oman on a possible entry and exit route in the strait. While the meeting could open a channel for dialogue and help reduce tensions, any immediate agreement on reopening the strait seems less likely as Iran has clarified that this will depend on the US agreeing to their conditions. Manish Shiva for Akashwani News, Dubai.
0: In a related development, India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It has also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. This is Akashwani. You are listening to the news at 9.
4: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Moshi in China today. The Indian men's team defeated South Korea 4-1 in the final to successfully defend its title. Ajit Yadav, Anmol Ekka, Prabdeep Singh and Ashu Maurya scored for India. With this victory, India secured its sixth title following earlier triumphs in 2004, 2008, 2015, 2023 and 2024. The Indian women's team also emerged victorious, defeating host China 1-0 in the final. Sanika Chandrakant Mane scored the only goal in the 17th minute to secure the title for India. The victory completed a hat-trick of Junior Asia Cup titles for the Indian women's team, which had previously won in 2023 and 2024. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. Prime Minister Narendra Modi has congratulated India's junior women's hockey team on retaining the Asia Cup title with an unbeaten campaign. In a social media post, Mr. Modi said the team's success reflects the talent and determination of players and extended his best wishes to the entire team. Congratulating the junior men's hockey team, the Prime Minister described the achievement as remarkable and reflects the immense talent of the young players. In women's cricket, India were 145 for 2 in 15.3 overs against defending champion Sri Lanka in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai when reports last came in. Earlier, Indian skipper Harmanpreet Kaur won the toss and elected to bat. In men's cricket, Afghanistan were 148 for 8 in 19.4 overs against India in the first T20 international of the three-match series in Delhi a short while ago. In para badminton, Tokyo Paralympic gold medalist Pramod Bhagat secured gold medal in the men's singles SL3 category and teamed up with Sukant Kadam to win the silver in the men's doubles SL3 SU5 at the Japan International today. The six-time world champion Bhagat produced a dominant performance in the singles final, defeating fellow Indian Umesh Kumar 21-16, 21-8 to clinch the top honour. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagement with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. Six persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's team clinched Junior Asia Cup title at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the three-match T20 series in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिए के सभी फैसलों पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की ज़रूरत है. इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची. वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की. इसके साथ साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैन-उल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखीं. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کا مقصد لیب میں تیار کیے گئے ہیرے جواہرات کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کی حیثیت اختیار کرنا ہے. جاوا سمندر میں انڈونیشیا کا ایک چھوٹا جہاز الٹ جانے کے حادثے میں 6 افراد ہلاک اور تقریباً 130 لاپتہ ہو گئے ہیں. ہاکی میں بھارت کی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے چین کے شہر موکی میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب حاصل کیے ہیں اور کرکٹ میں خواتین کے T20 ایشیا کپ میں دبئی میں بھارت اور دفاعی چیمپئن سری لنکا کے درمیان فائنل میچ جاری ہے. ادھر نئی دلی میں 3 میچوں کی مردوں کی T20 سیریز کا پہلا میچ بھارت اور افغانستان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई कि ब्रिक्स के तनव्वो की बुनियाद पर इसकी शनाख्त, तआवुन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को तआवुन हासिल होता रहे। दो रोज़ा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने खितामी कलमात में वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निज़ाम है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन में जो मुज़ाकरात हुए उनसे इस मकसद को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
8: सरबराह मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के तआवुन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फायदा हासिल हो।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
8: इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है क्योंकि वबाई बीमारियों, आबो हवा से मुतल्लिक कुदरती आफात और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में कोई बहरान महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
9: इस दो रोज़ा सरबराह मीटिंग में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई और 50 से ज्यादा हिकमत अमली हैसियत के फैसले किए गए। सरबरा मीटिंग में बड़े आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई जिनमें आलमी हुक्मरानी में इसलाह, बैन अलाक्वामी तिजारत, दहशतगर्दी, अमन व सलामती, मसनूई जहानत, आबो हवा में तब्दीली, हिफजान सेहत और पायदार तरक्की के मौजूद शामिल हैं। रहनुमाओं ने वबाई बीमारियों के तनाजुर में तैयारी के मैदान में एक मजबूत तर तआवुन और मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से खबरदारी के एक मजबूत निज़ाम की हिमायत की। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल इख्तियार करने, मुज़ाकरात जमहूरियत की हिमायत की और शहरियों व शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की और इसके तई हरगिज़ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई अपने अहद का इजहार किया। उम्मीद है कि नई दिल्ली में एलामिया से इक्तसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, हिफजान सेहत, आबो हवा में तब्दीली और आलमी हुक्मरानी के मैदान में ब्रिक्स के तआवुन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा। नीज आलमी जुनूब की आवाज़ को तकवीत मिलेगी। ये सरबराह मीटिंग आलमी सियासत, मईशत और कसीर मुल्की तआवुन के तनाजुर में इंतहाई अहम रही। मगरबी एशिया में सूरत हाल और बैन अलाक्वामी अमन व सलामती से मुतालिक मामलात पर बातचीत की वजह से ये वाज़ह हो गया है कि ब्रिक्स अब मजीद महज इक्तसादी तआवुन का कोई प्लेटफार्म नहीं है बल्कि ये आलमी सियासी तनाजुर में इसके रोल की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। न्यूज़ डेस्क से अंकित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
8: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से अलग आला सतह की बहुत सी दो तरफा सरगर्मियाँ अंजाम दी। पिछले तीन दिन में जनाब मोदी ने सरबराहान मुमलकत हुकूमत के साथ 15 मीटिंग्स का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने बैन अलाक्वामी इदारों के आलमी रहनुमाओं और सरबराहान के साथ भी बहुत सी मीटिंगें की। इन मीटिंग्स से दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करने और इलाकाई और आलमी तरक्यात पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम हुआ। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिपीन, जनूबी अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कजाकिस्तान के कासिम जमरत पुरगेव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासत, तिजारत, दिफा और सलामती, कनेक्टिविटी, तवानाई, अहम मादनियात, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, तख्लीकी मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बहुत से मैदानों में तआवुन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी के साथ भी एक मीटिंग का इनेकाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात, खासतौर पर इलाकाई तरक्यात और भारत मिस्र शराकत दारी पर बातचीत की। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत से शोबों में अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने का अमल जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने फिलीपींस के सदर फेडिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कुदरती आफात की सूरत में मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद में शामिल होने के फिलीपींस के फैसले का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ अपनी मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने भारत जनूबी अफ्रीका अहम शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया, जिसमें भारत SSCU तजारती समझौता, कानकनी और अहम मादनियात, बुनियादी ढांचा, खुराक की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी शामिल हैं। बुरुंडी के सदर इवारिस्ते एनदीए शीमे के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने अफ्रीकी यूनियन की सदर नशीनी इख्तियार करने पर बुरुंडी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने नाइजीरिया के नायब सदर काशिम सिटीमा से भी मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और भारत और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर इक्तसादियात व मालियात जमशेद कुचकरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा इक्तसादी और मालियाती तआवुन को मजबूत बनाने पर बातचीत की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि नई दिल्ली अलामिया में रवायती, तकमीली और लाजमी दवाओं TCIM की निशानदेही रवायती दवाओं के शोबे में आलमी तआवुन को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने एक बयान में खासतौर पर कहा है कि ब्रिक्स सेहत ट्रैक के तहत TCIM से मुतालिक ब्रिक्स का माहरीन का मुजवजा वर्किंग ग्रुप रुकन मुल्कों को एक बामानी प्लेटफार्म फराहम करेगा, जिस पर एक दूसरे को मालूम फराहम की जा सकेगी और तहकीक और शवाहद पर मबनी जदीद तरीन नजरियात को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। दाखिली उमूर और बाहमी और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भारत की जवाहरात और जेवरात की सना से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लैब में तैयार किए गए हीरों का पूरा इको निज़ाम और मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला भारत के ही हाथों में पुख्तगी से बरकरार रहे। मुंबई में जवाहरात और जेवरात के 52वें अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की वजह से अब इसकी तजारत में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की मार्केट उम्मीद है कि अपनी गुंजाइश के एतबार से मौजूदा मार्केट का तकरीब 50 गुना हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के पास बुनियादी ढांचा, सलाहियतें, एहसास है और कारोबारी जज्बा और सलाहियत मौजूद है, जो इस मौके से फायदा उठाने के लिए दरकार है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्रों और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसानों से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के मसाइल के हल के लिए काबिल एतमाद मराकज में तब्दील करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसानों को दुरुस्त साइंसी मशवरे मिलें और उन्हें मकामी सतह पर नई टेक्नोलॉजीज तक रसाई हासिल हो। भारत गुजरात के शहर गांधीनगर में सर्कुलर मईशत के फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। फोरम का इनेकाद इस महीने की 15 से 18 तारीख तक किया जाएगा। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए तब्दीली। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ मंगल को मुश्तरक तौर पर इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। बिहार के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। बिहार में 15 जिला में 48 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
10: अब तक 1251 इज्तमाई किचन के जरिए 88 लाख से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है। 13 इमदादी कैंपों में 12,000 से ज्यादा अफराद को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के वजीर रत्न सदा ने बताया कि सैलाब से मुतासर हर खानदान को 7,000 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तकरीबन 3 लाख 68,000 पॉलिथीन शीट्स, 65,400 खुश्क राशन के पैकेट्स और 1,400 तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में 1,688 कश्तियां काम कर रही हैं। मवेशियों के चारे की 12,844 क्विंटल से ज्यादा मकदार भी फराहम की गई है। इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमें मसरूफ अमल हैं। नदियों की सतह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुल्तानगंज में गंगा नदी की आबी सतह कम हो रही है। कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, बागमती और घाघरा नदियां कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
8: भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी कल तेज बारिश का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया में खराब मौसम के सबब जावा समुद्र में एक जहाज के उलट जाने से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 240 अफराद सवार थे। तकरीबन 130 मुसाफिर और अमले के अरकान भी लापता हैं। बचाव के काम में मसरूफ इंडोनेशियाई अहलकार ने बताया कि अब तक 107 अफराद को बचाया जा चुका है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने बहीरे अहमर के साहली इलाकों में हौसियों की हालिया पेशकदमी को एक तशवीशनाक और तकलीफ दह सूरत हाल से ताबीर किया है। हॉकी में मर्दों और ख्वातीन की भारतीय टीमों ने आज चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप के खिताब जीत लिए हैं। मर्दों की भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में आज जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर अपने खिताब का दिफा किया। इस जीत के साथ मर्दों की भारतीय टीम टूर्नामेंट की तारीख में लगातार 4 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल टीम 2015, 2023 और 2024 में भी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। भारतीय खातून टीम ने भी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से मैच का वाहिद गोल साइका चंद्रकांत माने 17वें मिनट में किया। खवातीन की क्रिकेट में दुबई में जारी खवातीन टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने दफाई चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 18 ओवर्स में 3 गेंद पर 3 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। इससे कबल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप में जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों की क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 157 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। इससे कबल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह तजुर्बाकार संजू सैमसन को तरजीह दी है, जबकि चोट के बायस जसप्रीत बुमराह ने टीम में वापसी की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली ऐलानिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। और हॉकी में भारत की मर्दों और ख्वातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
11: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल जारी है।
12: 2018 5 runs, 2024 7 runs, we are into 2026 and of course in this over will India manage to get more than 10 runs, and if that happens that'll be a record by itself, by its own. Of course, a very unusual record that in the last over in T20 Asia Cup Finals, India have scored more than 10 runs. But then Kamalini, who's been picked up in the final 11 today, She replaced Pratika Rawal, is on strike now, and she'll be facing her first delivery. Left-handed batter, Kamaleni, faces Sugandhika, and hits the ball towards the deep mid-wicket area, doesn't find the gap. It's been cut off, very well fielded there by the Sri Lankan fielder, and that was, I reckon that was Gunaratne for that matter. Anyways, another delivery bowled by Sri Lanka, and they'll be happy that they haven't conceded a big shot, a 4 or a 6 in that delivery. So, Kamaleni getting a couple of runs, 169 for 5. One more delivery, left arm around the wicket. She comes in, hits straight to the long on fielder. Single is what India will get. But hang on, there's another call that comes in from Bharti. And she almost completed that run. Kamaleni Bharti, a good call in the middle. And India, if they're not getting big shots, just converting ones into twos is the best thing that they can hope for. It was a flighted delivery, hit straight to the long on fielder. It was Bharti who was calling, and she came in. She's a good runner between the wicket also. And thankfully, India get two more runs. So 171 for 5. Four more deliveries to come. Sugandhika comes in. Left arm around the wicket. Flat delivery. Wanted to hoist her towards the deep mid-wicket area. Doesn't get a good connection. And another call that was turned down by Kamaleni this time. A call that came all the way from Bharti. She will be on strike. So India get a single instead of two. Three deliveries gone in this 20th over. They managed to get five in the first three deliveries. The highest score in the last over in Asia Cup Finals for India while batting first is 10 runs. And that was scored in 2016. So those are the minute stats that you look forward to. Kamaleni at the non-strikers end. Unfortunately, she's faced just three deliveries brought into the final 11. Bharti's on strike. Sugandhika comes in. This time over the wicket to her. And she wanted to hoist Sugandhika over the mid-wicket area. Doesn't get a timing now. The ball goes high up in the air towards the long on fielder. A fast throw that comes in from the Sri Lankan captain. And that will restrict the Indians to a single. So, six runs in the four deliveries bowled in the 20th over. India 173 for 5. Kamaleni back on strike. Can she get a big shot? She looked at the mid-wicket area for sure, but then there are other areas where she can hit. Another delivery. She steps out and the ball takes a thickish inside edge, and that's racing down to the fine leg boundary for a 4. What a disappointment for Sugandhika Kumari. And this is exactly what you wanted. A 4 given by the umpire. Confirmation there from the bat. And of course, India with that 4 now reaches on to 177 for 5. For all those dreams of scoring and getting close to 200 runs. And I tell you what, something which we see on the screen that's been given by the umpire, a 4 leg buys. We just hope that gets corrected. Yes, it gets corrected now. And all of a sudden, our scorer Ranjit Singh Rawat was tickling me and telling me that it's 4 leg buys. It can't be. And I said, truly done and corrected there by the umpire. So 177 for 5. Last delivery of this innings. Oh boy, what has Sugandhika done? She came in, she wanted to bowl. She checked her action, didn't bowl that delivery. And Bharti almost came out of the crease. So Sugandhika just stood there. So 10 runs in this over. Sugandhika comes in and bowls the last delivery. And Kamaleni has just hit another 6. We just waited for the ball to travel over the wide-ish mid-wicket area. Oh boy, what was happening there in the middle? We were just desperate for a 6. And I tell you what, Kamaleni just picked up for this game. Was to come and bat at number 3. Comes in and bats at number 7. And hits the last ball 6. Well, that's not a winning shot for sure. But the last ball 6 of the Indian innings that will see them reaching to 183 for 5. And each time I look at 183, I get reminded of that final of the 1983 final. India got 183, but that was a 60 over format. And that was the day where the Indian cricket changed forever. Whether it's going to change for India in this Asia Cup Finals, only time will tell. But I tell you what, this has been a splendid, splendid knock by Smriti Mandhana and Shefali Verma, getting 129 for the first wicket. Lot of analysis to be done and lot of ifs and buts. We need those answers. And for that, we'll head for our mid-inning show. And of course, we are heading towards the studios of Akashwani with the news that India in the Asia Cup finals against Sri Lanka have managed 183 for the loss of 5 wickets. Of course, all eyes on the 2 half centurions, Smriti Mandhana getting 59, Shefali Verma scoring 68, and Warren Knock. The day had to come where Shefali had to prove her critics wrong. Maybe this is the day. What happens later? We'll be back with the live coverage. But at the moment, we are going back to the Akashvani studios for our mid-innings show.

0: 183 रन बनाए हैं और श्रीलंका को टारगेट दिया है 184 रनों का। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स वंस अगेन एंड फ्री हिट 20। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी स्टार रही स्मृति और शेफाली की वो जोड़ी जिसने 129 की एक लंबी साझेदारी रची टॉप ऑफ द ऑर्डर पर। इस ओपनिंग स्टैंड के बलबूते पर वो नींव रखी गई 183 के स्कोर की और क्या ये स्कोर काफी होगा मिड इनिंग्स पे। 2024 के फाइनल में जब भारत ने 165 बनाए थे हम सबको लगा था काफी होगा, लेकिन फिर श्रीलंका ने उस स्कोर को भी चेज किया था। आज क्या होगा जानने के लिए, आकलन विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लतिका कुमारी। लतिका बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ के साथ हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन, जिन्होंने कई दशकों से भारतीय महिला क्रिकेट की जो एवोल्यूशन है उस पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। उत्तरा बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: तो सीधा प्रश्न, कोई घुमाव नहीं, कोई गुगली नहीं, सीधा सटीक प्रश्न लतिका आपसे, 183 व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
2: देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी आज हुई है मुझे लगता है कि श्रीलंकाई टीम के सामने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी तक अगर हम श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत उनकी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मिडल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं संभाला है। बट अभी तक इतना बड़ा चेज उनकी तरफ पे भी नहीं आया, 130-135 रन का ही उनको चेज करने का मौका मिला है। बट 183 एक ऐसा स्कोर है जहां पर अगर आज भी ऊपर से बल्लेबाज नहीं चले, चमारी अटापटू नहीं चली या उनके साथ ओपनिंग नहीं हुई अच्छी, जो हम कहते हैं कि पावर प्ले का यूज करना चाहिए जो कि अभी तक श्रीलंकाई टीम के सामने से उसका यूज इतना नहीं हो पाया, तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा 183। बट क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो जब तक ये कंप्लीट आखिरी बॉल नहीं डलती तब तक हम यही उम्मीद रखेंगे कि भारतीय जो टीम है उसका दबदबा बना रहे जैसे कि बल्लेबाजी में बनाए।
1: उत्तरा, वी हैव बीन टॉकिंग दैट दिस इंडियन टीम इज स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द कंपटीशन, तो वो जो अपने खुद के मानक हमने तय कर रखे हैं उस हिसाब से अगर देखें, 130 पर शून्य थे 13 ओवर के बाद और उसके बाद आखिरी के 5-7 ओवरों में श्रीलंका ने कमबैक किया। एक समय पर लग रहा था 200 से ऊपर ही आंकड़ा जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 183 को कैसे देखते हैं?
3: देखिए बिल्कुल वैसे ही गया है जैसे अभी तक भारतीय टीम का चला है कि बहुत कमाल का स्टार्ट और बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर और फिर नीचे आके किसी प्लेयर ने 2-3 बड़े हिट्स लगाए ताकि थोड़ा सा स्कोर आपको बेटर होता दिख गया एंड की तरफ, उसी ट्रैक पे एक तरह से चला है। 125 रन के आसपास का ओपनिंग पार्टनरशिप गई है तो बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि जिस पेस पे स्कोरिंग हो रही थी, ना सिर्फ ये कि जो रन बन रहे थे बल्कि जिस रेट पे रन बन रहे थे तो उससे लग रहा था कि काफी अच्छा जा सकता है स्कोर। और क्योंकि भारत ने 150 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में 2 बारी, तो एक उम्मीद थी कि उसके आसपास तक जाएंगे, पर रन जरूर उसके ऊपर गए, बल्कि 183 शायद बहुत अच्छा स्कोर है, एक विनिंग टोटल हो सकता है। पर वही है कि जिस तरह का स्टार्ट था उसके बाद जो उम्मीद थी जहां तक जाएंगे वहां तक नहीं गए, तो इस मैच के हिसाब से मुझे लगता है कि 183 जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग टोटल रहेगा श्रीलंका के लिए। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा भारत को देखना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर के 2 प्लेयर्स के भरोसे वो कब तक खेलने वाले हैं।
0: बिल्कुल, और ऊपर के 2 प्लेयर्स की फिर से हम बात करते हैं लतिका। ये टूर्नामेंट शेफाली वर्मा का टूर्नामेंट है, आज फिर से हाईएस्ट स्कोर 68 रन्स, 129 रनों की पार्टनरशिप रही उनकी और स्मृति के बीच, और फिर से हमने देखा है कि ये दो ओपनर्स के जाते ही पारी लड़खड़ाने लग गई थी।
2: देखिए इस शो से पहले ये बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच में कि स्मृति मंदाना फाइनल्स में अभी तक वो स्कोर नहीं कर पाई हैं, तो देखिए उनका जो मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और स्किल कहीं ना कहीं इंप्रूव होती जा रही है, अब बिग शॉट्स उनके बल्ले से हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो आज की इनिंग में भी हमें वो दिखाई दिया। और शेफाली वर्मा की तरफ से जो बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में हुई है, तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ठहराव दिखाई दिया है उनके बल्लेबाजी में. पहले जो एग्रेशन उनकी बल्लेबाजी में दिखता था वो एग्रेशन है, लेकिन अब गेंद को देख के, उसको भांप के, किस तरीके से आप एक लंबी इनिंग को यहाँ पर कर सकते हैं अपनी, वो एक जो बदलाव है शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी में देखने को मिला कि आप शॉट सिर्फ ताकत से नहीं, नजाकत से भी खेल सकते हैं.
1: जी, स्मृति और शेफाली की तो चर्चा होगी, लेकिन एक और प्लेयर है लतिका जिनके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रभावित हैं. अंत में केवल 5 गेंदें मिली, लेकिन उन 5 गेंदों में 15 रन मारे. जी कामेलिनी की शायद इस छोटी सी पारी की उतनी ज्यादा चर्चा होगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें.
2: देखिए, इस पारी से उन्होंने अपनी दावेदारी साबित की है कि अगर आप मुझे मौका ऊपर देते तो शायद ये थोड़े से और जो है रन इकट्ठा कर सकती थी अपनी टीम के लिए. और मैं पहले भी कह रही थी कि ये काफ़ी अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करती हैं, और एक लेफ्टी बल्लेबाज आपकी टीम में एक शामिल हुए हैं तो नंबर 3 पर ही अगर उस टाइम पर आती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 ओवर हुए थे और 130 पे हमारी टीम थी जब हरमन आई थी, अगर उस वक्त इनको 5-6 ओवर या 4 ओवर मिलते तो शायद ये स्कोर और 10-15 रन या 20 रन और ऊपर होता.
0: जी बिल्कुल, ऊपर हो सकता था. बात करें हम उत्तरा श्रीलंका की बॉलिंग की, तो आज फिर से हमने देखा चामुदी प्रबोदा को, और हम सब बात कर रहे थे 17 साल की हैं केवल, पहले भी अपनी पारियों में प्रभावित कर चुकी हैं, और आज फिर से उन्होंने शेफाली वर्मा का विकेट लेके वो ब्रेक थ्रू दिलाया श्रीलंका को.
3: बिल्कुल, और वो श्रीलंका की बॉलिंग जिस तरह की रही है, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड एज अ टीम ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग के मुकाबले उनकी बॉलिंग और फील्डिंग ने ज़्यादा इम्प्रेस किया है. चामुदी के अपनी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उन्होंने वही किया जो उनका रोल था, जिस चीज़ के लिए उनके कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया था. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एज अ टीम थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग को लेके, क्योंकि थोड़ी सी वेवर्ड थी, थोड़ी सी कंट्रोल्ड थी. आपको दिख रहा था कि वो सिर्फ रन पड़ने की बात नहीं होती है, वो बॉलर का बॉडी लैंग्वेज भी एक होता है कि आपका अपनी गेंद पे कितना कंट्रोल है उस टाइम पे, और वो कंट्रोल थोड़ा सा मिसिंग देखा खिलाड़ियों में, खास करके जब हमारे ओपनिंग पेयर बैटिंग कर रहे थे शेफाली और स्मृति का. प्लस उनकी फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर लगा, क्योंकि जनरली चमरी अतापत्तू जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसमेंट्स, और नो वो उस तरह की लेजी क्रिकेटर नहीं मानी जाती कि एक जगह खड़े हो गए तो वो वहीं खड़े रहेंगे. वो शी इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट एंड सीइंग वेयर थिंग्स कैन गेट बेटर. बाय दैट यार्डस्टिक आज उनकी फील्डिंग, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, उन सब चीज़ों में मुझे लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर उनको रहेगा.
1: जी, चमरी अतापत्तू की हम बात कर रहे हैं, आपको याद दिला दे 2024 में जब श्रीलंका एशिया का चैंपियन बना था तो उस टूर्नामेंट में इनकी 3 अर्धशतक थे, वो अपने आप में एक कीर्तिमान था, और आज उस कीर्तिमान की बराबरी शेफाली वर्मा ने कर ली. इन्होंने अपना 3rd हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट का बनाया. चामरी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है लतिका, और इसलिए भी शायद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने देखा विश्वी गुरा रत्ने, उनको इंजरी हुई, स्ट्रेचर पर उनको बाहर ले जाया गया, तो शायद वो बल्लेबाजी करने के लिए अवेलेबल ना हो. वो वन बैटर शॉट होना, इतना बड़ा टारगेट होना, फाइनल का प्रेशर होना, अगर इस वक्त आप अपने आप को चामरी की जगह देखें तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इनिंग्स को?
2: देखिए, ये बात जरूर है कि एक आपके प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, जो कि आपने चेंज भी किया था और उनको स्पेशली इस मैच में उतारा भी था, फाइनल का मैच, और वहाँ उनकी इंपॉर्टेंस भी दिखती है अगर आप टीम में कोई चेंज कर रहे हो और वो वही चेंज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाते हैं. तो चामरी के लिए ये बहुत बड़ा अभी टास्क होने वाला है, क्योंकि वो एक बेहतर शुरुआत जरूर करना चाहेंगी यहाँ पर अपने बल्लेबाजी से. पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा है, सिर्फ एक बार ही 40 का आंकड़ा पार किया है उन्होंने. तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बैटिंग लाइनअप यहाँ पर श्रीलंका के कप्तान हैं जो रखना चाहेंगी, कोच हैं वो रखना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने अभी तक अलग अलग प्लेयर्स ने यहाँ पर करके दिखाया है, मैच निकाला है, लेकिन टॉप ऑर्डर 2-3, 3-4 नंबर तक पावर प्ले या 8 ओवर तक वापस पवेलियन गए हैं. तो आज ये और भी बड़ा टास्क होगा कि आपका एक प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाते हैं.
1: एंड टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ पर्सपेक्टिव, उत्तरा भारतीय बॉलिंग में आप किसको देखते हैं, कौन तुरुप का इक्का साबित होने वाला है, क्या श्री चरणी पर दोबारा दारमोदार होगा या फिर आप पेसर्स की भूमिका को देखते हैं, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा का एक अहम रोल देखते हैं?
3: देखिए दीप्ति शर्मा हमारी टॉप विकेट टेकर हैं तो, और सीनियर हैं ऑब्वियसली श्री चरणी के मुकाबले, तो

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़रूर ज़्यादा होगी और प्रेशर श्री चरनी पे ज़रूर होगा क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ दोनों से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, लेकिन जितना टोटल सेट किया है तो बॉलर्स को थोड़ा सा लीवे ज़रूर एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता कि एक एक रन के लिए आपको फाइट करना हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज खा सकते हैं या बहुत ईजी रन्स दे सकते हैं सामने, पर जब आपकी बैटिंग आपको इतना बड़ा टारगेट एक देती है डिफेंड करने के लिए, तो थोड़ा सा आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रेशर हल्का सा कम होता है। मुझे लगता है श्रीचरनी और दीप्ति शर्मा दोनों के ऊपर प्रेशर तो नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी कि वो अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला पाएँ, ताकि टॉप ऑर्डर, जैसा लद्दिया ने कहा कि वो नहीं चल पाया उस तरह से उनका श्रीलंका का, तो अगर आप ऊपर से जल्दी विकेट ले लेते हैं तो जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर ने अभी तक चीज़ें संभाली हैं, वो 120 से 135-145 तक का टारगेट जो है उसके लिए शायद काफ़ी रहा हो, लेकिन 184 के लिए शायद ऊपर के तीन चार जल्दी निकल गए तो वो मिडिल ऑर्डर ना संभाल पाए उस चीज़ को।
1: जी बिल्कुल, तो 184 का टारगेट सेट करके बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब बारी है भारतीय बोलर्स की। इट्स इंडियन बोलर्स अगेंस्ट श्रीलंकन बैटर्स नाउ। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत, हमारी कमेंट्री टीम आपसे जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मैच के बाद।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भारत क्या आठवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर सकेगा? 184 रन बनाने हैं श्रीलंका को। जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती है श्रीलंका के सामने। इस चुनौती से निपटना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चामरी अट्टापट्टू, जो कि टीम की कप्तान हैं, जिनकी बल्लेबाजी पर श्रीलंका लगातार आश्रित रही है, बहुत दारुमदार है उनके ऊपर श्रीलंका की बल्लेबाजी का, वो पिछले कुछ मैचेस में बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। एक भी बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकला है इस एशिया कप में, और कुल मिलाकर 64 रन बनाए उन्होंने इससे पहले चार मैचेस में। तो चामरी अट्टापट्टू का चलना बहुत जरूरी है अगर श्रीलंका को इस मुकाबले में अपनी चुनौती को मजबूती के साथ पेश करना है। 170 मैचों में 4100 रन, स्ट्राइक रेट 114 के आसपास, और जहां तक शतकों का सवाल है, चार शतक उनके बल्ले से लग चुके हैं। और उनका साथ देंगी इमेशा दुलानी, 24 मैचों में 484 रन। श्रीलंका की एक और परेशानी है कि उनका जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है वो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। क्रांति गौड़ पारी की शुरुआत कर रही है गेंदबाजी में, हालांकि क्रांति गौड़ को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 4.8 की औसत से उन्होंने रन खर्च किए और इकलौता विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में मिला है। भारत की तेज गेंदबाजी नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ पर निर्भर करेगी। क्या स्पिनर्स पर दारोमदार रखेंगे या तेज गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे? बढ़िया शॉट, गेंद को एकदम निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इमेशा के बल्ले से निकला हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, अपने आप को पोजीशन किया और सिर्फ एक दिशा दे दी। तकरीबन लेग स्टंप पर गेंद थी क्रांति गौड़ की और उसका भरपूर फायदा उठाया, पहले से कमिट हुई और हल्के से केवल गेंद को दिशा दी, मोड़ दिया अपने कलाइयों के सहारे चार रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। तो शुरुआत की श्रीलंका ने अपने खाते की, बढ़िया एक फ्लिक शॉट लेकिन पहले से कमिटेड थी स्ट्रोक के लिए क्रांति के। इस ओवर में अगली गेंद इमेशा को और इमोशा की पैड पर जाकर के गेंद लगी जोरदार अपील, लेकिन जाहिर है ऐसा बिल्कुल साफ देखने में लग गया था कि गेंद की उछाल भी ज्यादा थी और गेंद लेग स्टंप से संभवतः बाहर भी निकल रही थी। 184 का लक्ष्य, जब आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य के सामने परेशानी महसूस करते हैं। पैड पर लगी थी लेकिन उससे पहले बल्ले का भी स्पर्श हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इमेशा

रानी नहीं चली इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, 64 रन उनके, चामरी अठाफट्टू के 63 रन है, और जाहिर है ये सलामी जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, रक्षात्मक तरीके से इमेशा ने सिर्फ अपने बल्ले से लगने दिया। श्रीलंका ने शुरुआत की एक चौके के साथ, पहला ओवर चल रहा है। अगर भारत को कुछ शुरुआती सफलताएं मिल गई तो यह मुकाबला भारत के खाते में आसानी के साथ जा सकता है, लेकिन श्रीलंका की टीम फाइटर है। आपको याद होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट देखते देखते निकल गए थे, और इस बार साफ विकेट्स गिर गए। क्रांति गौड़ को मिल गया पहला विकेट। इमेशा ने जिस तरह का स्ट्रोक पहली गेंद पर खेला था वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट्स पूरी तरह से छोड़ दिए उन्होंने और हट करके गेंद को लेग स्टंप के बाहर निकालना चाहती थी, फ्लिक करना चाहती थी, पूरी तरह से चूक गई और गेंद उनके संभवतः बल्ले से लगती हुई उनकी गिल्लियां बिखर गईं और पहला विकेट भारत को मिल गया। तो श्रीलंका पर अब दोहरा दबाव बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। पहला विकेट इमेशा दुलानी के रूप में, सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने, क्रांति गौड़ ने उन्हें बोल्ड किया और क्रांति गौड़ ने फाइनल में अपना पहला विकेट निकाल लिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका खाया उन्होंने और लगभग वही कोशिश उनकी इस गेंद पर भी थी, और क्रांति गौड़ की इस गेंद पर पूरी तरह से अपने स्टंप्स को छोड़ दिया उन्होंने। ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलना चाहती थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वो नहीं हुआ और गेंद सीधे जाकर के स्टंप पर लग गई। तो दबाव, प्रेशर अब श्रीलंका पर, और इस तरह का प्रेशर आप समझ सकते हैं, जब बड़ा स्कोर होता है तो फिर ये प्रेशर अपनी जगह पर बिल्कुल दिखाई देता है। संजना काविंदी आज नहीं है टीम के अंदर और उनकी जगह विश्मी गुणरत्ने को शामिल किया गया है। विश्मी गुणरत्ने, आपको याद होगा फील्डिंग करते समय उनका पैर अचानक से मोच खा गया था और इस वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर के बाहर निकाला गया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस आ गई हैं। ऑफ स्टंप पर टप्पा दिया क्रांति गौड़ ने, गुड लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर के आई और इसको विश्मी गुणरत्ने ने रक्षात्मक तरीके से खेला। पूरे स्टंप्स दिखा दिए थे क्रांति गौड़ को इससे पहले इमेशा दुलानी ने, और उसका भरपूर लाभ मिला। पहला विकेट श्रीलंका ने गंवा दिया और भारत निश्चित तौर पर अब कमांडिंग पोजीशन में है। विश्मी और चामरी अठाफट्टू, विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है। श्रीलंका ने अपने कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है 17 में से, और इस बार एक मिसफील्ड, जहां रन की गुंजाइश नहीं थी वहां पर रन बना। पीछे से शेफाली वर्मा ने कवर अप करते हुए इस गेंद को फील किया, लेकिन 2 रन मिल गए, यहां पर रन नहीं मिलने चाहिए थे। ओवर की समाप्ति हुई, पहला ओवर समाप्त हुआ और श्रीलंका का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 184 रन बनाने श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए। क्रांति गौड़ का पहला ओवर, 6 रन दिए, 1 विकेट लिया, और अब देखना है कि 178 रन का फासला और तय करना है। विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है, इससे पहले भी वो इस टूर्नामेंट में 1-2 मैचेस खेली हैं, आज देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी करती हैं विश्मी गुणरत्ने। चोट लगी थी उन्हें और उस स्ट्रेचर पर जाने के बाद श्रीलंका के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वापस लौट के आई हैं। नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए, एक बेहतर गेंदबाज, भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा पर बहुत कुछ दारोमदार है। 7 विकेट निकाले इससे पहले नंदिनी शर्मा ने, 4.36 का उनकी इकोनॉमी है। और दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगी नंदिनी। क्रांति गौड़ को पहले ओवर में सफलता मिली। चामरी अठाफट्टू बाएं हाथ की बल्लेबाज, ऑफ स्टंप पर स्टीयर करना चाहती थी लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं, और यहां पर पहली गेंद पर नंदिनी की जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी कट करना चाहती थी, लेकिन बाएं का इशारा, क्योंकि इतना गेंद
अंदर की ओर

0: तैयार कर रही हैं नंदिनी की गेंदों के सामने। बढ़िया गेंद की ही है नंदिनी ने इस टूर्नामेंट में, विकेट उन्हें 7 मिले हैं क्रांति गौड़ की तुलना में। एक स्लिप मौजूद है और लहराती हुई गेंद हवा में, थोड़ा सा लहराती हुई लेकिन गेंद चली गई 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्की स्विंग होती हुई गेंद और उसको केवल एक दिशा देने का प्रयास था विश्मी का। इस चौके के साथ विश्मी पहुंच गई अब 6 पर। और हमारे साथ ही मुनीष जॉली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच दादा। एंड इंडिया हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे डिड गेट अ विकेट बट देन श्रीलंका विल नॉट बी प्लेइंग एट अ डेड नॉक, दे विल बी गोइंग आफ्टर द इंडियन बोलर्स एट द मोमेंट। 11 ऑन द बोर्ड इन द सेकंड ओवर, विश्मी ऑफ कोर्स स्कोरिंग दैट बाउंड्री व्हिच हैपेंस टू बी द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द श्रीलंकन इनिंग्स। Right arm over the wicket comes in Nandini, short of length delivery, just flicking the ball down to the deep square leg area. Of course, there was a long chase as well for Deepti. And a single picked up then in the end. The score moves on to 12, the loss of one wicket.
0: Vishmi, 4 gendon par ab tak 7 run bana chuki hai aur Attapattu ko khata khol laya. Attapattu nahi chal saki. Ye ek pareshani ka sabab hai Sri Lanka ke liye. इमेशा दुलानी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नॉक नहीं खेल पाई, कुल मिलाकर 67 रन हैं उनके इमेशा के पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 5 मैचेस में 67 रन। आप पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अगर इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना कम योगदान दे रहे हैं टीम को, तो टीम की परेशानी स्वाभाविक है। ऑफ स्टंप के बाहर करारा शॉट लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे गेंद वहां पर क्रांति गौड़ के पास गई। अच्छी फील्डिंग, चुस्त फुर्त क्रांति गौड़। अगले ओवर के बारे में सोच रही होंगी कि किस तरह की गेंदें रखी जाएं ताकि विश्मी या चामरी अटापट्टू का विकेट निकल जाए। एक और विकेट भारत को बेहद मजबूती के साथ खड़ा कर देगा 8वें खिताब की दिशा में। कुल मिलाकर 4 गेंदें इस ओवर की हो गई है नंदिनी की। हरमनप्रीत इस समय नंदिनी को कुछ समझाइश दे रही है, बता रही कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। तजुर्बा, अनुभव, एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर एक मिसाल है वो निरंतरता की, जिस तरह से भारतीय टीम के साथ जुड़ी हैं, लगातार चल रही हैं, क्या शानदार कप्तानी कर रही हैं। भारत को उन्होंने एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया है। और इस बार गुड लेंथ गेंद और हल्का सा केवल स्ट्रोक अटापट्टू का, अटापट्टू के बल्ले से अब तक रन नहीं निकला है और ये अटापट्टू की स्वाभाविक शैली कतई नहीं है। वो जिस तरह से खेलती हैं, जिस आक्रामक अंदाज के खेलती हैं, वो सचमुच बहुत शानदार होता है, लेकिन आपको वक्त के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है और जरूरत यही है कि आप अपना विकेट सलामत रखें। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार मिडिल स्टंप पर अच्छी फील्डिंग क्रांति गौड़ की। एक बार फिर दूसरा ओवर समाप्त, श्रीलंका का स्कोर 2 ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 184 का टारगेट सेट किया है भारत ने और सिर्फ 12 रन बने हैं पहले 2 ओवर में, यानी कि कतई ये काम आसान नहीं है। मुनीश जॉली
1: then just got a glimpse of Jamie Siddons, who happens to be the coach of the Sri Lankan team, and he took over from Ramesh Ratnaike early in this year, in March. Not very pleased and just waiting for the emotions to come in, and he's been absolutely expressionless, that's the right word I should be using. And of course, a highly experienced level 3 qualified coach. He served as the head coach of Bangladesh men's cricket team from 2007 to 2011. And does he have something in his own kitty that can create that victory for Sri Lanka? Meanwhile, Kranti Gaur comes in, bowls a delivery onto the middle and leg, and that's been flicked down to the fine leg fielder for a single. And Attapattu still looking for that opening boundary, doesn't get it then. Vishmi getting a single, so Attapattu will be on strike for deliveries, dot deliveries, and that's exactly what Shefali Verma was at the other when she started facing the Sri Lankan bowlers in the beginning. 4 dot deliveries to start with, and immediately after that she scored a boundary, then a double, then a couple of boundaries. So those were the first 14 runs after 4 dot balls that was played by Shefali Verma. Can Attapattu do that as well? 13 for 1 in the third.

0: position for Nandini. That fielder on the offside. Boundary in the first ball. Dot delivery in the second. Chamariya Thapattu on five. Sri Lanka are given a target of 184. Short of length delivery onto the backward. Just nudges the ball down to the backward point area. Good to see, Sanjay, that the slip is constantly placed for Nandini and Kranti Gaur. Two overs, eight runs and a wicket for Gaur. Nandini Sharma, 1.3 overs, nine runs. And of course, India with that smart start with their openers. Smriti Mandhana, Shafali Verma. The way they had the opening start of 129 runs for the first wicket in 12.5 overs was tremendous. Just setting up that tone for a huge total. Meanwhile, Nandini Sharma comes in. She's got Kranti Gaur at deep point, so she can afford to bowl that delivery wide outside the off stump. Cutting the ball sharply was Thapattu, who just gets a single. And the moment she reaches the non-striker's end, signals to the dugout for a change of bat, which will happen probably after the over. So long chat continues between Harmanpreet Kaur and Nandini Sharma. And there's a field changes that are taking place. More fielders on the offside for the right-handed Rishmi Gunaratne. There are four fielders. Short fine leg, square leg inside the circle, mid-on and deep mid-wicket for Rishmi Gunaratne. As Nandini now holding ball by the seam. Strides faster, approaches the bowling mark, pitches ball short of length outside the off stump. Rishmi just punching the ball towards the deep cover area. Sri Charni comes in and throws the ball to the non-strikers in. So single then takes Sri Lanka to 20 for the loss of one wicket. 184 is the target set by India for Sri Lanka as you listen to the ball-by-ball commentary of this final of the T20 Asia Cup 2026 being played at Dubai International Stadium between India and Sri Lanka. Nandini comes in, right arm around the wicket. Thapattu strikes and strikes it hard. Kranti Gaur dives to her left, running almost 10 to 12 meters. And what a pickup and throw that was from the fit and a very elegant Kranti Gaur. Surely saving that boundary for India. And with that, we come to the end of the over number 4. So the other 183 for 5, Sanjay Banerjee, and this reminds me of the 1983 World Cup. It's the same score that India scored. And they won that game. And that changed, that victory changed the complexion of India's cricket after that.
1: बिल्कुल, और आज भी लगता है कि क्रिकेट की आप अनिश्चितताओं को अगर दरकिनार कर दें तो भारत आठवीं बार खिताब जीतने वाला है. और निश्चित तौर पर भारत ने जो टारगेट सेट किया है वो श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है. 9.2 का रिक्वायर्ड रन रेट था जो अब बढ़कर के 10.2 हो गया है और एक विकेट भी गिर चुका है. गेंदबाजी में परिवर्तन, शेफाली वर्मा को लाया गया है. शेफाली वर्मा जब बॉलिंग चेंजेस होते हैं तब खासतौर पर तेज़ गेंदबाजी के बाद स्पिनर्स को लाने से पहले हरमनप्रीत कई बार शेफाली का इस्तेमाल करती हैं. शेफाली एक अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं. इस बार गेंद पैड पर लगी लेकिन लेग स्टंप छोड़ करके जा रही थी. अपील जरूर की. अटापट्टू अब धीरे धीरे थोड़ा सा सेट होती दिखाई दे रही हैं. हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 50% है. 14 गेंदों का सामना करके 7 रन बनाए उन्होंने. अच्छी गेंद थी, बल्ला उनका चल गया था और गेंद बल्ला चलने के बाद आई लेकिन जाहिर है कि गेंद स्टंप्स के बाहर थी तो कोई ध्यान नहीं दिया अंपायर ने. 184 का टारगेट, पांचवा ओवर चल रहा है. श्रीलंका ने सिर्फ 21 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर. शेफाली की गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया सीधे 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से. हवा में बहुत ऊपर नहीं थी गेंद लेकिन लंबाई में बहुत सॉलिड स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए.
0: And I think that's a gamble that the captain Harmanpreet Kaur is playing because Shefali tends to bowl slow and she's just trying to bind that wicket and probably that's the ploy and that's the intention why they've got Shefali Verma with the bowling. And she's bowled with the new ball in the previous occasions also.
1: हरमनप्रीत हर गेंदबाज के पास जाती हैं, उन्हें समझाती हैं कि आपको किस तरह की गेंदें करनी चाहिए, बतलाती हैं उनका अनुभव, उनका तजुर्बा, सब कुछ बोलता है मैदान के अंदर। बहुत ही खूबसूरती के साथ टीम का संचालन, और इस बार पहले निकल आई, आगे निकल आई, गेंद का जैसे ही टप्पा पड़ा कदमों का इस्तेमाल किया दो तीन स्टेप लेने के बाद, लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया, शायद आगे निकली थी स्ट्रोक के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए केवल बल्ले से लगने दिया। और इस बार अच्छा खासा टर्न, काफी टर्न मिल रहा है यहां पर शेफाली वर्मा को, एक गेंदबाज के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर पिछले कुछ समय में शेफाली ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, और एक यूटिलिटी प्लेयर हैं, जरूरत पड़ने पर काफी आक्रामक हो जाती हैं, काफी बड़े स्ट्रोक्स खेलती हैं, और गेंदों से भी लगातार एक बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं। और फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, शेफाली ने थोड़ा सा ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट को तब्दील किया, हरमनप्रीत से डिस्कस किया, और अब तैयार हैं विश्मी गुणरत्ने। मौका मिला है विश्मी को आज इस फाइनल मुकाबले में, और उन्हें मौका मिला है संजना काविंदी की जगह पर, जो कि इससे पहले चार मैचों में सिर्फ 29 रन जोड़ सकी थी। पहले कदम निकाले थे, कदम बाहर किए थे विश्मी ने, लेकिन ऐन वक्त पर गेंद को हल्के से केवल बल्ले से थपथपाया। जिस लेंथ पर गेंद गिर रही है वो बैटर को अट्रैक्ट कर रही है कि आप कदमों का इस्तेमाल करें और सामने आकर के बड़ा स्ट्रोक लगाएं, लेकिन वो साहस, वो जोखिम लेने का साहस फिलहाल श्रीलंकाई बैटर्स नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि एक विकेट चला गया, इस बार ज्यादा फ्लाइट दिया, हवा में थी गेंद, एक टप्पा खाते हुए सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। अटपट्टू के बल्ले से निकला चौका, और श्रीलंका का स्कोर अब पांच ओवर के बाद बढ़ता हुआ 33-1। श्रीलंका के सपोर्टर्स भी अच्छे खासे मौजूद हैं दुबई में, एक चौका लगता है, एक छक्का लगता है, उम्मीद की एक नई किरण जागती है, ऐसा लगता है कि कहीं श्रीलंका ये संभव कर सकता है क्या। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उस असंभव को संभव बनाने के लिए आपको बहुत कुछ दांव पर लगाना होता है, और ऐसा लगता नहीं है कि अभी श्रीलंका उस स्थिति में है। लेकिन हां, फील्डिंग आज खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग भारत की अब तक पांच ओवर्स में बेहतर दिखाई दी, क्रांति गौड़ की तारीफ है, उन्होंने कई बार अच्छे स्ट्रोक्स रोके, और अब तक कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ, पिछले मैच में चार कैच ड्रॉप हुए थे और वो एक परेशानी की वजह थी भारत के लिए। तो पांच ओवर यहां पर पूरे हो चुके हैं, और पांच ओवर के बाद 33-1 विकेट के नुकसान पर।
0: So 15 more overs to go, but then Sri Lanka slowly and steadily building up the innings, Dada, and that's an area of concern. So Nandini Sharma will continue bowling from the other end. This is the last over of the power play.
1: बिल्कुल, थोड़ा सा प्रयास जरूर दिखाई दे रहा है भारतीय फूलमाली, जिन्हें बल्लेबाजी के लिए आखिर में मौका जरूर मिला, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनका नहीं हो पाता, बल्ले से भी नहीं, गेंद से भी नहीं, और उसकी वजह है इंडिया की जो बैटिंग है वो ऊपर के स्तर पर, यानी कि टॉप बैटिंग जो है इंडिया की वो बहुत सॉलिड है, और इसलिए निचले क्रम के बल्लेबाजों को बहुत मौका नहीं मिलता। नंदिनी की ये गेंद ऑफ स्टंप पर, और इसे कट करना किया उन्होंने खूबसूरती के साथ, शेफाली मौजूद थी, और यहां मौका जरूर मिला रन लेने का, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके दो रन पूरे किए। श्रीलंका की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है और भारत की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप श्रीलंका को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन पर चार विकेट गंवाए सेमीफाइनल में, बांग्लादेश के खिलाफ 44 रन पर पांच विकेट गंवाए, इंडोनेशिया के खिलाफ 45 रन पर पांच विकेट गंवाए, तो शुरुआती विकेट्स जल्दी गिर जाने से वो एक बड़ा टोटल नहीं बना पाते। और क्या फील्डिंग की यहां पर, कमाल की फील्डिंग, कोई मौका नहीं दिया वहां पर, प्रेमा रावत मौजूद थी, उन्होंने अच्छा फील किया, बहुत करारा स्ट्रोक था, बाउंड्री मिलनी चाहिए थी अगर जरा भी दाएं बाएं होता, अच्छा कट था, बहुत शानदार, थोड़ा सा हल्का सा हाथ से लग करके मिसफील्ड हुआ, लेकिन उस गेंद की जो गति थी, उस जो स्ट्रोक की गति थी, वो बहुत हद तक धीमी कर दी। तो श्रीलंका
2: तीन मैचेस में उनके बल्लेबाज उनके बैटर्स 40-45 रन बनाकर कम से कम 5 विकेट गिर गए उनके, तो ऐसी स्थिति में आज थोड़ा खड़ा संभल करके खेलने की कोशिश। गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर रक्षात्मक तरीके से खेला और दौड़ते हुए इत्मीनान के साथ एक रन पूरा किया। बूंद बूंद से सागर भरने की कवायद है, एक एक रन ले रहे हैं, लेकिन ये सागर नहीं महासागर है जहां आपको 184 रन का लक्ष्य मिला है, वहां एक एक रन के साथ आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।
0: Absolutely, and I think this should be remembered by Sri Lanka, that you just have to remain in the game somehow or the other. Athapattu gets a delivery and hits the ball high over the long, in fact the mid off fielder, which is the Indian captain Harmanpreet Kaur. The ball goes over her but not racing down to the boundary, so before the ball touches the ropes it's been cut out by Harmanpreet Kaur, and two more runs have been collected by her. So Athapattu moves on to 21 of 20, Sri Lanka 38 for 1.
2: आखिरी गेंद पावर प्ले की, और पावर प्ले में मुनीश इस तरह के स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं।
0: Why not? I think they have no other choice but to take chances in power play if they have to reach to the target of 184.
2: आखिरी गेंद इस ओवर की, और एक बार फिर करारा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद और मुस्तैद फील्डर स्मृति मांधना, बढ़िया गेंद उन्होंने रोकी। 6 ओवर पूरे यानी कि पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पावर प्ले में अपेक्षाकृत बेहतर बल्लेबाजी की थी।
0: And I think you're mentioning about the 57 runs that India scored in the power play, and that was of course a great start by India getting on to 57, and then after the 10 overs they were hovering around the 100 run mark, 98 without loss of the score for India after 10 overs. So they were very close to the 10 run and over mark. So end of the power play as signaled there by the umpires. India will of course breathe a sigh of relief. Any team would if you fail to collect a couple of wickets in the power play. But India with all their experiments bring in Sri Charni, the left arm spinner. 30 matches, 50 wickets, and what a performer she has been. And of course, this reminds me of that heroic effort by the Indian team winning the 50-over format. Sri Charni played a very, very important role. And at the moment, she has to play an important role here as well at the Dubai International Cricket Stadium. India, of course, setting a target of 184 for Sri Lanka. 38 for 1 is the score after 6 overs now. Sri Charni getting ready to bowl her first over. Vishmi Gunaratne on strike. And simultaneously, there's some interesting facts and, of course, the stats of the past that we'll bring in. Sri Charni comes in, flighted delivery, onto the front foot, played it back to the bowler. Now, our statistician Ajay Goel reminds us about the final between India and Pakistan way back in 2012, which was played at Guangzhou, China. And that was the Asia Cup final, and it was a low-scoring game. We'll talk about that as we witness the delivery by Sri Charni that's been swept reversely by Vishmi Gunaratne to such a perfection that the fielder at the short third man was beaten, and the ball races down to the boundary for another four for Vishmi Gunaratne. Not too sure whether there was something wrong with the Sri Charni's delivery, but these are the kind of moments where slowly and steadily, if you fail to pick up wickets on regular intervals, I think that's a threat to any fielding side. India at the moment, not that they're under threat for that matter. 42 for 1. Vishmi Gunaratne on 16 with that boundary of 13 deliveries. A partnership of 38 runs in 34 balls. Sri Charni, left arm coming diagonally. That means between the stumps and the standing umpire. And then bowls a delivery, gets a bit of turn on the off stump. And the ball pitching and moving away, a short of length delivery outside the off stump. Good collection there by Richa Ghosh, the wicket keeper. Sri Charni for the fourth time in this over. Left arm diagonal, flighted delivery, and that's played uppishly. It was a chance dropped by Sri Charni in the follow through. Harmanpreet Kaur knew how close it was. It was hit hard, agreed. But the bowlers do practice catching the ball on their follow through, and Sri Charni.

0: ball into the gloves of Richa Ghosh. So it has all happened here. If you've just tuned in, let me remind you that you listen to the live commentary on Akashwani of this game between India and Sri Lanka being played at the Dubai International Stadium. The finals of the T20 Asia Cup, India winning the toss, electing to bat. And of course, Harmanpreet Kaur never believed that India will go on to one of these, the bright starts of this game. 129 run start by Shefali Verma and Smriti Mandhana. We'll talk about that as the next over begins. And of course, before the start, Sri Lanka have just managed to crawl to 50 runs in 8 overs. India got on to their 50 runs in 5 overs. So they have a massive, massive target of reaching to 184 in 20 overs. They've got 12 more overs, and the asking rate at the moment is 11.2. All these details given to us by our scorer, who's sitting on my right, Ranjit Singh Rawat. Our statistician is Ajay Goyal. My name is Manish Jolly, and with me is Sanjay Banerjee, our Hindi commentator. Dada, there's a little delay that we see, and of course the umpire is having a word with the players. There's some moisture on the ground as well, which is being wiped by the towels. Looking at the comparisons, if we look at where India were after 8 overs, they were on 78. Sri Lanka at the moment are 50, so a deficit of 28 runs. So bowling change from the Indian captain. This is Prema Rawat. 6 T20 internationals, 6 wickets. And is getting to, just looking around the field and getting ready to bowl her first delivery. The leg spinner comes in, and she bowls on the right spot on the middle stump. Just flicking the ball towards the deep square leg area for a single is Vishmi Gunaratne. So 8.1 overs, 51 for 1. Sanjay Banerjee is getting ready for his Hindi spell of commentary. But Dada, this is a very intelligent start by Sri Lanka, because if they can manage to hold on to the wickets, you never know what can turn around. Maybe a long partnership, maybe those hits in the closing overs. Everything at stake at the moment.
1: बिल्कुल मुनीश, श्रीलंका की कोशिश वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक विकेट पर टिके, लेकिन रन्स भी बनाते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर के ओवर्स में बहुत ज्यादा आक्रामक होना आसान होगा नहीं. और दोनों टीमों का जहां तक सवाल है, भारत और श्रीलंका का, दोनों स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट के दौरान स्पिनर्स के साथ खेलते हुए दिखाई दिए. भारत ने सबसे ज़्यादा 26 और उसके बाद श्रीलंका ने 25 विकेट उनके स्पिनर्स ने लिए थे. तो प्रेमा रावत, इसके अलावा दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी, ये तीनों स्पिनर्स लगातार जो सामने वाली टीमें हैं, विपक्षी टीमें हैं, उनके खिलाफ अपना प्रदर्शन शानदार करती रहीं. दो डॉट बॉल, सिर्फ इकलौता रन प्रेमा रावत के इस ओवर में अब तक बना है. और चामरी अटापट्टू अब तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए, 26 रन 28 गेंदों पर. प्रेमा रावत की ये गेंद, और इस बार ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश, गेंद हवा में और ये सीधे बाहर स्टेडियम के मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया चामरी अटापट्टू ने. एक और छक्का, और इस छक्के के साथ श्रीलंका ने अपने 50 रन तो पहले ही पूरे कर लिए थे. पार्टनरशिप जो है वो दोनों की मिला करके अब 53 रन की हो गई है. श्रीलंका 57 पर पहुंच गया है एक विकेट के नुकसान पर. अच्छी साझेदारी, पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद चामरी अटापट्टू ने विश्मि गुणरत्ने के साथ यहां पर एक अच्छी साझेदारी निभाई है. और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये जरूर है कि अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन निकल सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है. और एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, और एक और चौका. डाइव जरूर किया था बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को पकड़ने के लिए क्रांति गौड़ ने, जो कि खुद बहुत अच्छी फील्डर हैं, लेकिन इस बार गेंद उनकी पहुंच से बाहर. तो एक और चौका, श्रीलंका पहुंच गए 61 पर एक विकेट के नुकसान के साथ. प्रेमा रावत थोड़ी सी खर्चीली साबित हो रही है जिस तरह से ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलती हैं अटापट्टू. और आप अगर ऑफ स्टंप पर गेंद को डाल करके मिडल और लेग की तरफ निकालेंगे तो उन्हें सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत होगी, और वही कर रही हैं. पिछली दोनों गेंदों में वही हश्र हुआ. हरमनप्रीत पहुंची प्रेमा रावत के पास, बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है प्रेमा का 6 मैचेस खेले इससे पहले।

0: हरमनप्रीत ने उन्हें समझाया कि आपको बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बॉलिंग करना चाहिए इस समय, और जब आप आक्रामक बल्लेबाज के सामने खड़े हों तो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बिल्कुल सही किया। पिछली दो गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगे थे, 9 ओवर पूरे हुए यहां पर, और श्रीलंका का स्कोर 61 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: टेल यू व्हाट, चमरिया अत्तापत्तू इज अ डेंजरस प्लेयर बिकॉज शी इज प्लानिंग हर इनिंग्स। शी चोज, शी न्यू दैट द इनएक्सपीरियंस बोलर्स आर गोइंग टू कम इन एंड शी माइट एज वेल वेट एंड नॉट अटैक क्रांति गौर फॉर दैट मैटर श्री चारनी, बट देन शी चोज प्रेमा रावत फॉर दैट ह्यूज सिक्स व्हिच वेंट डीप इनटू द गैलरीज एंड अ बाउंड्री टू टॉप इट अप। सो 11 runs conceded by Prema Rawat in a very first over, 61 for 1 after 9. I'm not too sure whether the required 123 runs in 66 balls is easily chaseable, but if Sri Lanka have to chase, they need somebody like Chamariya Attapattu in the middle.
0: Bilkul Munish, agar aapko Bharat ke target ko hasil karna hai to accelerator par pair abhi rakhna hoga, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है। 9 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 9.2 से बढ़कर 11.2 हो गया है। आखिर के 3-4 ओवर में 11 का रेट चलता है, लेकिन उससे पहले मुश्किलें पैदा करेगा, और यहाँ पर विकेटकीपर के ऊपर से गेंद निकल गई, वो भी बहुत सफाई के साथ इस गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई, तो अतिरिक्त रन यहाँ पर मिले। खुशहाल था इस गेंद में टप्पा खाने के बाद, बल्ले से लगती हुई गेंद और रिचा के ऊपर से गेंद निकल गई, हाथ से लगी थी बल्कि ग्लव्स के दस्तानों के नज़दीक से, तो एक आप कह सकते हैं मौका भी था, लेकिन रिचा काफ़ी आगे निकल गई थी उस गेंद पर और इसलिए चूक गई, और यहां पर गिल्लियां भी बिखेर दी। पिछली गेंद में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी, लेकिन इस बार उन्होंने मामले को बराबर कर दिया। दीप्ति को मिल गया विकेट, श्रीलंका ने गवा दिया दूसरा विकेट, और न सिर्फ दूसरा विकेट बल्कि बहुत बड़ा विकेट। चामरी अट्टापट्टू के तौर पर डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के फेवर में यह डिसीजन आना चाहिए। 10वां ओवर चलता हुआ, चामरी अट्टापट्टू क्या विकेट पर रहेंगी या बाहर जाएंगी, एक बार फिर देखना होगा। बिल्कुल सही गेंद, वैलिड गेंद दीप्ति शर्मा की, और यहां पर काफी आगे निकल गई थी चामरी अट्टापट्टू, और इतना आगे निकल गई थी कि लौटने की गुंजाइश ही नहीं थी। गिल्लियां बिखेर दी रिचा ने और दूसरा विकेट गवा दिया श्रीलंका ने। डिसीजन अब भी पेंडिंग है, लेकिन आना वो भारत के हक में है, और एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट चामरी अट्टापट्टू का, यानी कि अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर। चामरी अट्टापट्टू एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाई, 36 रन उन्होंने बनाए, और कुल मिलाकर इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचों के दौरान कुल 99 रन का स्कोर बनाया चामरी अट्टापट्टू ने। टीम की कप्तान, श्रीलंका की बल्लेबाजी जिनके इर्द गिर्द घूमती है, श्रीलंका की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जिनके ऊपर है, वही चामरी अट्टापट्टू पूरे टूर्नामेंट में कोई बहुत बड़ा नॉक नहीं खेल पाई। फाइनल में जरूर अच्छा प्रयास किया, लेकिन उनका जाना मुनीश श्रीलंका के लिए परेशानियों का सबब होगा।
1: Yeah, absolutely, and she was of course one of the most experienced players of Sri Lanka, 36 years of age, and it's not the age, but a true warrior she is. She's one of the trailblazers for the Sri Lankan side, and of course got a captaincy way back in 2014. She's the former best batter in women's cricket at the Sri Lanka Cricket Awards, and under her captaincy Sri Lanka registered the first T20 series win over South Africa in England, which was huge, and of course made an ODI series win against New Zealand. So a lot of records with Attapattu, and way back in 2011 she got her first ODI 100 also. She's got 3 T20 hundreds to her name, Sanjeda. And that's the reason she is one of the most experienced players and one of the most dangerous players. And look who took her wicket, Deepthi Sharma. Now levels her with 12 wickets in this format, in this tournament. And one more wicket will take Deepthi Sharma and make her as the highest wicket taker in the tournament. Of course,

0: number 12. Sri Lanka 76 for 3. And they have to reach to 184 in the remaining 8 overs. They require around 108 runs, and that is a daunting task. 108 in 48 balls. Sanjay Banerjee is going to give his views, and of course he's going to bring that flavor in the Hindi commentary. But we were looking for a close finish. But I think the whole idea and the plan of a close finish, you know, it just got over when India reached 183 in their stipulated 20 overs.
1: बहुत बड़ा लक्ष्य है T20 क्रिकेट के लिए, खासतौर पर महिला क्रिकेट के लिए, और 184 रन हासिल करना कोई आसान काम नहीं है इस विकेट के ऊपर, जहां ऑलरेडी श्रीलंका अपने 3 विकेट गंवा चुका है. 8 ओवर बाकी हैं. पहली गेंद पर 1 रन दौड़ करके पूरा किया. शेफाली को लगाया गया गेंदबाजी में, चूंकि शेफाली ने इससे पहले 1 ओवर किया है, 2 ओवर कर चुके हैं, ये तीसरा ओवर है शेफाली का. 19 रन खर्च किए उन्होंने. हर्षिता तैयार स्ट्राइक लेने के लिए. फ्लाइट हिट गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ करके गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद थोड़ा सा हटते हुए तकरीबन मिड ऑन पर थोड़ा पीछे की ओर गई. 1 रन और बनाया यहां पर. बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है श्रीलंका को. रनों का औसत अब 14 रन प्रति ओवर की औसत के आसपास है, और जाहिर है ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कतई आसान नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए दुनिया की. दीप्ति शर्मा की अच्छी फील्डिंग, और ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कुछ बयां कर देती है कि आप इस मुकाबले में कितना मजबूती के साथ खड़े हैं. श्रीलंका की जो बैटर्स हैं वो जहां एक तरफ थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं, और गेंद पर ऐसा लग रहा है कि जो ओस है दुबई के मैदान की वो लगातार उस पर लग रही है, और नहीं, उसकी सीएन के साथ शायद थोड़ा सा परेशानी थी और उसको निकाला गया है, ठीक किया गया अंपायर के द्वारा. शेफाली की पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स बने, लेकिन अब वो समय चला गया जब आप सिंगल्स के सहारे इस मुकाबले को अपने हक में कर सकते थे. ओह, बैकफुट पर जाकर के इस गेम को कट करना चाहती थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेम को मेडल नहीं कर पाई, और ऋचा भी बहुत सफाई के साथ गेम को गैदर नहीं कर पाई. गेंद आकर के उनके हेलमेट के सामने वाले हिस्से पर लगी, बल्ले से लगी थी गेंद, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं थी कि ऋचा उस कैच को ले पाती. ये डॉट बॉल. 105 रन चाहिए 44 गेंदों में. 13वां ओवर चल रहा है. नीलाक्षी 8 पर खेल रही हैं, हर्षिता 9 पर खेल रही हैं. अब चूंकि हेलमेट पर लगी हैं ऋचा घोष के, तो कंकशन के लिए यहां पर उनसे पूछा जा रहा है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आप ठीक से देख पा रही हैं, या आप कोई परेशानी तो महसूस नहीं कर रही तो. और ये एक औपचारिकता है, क्योंकि खेल में जो खिलाड़ियों की सुरक्षा है, खिलाड़ियों की जो सेफ्टी है, वो सर्वोपरि है. और ये एक नया नियम है कि अगर आपके हेलमेट पर बॉल लगेगी तो खेल कुछ क्षणों के लिए रुकेगा. ये तय किया जाएगा, ये कन्फर्म किया जाएगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, कोई असर उस गेंद के लगने का आपको नहीं हुआ है, और तभी आप ग्राउंड पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर ले आकर के जो भी चिकित्सा होगी वो किया जाएगा. शेफाली की अगली गेंद, और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहती थी, पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूकी. एक और डॉट बॉल लीजिए. इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं शेफाली ने. जब आप इस समय यानी कि 13वें ओवर में, जबकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है, तब अगर आप इस तरह की गेंदबाजी कर रही तो कमाल. एक और डॉट बॉल लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई. अच्छा ओवर समाप्त शेफाली का. सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने. 13वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर. श्रीलंका को अब 15 रन प्रति ओवर की औसत से बनाने हैं. तकरीबन तय है कि भारत 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, और जैसा कि हम इससे पहले भी चर्चा करते रहे कि अब एशियन गेम्स जो कि अब दस्तक दे रहे हैं लगातार, उसमें भारत की टीम क्रिकेट की, खास तौर पर महिलाओं और पुरुषों की, जो बेस्ट पॉसिबल टीम है, पूरी स्ट्रेंथ वाली जो टीम

वो खेलेगी और ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि दो स्वर्ण पदक क्रिकेट के कहीं नहीं जाने वाले, वो भारत के पास ही आने वाले हैं और दोनों टीमें अच्छी खासी तैयारी भी कर रही हैं उसके लिए। कुल मिलाकर एशियन गेम्स की क्रिकेट को भी भारत ने गंभीरता से लिया है और ये एक अच्छा संकेत है क्रिकेट के लिए भी, एशियन गेम्स के लिए भी और जापान के लिए भी, जहां पर क्रिकेट लगातार लोकप्रिय हो रही है। हवा में थी गेंद, पहली गेंद थी नए ओवर की श्रीचरणी के, लेकिन वहां कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था और पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया। क्रांति गौड़ पर थोड़ा सा नाराज हैं ऋचा, लेकिन चलिए दो रन पूरे किए। पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़ी दोनों बैटर्स, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि ऋचा घोष ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो गेंद को अपने दस्ताने में गैदर करके स्टंप्स पर मारती तब तक बैटर्स अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। 103 रन चाहिए 41 गेंदों में श्रीचरणी इस ओवर में अगली बार। जहां तक श्रीचरणी का सवाल है, उनका दूसरा ओवर, अब तक 7 रन खर्च किए उन्होंने। अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप की गेंद को उन्होंने ऑन साइड पर खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजदीक। क्रांति गौड़ और प्रेमा रावत दोनों वहां पर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करके उन्होंने वापस बोलर के पास फेंका। 83 रन यानी कि पूरा 100 रन पीछे है श्रीलंका भी, और जीत के लिए उसको 101 रन बनाने हैं 40 गेंदों में। तकरीबन असंभव की श्रेणी में जाता हुआ यह मुकाबला, 12 गेंदों से कोई शत बाउंड्री नहीं लगी इस बार। हवा में क्या कोई नीचे है, बिल्कुल नीचे थे हरमनप्रीत, और साथ में ऐसा लगा कि क्या कोई कंफ्यूजन था या हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा के बीच में एक गलत फहमी थी कि वो बॉल बीच में गिर गई। ऐसा लगा जैसे उस प्रयास को बीच में रोक दिया गया हो, कोई गलत फहमी दोनों फील्डर्स के बीच में, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज इस बार हवा में है और अंपायर के नीचे गेंद जाकर के गिरी। भारती ने पूरा अपना प्रयास किया, लेकिन जाहिर है उनके प्रयास का कोई फल नहीं होना था। दो बार कैच निकले, लेकिन किस्मत अच्छी, अपनी जगह पर सुरक्षित भारती ने प्रयास किया वहां, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। 98 रन अब भी चाहिए 38 गेंदों में, इस ओवर की सिर्फ दो गेंदें बाकी हैं। श्रीलंका का स्कोर 86/3। नीलाक्षी खेल रही हैं 15/11 गेंदों के बाद, और हर्षिता का स्कोर है 9 रन 13 गेंदों का सामना करने के बाद। श्रीलंका की मुट्ठी से यह मुकाबला फिसल चुका है, इसमें शायद कोई बहुत ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है। श्रीचरणी के इस ओवर की अगली गेंद हवा में, और आखिर तक श्रीचरणी ने खुद अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद को कैच किया। एक और विकेट, चौथा विकेट गिर गया है श्रीलंका का। लगातार तीसरी गेंद पर कैच दिया और आखिर तक हर्षिता का विकेट गिर गया। हर्षिता समर विक्रमा इससे पहले दो मैचों में अपनी टीम को जीत दिला चुकी हैं, लेकिन आज उनका यह प्रयास नहीं चल सका और उछाल लेते हुए अपनी जगह से बिल्कुल सही समय पर उछाल लिया श्रीचरणी ने और हर्षिता का विकेट अपने हाथों में कैद किया। चौथा विकेट गिर गया श्रीलंका का। कॉटन बोल्ड श्रीचरणी, 9 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों का सामना करने के बाद। तो अब एक औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले के अंदर। भारत खिताब की दहलीज पर पहुंच गया है, भारत खिताब पर लगातार दस्तक दे रहा है। यह 8वां खिताब होगा भारत का। एशिया कप के तमाम फाइनल्स में भारत ने शिरकत की है और ये 8वीं बार मौका मिला है भारत को जब वो फाइनल जीत सकता है। जीतने की दहलीज पर पहुंच के आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 183 रन भारत ने बनाए 5 विकेट पर कुल 20 ओवर्स में। 184 रन बनाने थे जीतने के लिए श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका ने अब तक 86 रन बनाए हैं, 4 विकेट उनके गिरे हैं। 14वां ओवर चल रहा है, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि श्रीलंका के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका है। कविशा दिलारी, 93 मैचों का तजुर्बा है, 791 रन है, इकलौता अर्धशतक है इनके नाम। अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेंगी तब भी शायद अपनी टीम को पार नहीं लगा पाएंगी। चलिए पहली गेंद पर आखिरी वक्त तक इंतजार किया और

हल्के से केवल प्लेस कर दिया, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। नंदिनी शर्मा गेंद के पीछे थी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर, और इन चार रनों के साथ अब श्रीलंका का स्कोर

0: as calculated by our scorer. And of course, he's telling us that it's a daunting task for Sri Lanka. No signs of rains. Of course, the weather gods clearly dictating that it's going to be a clear weather today. And our scorer Ranjit Singh Rawat telling us that 119 was the score if the DLS had to come in to play. So we're trying to cover all the aspects and the dimensions of the game here. Prima continues the attack and now gets a delivery that's been swept towards the backward square leg area. And an overthrow. No, not really. A bagged up effort by the Indian fielders. And they know that the chance is coming to win this Asia Cup. 94 runs needed in 35 balls now. There was a mix-up though. Both the batters were stranded at one end. It was an opportunity that's been missed. Richa Ghosh was at the batter's end. And a wide throw that saved another dismissal for Sri Lanka. Though Harmanpreet was backing up. She took a shy at the non-strikers end. But by the time that all happened, of course, Neelakshi was back at the non-strikers end. So Prima comes in right above the wicket. The leg spinner flighting the delivery. Very impressively and confidently bowling that delivery to Kavisha. Dot delivery as the ball has been played back to the bowler. Of course.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

0: प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers

0: said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT Al-Ghaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. President Draupadi Murmu has extended greetings on the eve of Ganesh Chaturthi. In her message, the president said that Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity, and auspicious beginnings. President Murmu prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health, and prosperity into everyone's lives. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Delhi tonight. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. Earlier, Afghanistan made 156 for 8 in their stipulated 20 overs. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Mochi in China today. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से जारी रहेगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल।
2: Because what a knock she played, Shefali Verma, 68 of 39 deliveries, 9 boundaries, 2 sixes, strike rate of 174.4. The other half centurion, Smriti Mandhana, was unfortunately run out with that misunderstanding between her and the captain, Harmanpreet Kaur. Mandhana scored 59 of 39 deliveries. But I tell you what, this is one of the moments where Shefali Verma, picking up that wicket, has consolidated her position as the player of the match. Bowls another delivery, stayed one. Bowling to Sugandhika, 7 wickets down, 103. India were well beyond 100. In fact, they were around 161 at this point of time. But a cut and then a thickish edge outside the off stump on the next delivery by Shefali Verma. Just a single then as Sri Charni from the short third man runs to her right and picks up that ball. Sri Lanka at the moment 104 for 7 after 17 overs.
3: तो आखिरी 3 ओवर बाकी हैं इस मुकाबले में 80 रन अब भी चाहिए श्रीलंका को और नुथियांगना जो कि विकेट कीपर हैं टीम की वो अब सुगंधी कुमारी के साथ बैटिंग करने आई हैं 2 रन नुथियांगना के और इसके अलावा 1 रन सुगंधी का कुमारी का श्री चरणी ने आज 3 विकेट लिए हैं अगर आप भारतीय गेंदबाजों का विश्लेषण देखें कि किसने किस तरह की गेंदबाजी की है तो बिल्कुल आपको साफ लगेगा कि श्री चरणी सबसे कामयाब बोलर्स में उनका शुमार है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने क्रांति गौर ने शुरुआत की दो ओवर में एक विकेट लिया नंदिनी शर्मा ने 3 ओवर गेंदबाजी की 17 रन दिए कोई विकेट नहीं मिला श्री चरणी का ये आखिरी ओवर होना चाहिए 3 ओवर्स इससे पहले उन्होंने किए हैं ये आखिरी ओवर होगा उनका 20 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं तो सबसे कामयाब गेंदबाज आज की श्री चरणी दोनों डॉट बॉल इससे पहले और एक बार फिर खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके पैड पर जाकर के लगी उछाल था गेंद में और इसलिए रन तो मिला रही लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ श्रीलंका को काफी उछाल था गेंद पर, जहां पर गेंद टप्पा खाई वहां बल्ला ले जाकर के स्वीप शॉट खेलना चाहती थी, पूरी तरह से मिस किया गेंद की टाइमिंग को और इस बार फिर

0: ओवर्स खेलने का प्रयास, कुछ भी समझ नहीं पा रही है श्रीलंकन बैटर्स की किस तरह से खेलना है श्री चरणी को। श्री चरणी की लगातार चारों डॉट बॉल हैं। अब सुगंधिका जिन्होंने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं, जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन सर चढ़ करके उनके बोल रहा होगा। आखिरी 2 गेंदों पर श्री चरणी क्या करती हैं, पिछली 30 गेंदों में 25 रन बने हैं श्रीलंका के और 4 विकेट गवा दिए श्रीलंका ने। इस बार फ्लाइटेड थी और गेंद को हवा में खेला है और हाथों में जाएगा, बिल्कुल एक और विकेट श्री चरणी का, ये 4th विकेट, यानी कि विकेट्स लेने के मामले में श्री चरणी अब नंबर 2 पर पहुंच गई हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, 8 विकेट इस मुकाबले से पहले उनके थे, 4 विकेट आज उन्होंने लिए। चमरी अट्टापट्टू के भी 12 विकेट हैं, इनके भी 12 विकेट हैं और इस गेम को घुमा दिया था लेकिन सीधे हवा में लहराता हुआ और एक अच्छा कैच और इसके साथ ही श्रीलंका का एक और विकेट, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी। नंदिनी शर्मा ने कैच किया श्री चरणी की गेंद पर, 1 रन बनाए सुगंधिका कुमारी ने 7 गेंदों का सामना करने के बाद। भारत के लिए जीत का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका है। 104 8 विकेट पर, 18वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि 13 गेंदें बाकी हैं। किसी भी सूरत में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है श्रीलंका, लेकिन क्या 20 ओवर खेल सकता है, सवाल बस यही है। लुथियांगना का साथ देने के लिए नई बैटर इस समय विकेट के ऊपर है और देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करती है। मिताली अयोध्या है, बिल्कुल मिताली अयोध्या आई हैं आखिरी गेंद का सामना। रक्षात्मक तरीके से अपने बल्ले से रोका, 18वां ओवर समाप्त हुआ। श्रीलंका का स्कोर 104 है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर में 80 रन बनाने हैं, मुकाबला हाथ से निकल चुका है, भारत 8वीं बार खिताब जीत चुका है। आखिरी 2 ओवर्स में क्या कुछ होगा, ये बताने के लिए मनीष जौली स्वागत।
1: A nice way to welcome after the 18th over as well, and fully taking that credit. Of course, this will be a victory for India for sure, because from here, in those remaining 12 balls, even if they hit a 6 off every ball, they'll reach to 72, but they require 80 runs to win this game, which is, of course, now absolutely impossible. But at the same time, we want to just update about that match between India and Afghanistan, which happened in Delhi at the Arun Jaitley Stadium. Another dot delivery from Prema Rawat at the moment. And speaking about that game between Afghanistan and India, the men beating Afghanistan by 7 wickets. Afghanistan gave a target of 157. And Abhishek Sharma scored 82 of 32 deliveries with a strike rate of 256, and India victorious very comfortably, and that was over in 13.4 overs. So this is a bigger victory because this is Asia Cup and India are going to become the Asia Cup champions. But as we speak, a sitter dropped there by Bharti. And a catch that should have happened. She lost the catch in the lights. But as I speak, I just hope that I'm not getting to see the replay, because a little long little dolly has been dropped by Sri Charni. It was just as if a ball has been thrown to her, so that she can start a fresh over. In that same manner, this catch came to her and she drops it. What is happening there in the field? And I've witnessed something that I haven't witnessed for years. The smile on those mistakes by the captain, Harmanpreet Kaur. 2 dollies dropped there by the Indian players. Prema Rawat comes in and beats the player, and there's a loud appeal by Richa Ghosh for a stumping. We are going to the video umpire. It's all happening there in the middle. Richa Ghosh looks absolutely confident that she's done the damage. And can India bowl out Sri Lanka before the last ball is bowled?

0: भारत बना है आठवीं बार एशिया कप चैंपियन। भारतीय स्पिनर्स की फिरकियों ने श्रीलंका को ऑल आउट किया है 111 के स्कोर पर, और हम हाजिर हैं कौन बनेगा प्लेयर लेकर। मैं हूं बदता और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी हाँ, सभी भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई। भारत आठवीं बार एशिया का चैंपियन बना है महिला क्रिकेट में, T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने ये मैच जीता है। और भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज का दिन शानदार रहा है। एक तरफ चाइना से खबर आई कि हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की महिला टीम ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया, भारत की पुरुष टीम ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को मात दी, तो वहां दो एशिया कप के टाइटल भारत ने अपने नाम किए, यहां महिला क्रिकेट में अपने नाम किया। तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को पहले T20 में मात दी। और वहीं एक खबर मेक्सिको से भी आ रही है, जहां पर आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में धीरज बोमादेवरा मेंस रिकर्व आर्चरी में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय आर्चर बन चुके हैं, यानी वहां से भी सिल्वर मेडल आना तो कंफर्म है। थोड़ी देर में पुष्टि होगी कि गोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ टेरिफिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, बट हेयर वी आर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी है, जो शायद इन इमोशंस को बहुत बेहतर से जानती है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत पाना। लतिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ में हमारे साथ उत्तरा गणेशन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक लंबे अरसे से बड़े करीब से देखा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस जीत के। वेलकम उत्तरा।
2: धन्यवाद।
1: तो लतिका, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एज अ प्लेयर, जब आप इन विजुअल्स को देखते हैं, टीम को सेलिब्रेट करते हुए, लंबे टूर्नामेंट में जीत हासिल करते हुए, अनडिफीटेड रही है भारतीय टीम, कैसा महसूस करता है खिलाड़ी?
2: देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों के कैंप्स लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, यंगस्टर्स को लेकर आते हैं टीम, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबो भरा है ये जो रास्ता रहा है, उसकी जर्नी जो आज एक कप के साथ फिनिश होती है, तो इस चीज़ की फीलिंग एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। और इसी चीज़ के लिए तो हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रॉफीज़ की ना अब आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हरमन जिस तरह का काम कर रही हैं, जिस तरह की कप्तानी वो कर रही हैं, तो उनके साथ ये जो सफ़र है, यंगस्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं स्मृति जैसे, तो अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है। उत्तरा, 10वां एडिशन है ये एशिया कप का, पहले एडिशन में भी श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है और ये 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रहा है भारत, इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा भारत के डोमिनेंस का एशिया में?
3: मुझे लगता है कि अगर, हालांकि उम्मीद थी भारत के जीतने की ही, पर जितना बड़ा गैप है इस वक्त भारतीय क्रिकेट और बाकी एशियन टीम्स के बीच में, महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में, बट महिलाओं में और ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब भारत को अपने आप को एशिया के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीतने लगते हो, जब आपको आदत हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सपने बड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट अब आप प्रूव कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रूव कर चुके हो कि इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। आज इन्होंने फिर से इस चीज़ को प्रूव किया है, और जितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं, T20 जैसे टूर्नामेंट में 70-75 रन से जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे टोटल ही कई बार टीमों के इतने बनते हैं, उसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना, तो मुझे लगता है अब भारत को अपना सपना और अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एम्बिशंस और बड़े करने चाहिए, अपना लालच और बड़ा करना चाहिए और विश्व की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट विश्व कप ही होना चाहिए इनका।
1: जी बिल्कुल, 72 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। सामने श्रीलंका थी, जो कि इस टूर्नामेंट में आज से पहले अपराजित थी, और उनको एक एकतरफा अंदाज में भारत ने हराया है। और अभी भी हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं वो खाली नहीं हुए हैं, भारतीय प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं स्टैंड्स में, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जिस जब हरमनप्रीत कौर को वो ट्रॉफी दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा भारतीय टीम द्वारा। लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लतिका, उत्तरा ने कहा कि हमें अब और आगे की सोचनी है, उस लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पहलू हैं जिन पर भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है जो आपने इस टूर्नामेंट में देखे?
2: देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, कैचेस की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा लैक दिखा है, उसमें थोड़ी कमियां ज़रूर नज़र आई हैं। और आई होप के जो कोचेज़ हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा होगा और इस पे काम करने के लिए आगे प्लान्स भी ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है जो अपने हाथ में रहती है। एक बल्लेबाज किसी भी अच्छी गेंद पर आउट हो सकता है, एक गेंदबाज की किसी भी अच्छी बॉल पर बड़ा हिट लग सकता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ही एफर्ट करना है, वही एफर्ट जो है वहाँ पर रन बचा सकता है या किसी की बॉलिंग में वो विकेट दिला सकता है। तो जो आज भी हमने देखा है कि काफ़ी आसान से कैच इतने आसानी से छोड़ दिए, आप उस बॉलर से पूछिए जिसने इतनी मेहनत की उस कैच को करवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कोई क्रूशल अगर मैच होगा और वहाँ ये सिचुएशन आती है तो थोड़े आपको कह सकती हूँ मैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है जब आप क्रिकेट में कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस जीत में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी दिखा हमें वो था भारत के स्पिन अटैक का, लेड बाय दीप्ति शर्मा, नाउ वी हैव चरणी, देन प्रेमा रावत। कैसे देखती हैं उत्तरा इस स्पिन अटैक को आप भारत के, क्या वो और ज़्यादा धारदार होता जा रहा है? और काफ़ी इम्प्रेस किया है उसने इस पूरे टूर्नामेंट में।
3: बिल्कुल, और जिस तरह से एज अ नॉर्मली कहा जाता है कि नो फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, बट ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉलिंग यूनिट पूरी अटैक व्हेन दे अटैक इन अ पैक तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हाँ, दीप्ति शर्मा ज़रूर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं, मैचेस जिताए हैं, काफ़ी विकटें ली हैं, इसमें भी वो टॉप विकेट टेकर बन गई हैं। पर श्रीचरणी और प्रेमा रावत को देख के आपको लगता है कि कम से कम वो लेगेसी आगे कंटिन्यू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से क्योंकि दोनों यंगस्टर्स

0: अभी बहुत साल और खेलना है, और हमारी बैटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है पर बॉलिंग में कभी ना हमेशा ये रहा है कि शायद एक कम पड़ गया है, या एक एंड पे जब हो रही होती है तो दूसरे एंड पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से आपके पास तीन चार एक जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर्स होते हैं, तो वो जो बीच के ओवर होते हैं जिसमें आप एक्चुअली रन्स को चोक कर सकते हैं, वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। और इसीलिए मिडिल ऑर्डर में जब आप सद के खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडेयर्स हो, तो वहाँ पे फिर रन ज़्यादा ईजिली आते हैं। जब आपके पास एक की जगह तीन इस तरह के होते हैं जो किसी भी बैटिंग टीम को परेशान कर सकते हैं, बैटिंग साइड को, तो आपको आपके बैटिंग को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कोई भी टारगेट सेट करें उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है कि अगर बाय चांस 5-10 रन कम भी बनाए हमने तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं, चाहे वो शुरू में तेज़ गेंदबाज हों या बीच में स्पिन गेंदबाज हों, जो सामने वाली टीम की रन फ्लो को रोक सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम जश्न मना रहे हैं भारत के एशिया कप जीतने का, वुमेन्स एशिया कप 2026 का टाइटल भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। इस जश्न में आप भी शरीक हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1085 या 1084 पर, और अगर दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना की तो तारीफ होगी ही। मैं चाहूंगा लतिका एक बार फिर आप इनकी बल्लेबाजी का आकलन करें, और साथ के साथ शेफाली जो कि एक छठे बॉलर के तौर पर अब लगातार कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताएं।
2: बिल्कुल, देखिए ये विश्व कप के बाद से ही ये चीज हमने देखी कि शेफाली के हाथ में गेंद अब लगातार जो है दिखाई देती है जब भी कभी मैच होते हैं, और इस तरह के मोमेंट में आप देखिएगा पावर प्ले के आसपास भी उनको गेंदबाजी कराई जाती है। तो कह सकते हैं कि एक और गेंदबाज यहां तैयार हो रहा है भारतीय टीम के लिए, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज भी है, और ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे एशिया कप में उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अपने खेल का जो तरीका उन्होंने इस एशिया कप में दिखाया है तो उससे ये पता चलता है कि काफ़ी मेहनत इन्होंने अपने स्किल पर भी की है, और जो इनका माइंडसेट है उस पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो हैं ये बनकर आई हैं, और इस तरह की जब कोई प्लेयर बनते हैं ना तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो प्लेयर ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की।
1: थोड़ी सी पीछे की मेहनत आपने देखी है, हम जानते हैं, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को।
2: मैं यही कहूंगी कि शेफाली जब ड्रॉप हुई थी इंडियन टीम से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, उस टाइम पे उन्होंने यही जो सपना था उनका यही था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता और मैं लगातार अपनी जगह वापस लेने के लिए वो मेहनत करती रहूंगी, और उनको जैसे ही वो मौका वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला और उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद से वो शेफाली वर्मा हमें देखने को मिली है जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली थी, और हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय टीम के लिए लंबे अरसे तक इसी तरह का प्रदर्शन करती रहे।
3: जी बिल्कुल, और शेफाली वर्मा पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता भी काफी उत्साहित हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछें। आपको भी बहुत बधाई। इसके बारे में हम आपको शायद कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शेफाली वर्मा की, आपने बात करी, इससे पहले वाले कॉलर दोनों ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे देना चाहिए। तो उत्तरा और लतिका, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कौन होगा आपका प्लेयर ऑफ द मैच और देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
0: बहुत मुश्किल है, पर प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की थी शेफाली ने, और जिस तरह से

0: जी उतरा हम चाहेंगे आप हेड ऑन लेते हैं चीज़ों को, इस सवाल को भी आप हेड ऑन लें। हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे एशिया से बाहर निकलना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, और बेहतर बनना है, विश्व स्तर पर ऐसा बनना है कि कोई भी टीम हमसे कम्पीट ना कर सके। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हो रही हैं इस पर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं?
1: देखिए बिल्कुल, और जैसे लतिका ने कहा, जो प्रेमा की बॉल पर लगातार एक ही ओवर में 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी को भी डीमोटिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। और हालांकि जिस टाइम पे वो कैचेस ड्रॉप हुए उससे रिजल्ट पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, तो आपको भारतीय खिलाड़ी भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते नज़र आए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर उस वक्त टोटल 107/8 की जगह 177/8 होता तो शायद चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि तब आपके पास करीब 1.5 ओवर में आपको सिर्फ 5 या 6 रन बनाने रह गए थे या 8 रन बनाने थे, तो सिचुएशन शायद बिल्कुल अलग हो जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है, फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आज बहुत ही 2 एक्सट्रीम्स पे थे भारतीय फील्डिंग, कुछ तो इतने कमाल के इन्होंने कैचेस लिए जो शायद किसी भी हॉल ऑफ फेम में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कैचेस थे जो 10 में से शायद 9 बारी ये लोग नींद में भी ले सकते थे और आज ड्रॉप हुई हैं कैचेस। तो वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लैंड जैसी टीमों को अलग बनाती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक किलिंग स्पिरिट होती है, कि आपके पास बिल्कुल आपके पास 70-72 रन का अभी कुशन है, आपको पता है कि अगले 6 गेंदों में या 2 विकेट ज़रूर गिर सकते हैं लेकिन 70 रन नहीं बन सकते, पर आपको उस स्टेज पे क्यों जाके लगता है कि यहाँ पे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ दो चार कैच ड्रॉप हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। वो 18.3 ओवर में क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि उस चीज़ से ओवरऑल आपके रन रेट पे फ़र्क पड़ता है, जो गेंदबाज है उसकी इकोनॉमी रेट पे फ़र्क पड़ रहा है, उसमें आपकी टीम की सीरियसनेस नज़र आती है उससे। और जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े लेवल पे खेलते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, और हमने लगातार देखा है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही भारतीय टीम ने कई बारी विश्व स्तर पर अपने मैचेस हारे हैं बड़ी टीमों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना, थोड़ा सा वो किलर इंस्टिंक्ट लाना कि किसी भी पॉइंट पे आपको गेम को ख़त्म जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी ख़त्म किया जाए, 20वें ओवर तक 120वीं गेंद तक लेके जाने का उसका कोई मतलब नहीं है आपका। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वाकई थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो तभी आएगा जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल होंगे, थोड़ा सा और सीरियस होंगे इस चीज़ को लेकर।
2: जी बिल्कुल, वो किलर इंस्टिंक्ट और वो विनिंग माइंडसेट बिल्कुल चाहिए। लतिका फिर से बात की उत्तरा ने प्रेमा रावत की, श्रियंका पाटिल की इंजरी के बाद सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ था और उसके बाद अब एशिया कप, पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट, आज फाइनल में खाता खोला है उन्होंने। हाउ वुड यू रेट हर परफॉर्मेंस?
3: देखिए मैच के बाद मैच में वो इम्प्रूव करते नजर आई हैं, और इस एशिया कप में एक खास बात ये देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग थी। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ पर लाइन लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से गिर नहीं रहा था, लेकिन इस एशिया कप में उनके हाथ से बहुत ही अच्छा गेंद जो है सीम से निकल रहा है, अच्छा टप्पे पे गिर रहा है, अच्छी लाइन जो है उनकी पड़ रही है और अच्छा वहाँ से स्पिन भी करा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है गेंदबाज में जब वो एक मैच में इम्प्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब विकेट टेकिंग की बात करें उनकी, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ हैं और वो हर मैच में दिखा भी रही हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उनके कैचेस पकड़े नहीं गए, अदरवाइज ये 1 की जगह 2 या 3 यहाँ पर विकेट होते। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा काम वो अपनी गेंदबाजी पे कर रही हैं और जिसका असर हमें मैचेस में दिख रहा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन जो गेंदबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। और वही है कि किस तरीके से हम कहते हैं ना बॉलिंग में लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं एज ए लाइक स्पिनर।
0: अच्छा, स्पिनर्स की तो बात हम करने ही वाले हैं, होनी भी चाहिए, और दुबई में क्योंकि ये टूर्नामेंट था इसलिए स्पिनर्स बहुचर्चित रहे।

0: करेंगे ये तो हमें मालूम था, लेकिन वो जो दो पेसर्स हैं लतिका, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, स्पॉटलाइट उन पर आ नहीं रहा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को हम बताएं, अपने लिसनर्स को हम बताएं उन दोनों के बारे में कि क्या है जो आपने आकलन किया उनको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं?
1: देखिए, काफ़ी इम्प्रूव्ड गेंदबाजी, मैं ये कहूँगी कि विश्व कप के बाद से सभी गेंदबाजों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, ख़ासकर हमारी पेस अटैक पे, क्योंकि हम काफ़ी थोड़ा निराश थे कि वहाँ पर हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। क्रांति गौड़ की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ पे अच्छा काम किया है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी यहाँ कर रही हैं, पहले काफ़ी शॉर्ट गेंदबाजी वो करती थी, लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी की है, अपनी लाइन लेंथ पर काम किया है। वहीं अगर नंदिनी की बात करें तो हमने देखा है कि WPL में किस तरीके गेंदबाजी करती थी, और अब थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर किए हैं, और उसकी वजह से जो एक विकेट टू विकेट गेंदबाजी हम ज़्यादा उनकी गेंदबाजी में देख रहे हैं, हमें पता है कि इन स्विंग अंदर की तरफ आती हुई गेंद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालती हैं, तो कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में हमारे
0: लोअर बॉल डालती है बैक ऑफ द हैंड
1: वो परफेक्ट है उनकी, नंदिनी की मैंने बहुत कम बॉलर्स देखे हैं जो इतने परफेक्शन से वो गेंद डालते हैं, और उन पर उनको विकेट भी मिलती है। पिछले मैच में हमने देखा लास्ट बॉल में उन्होंने कैसे विकेट लिया था।
2: लतिका, हर प्लेयर का जिस तरह आप एनालिसिस कर रही हैं, तो आपका पिक कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए?
1: देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जिस तरह गेंदबाजी श्री चन्नी ने यहाँ पे की है, कि यंगस्टर्स हैं, उभरता हुआ सितारा भी हैं, और उनको ये इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब कोई यंगस्टर इस तरह गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होता है, और उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई, अपने स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं कि वो किस लेवल के गेंदबाज हैं, और चाहे हम किसी भी बैटर को उनके सामने ले आते, घबराती नहीं है बॉल को डालते टाइम, और जो रिटर्न कैचेस वो पकड़ रहे हैं आजकल, मतलब कह सकते हैं कि हवा में होते हैं वो पूरे, और उसके बाद तो एक ये भी देखने को मिलता है कि फिटनेस पे भी वो अच्छा काम कर रही हैं, तो ये देखते हुए अच्छा लगता है कि कोई यंगस्टर इस तरीके से आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वुमन ऑफ द मैच तो मैं कहूँगी कि एक गेंदबाज को, मैम से भी मैं एग्री करूँगी कि गेंदबाज को मिलना चाहिए, क्योंकि बैटिंग डोमिनेटिंग ये गेम बनता जा रहा है, तो जहाँ वहाँ बॉलर अगर 4 विकेट ले रहा है उसका ये मतलब, और एक मेडल भी डाला है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की होगी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है कि शेफाली या दीप्ति, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, समय आने पर अच्छी बल्लेबाजी भी वहाँ करती हैं, और शेफाली के इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जब इनिंग की शुरुआत करनी होती है वहाँ पर भी एक प्रेशर होता है, जब चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या आप चेज करते हुए बल्लेबाजी करने हैं, तो वो एक अहम समय होता है वहाँ पर एज अ ओपनर, कि आप शुरुआती दौर में वो ओवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपका रन रेट अच्छा होना चाहिए अगर आप दूसरी टीम पर प्रेशर डालें, तो दोनों ही अपनी तरफ से एक, मैं कहूँगी मेरी तरफ से तो ये टाइम नजर आता है, तो अब देखते हैं फाइनली किसको मिलता है।
0: चलिए, कठिन निर्णय है, लेकिन हमारे कॉलर्स की क्या राय है वो हम जानना चाहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी कहां से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल पूछिए अपना। जी और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी खुशी जाहिर की है, उसी से हम बहुत खुश हैं। उत्तरा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द प्लेयर्स, बट देयर इज वन प्लेयर हु वी हैवंट डिस्कस्ड इन लेंथ, स्मृति मानधना। वी टॉक्ड इन द प्री शो दैट एट टाइम्स यू नो दे से दैट शी डजंट डिलीवर एट द बिग स्टेजेस, ये उन पर एक लालचन लगाया जाता था फैंस द्वारा। आज 150 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया है, रनआउट हो गई जरूर, बदकिस्मत रही, लेकिन आज कमाल की पारी खेलकर वो नींव उन्होंने रखी बड़े स्कोर की।
3: देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फैंस नहीं, इन जनरल हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो अक्सर एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा जाते हैं, तो जो लोग ये कह रहे होंगे इतने वक्त से कि स्मृति मानधना बड़े स्टेज पे नहीं परफॉर्म करती या वो नहीं कर

0: खेल रहे हैं। थाईलैंड में क्रिकेट अभी से नहीं है, बहुत से लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा कि थाईलैंड में काफ़ी सालों से क्रिकेट खेली जा रही है और थाईलैंड काफ़ी पहले से एसोसिएट नेशन है।
1: शायद यही राज है इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस का।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन टीमों को आपस में और ज़्यादा खेलना चाहिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट जिस लेवल पे है वो ऑब्वियसली विश्व स्तरीय है, पर जब आप अपने आसपास के, जिसे कहते हैं ना कि जब पड़ोस मजबूत होगा तो आपकी अपनी ताकत बढ़ती है, तो एशिया में क्रिकेट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा टीमें अच्छा खेलेंगी और ऊपर आएंगी, उतना ही आपका खुद का कंपटीशन लेवल भी इम्प्रूव होगा। और जब तक आप आपस में और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, हालांकि बीसीसीआई काफ़ी हेल्प करती है, आज अगर इंडिया में, आज अगर दिल्ली में भारत अफगानिस्तान मैच चल रहा है तो एक तरह से वो अफगानिस्तान का होम मैच है, वो होस्ट हैं हमारे इस सीरीज़ के, लेकिन वो दिल्ली में चल रहा है, वो अपने ट्रेनिंग कैंप भी यहीं पे लगाते हैं इंडिया में ही, तो चल रहा है काम। लेकिन मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट में भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है और जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको यहाँ बुला के, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे ही क्यों ना हो, हमारे टूर्नामेंट्स में खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर वो अपनी नेशनल टीम्स भेजते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे और यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और उनको सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
2: जी, बीसीसीआई की हमेशा एक अहम भूमिका रही है। हम जानते हैं कि भारत की जो पुरुष टीम है अभी जापान के साथ भी एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आने वाले दिनों में खेलने वाली है। इस वक्त हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, भारतीय टीम जश्न मना रही है एक हडल में और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका वहां पे मौजूद हैं और फील्डिंग के लिए मेडल दिया जा रहा है नंदिनी शर्मा को। ये एक ऑफिशियल प्राइस तो नहीं है लेकिन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट करती है बेस्ट फील्डर को, तो आज नंदिनी शर्मा को वो मेडल दिया गया है। राजीव शुक्ला भी वहां पर मौजूद हैं और फील्डिंग कोच जो है भारतीय टीम के मुनीश बाली वो नजर आ रहे हैं, हेड कोच अमोल मौजूमदार नजर आ रहे हैं और साथ के साथ भारत के सारे प्लेयर्स हैं। एक हडल में जश्न मनाया जा रहा है, इंतजार हालांकि किया जा रहा है ACC के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब उनका, ताकि वो आए और ट्रॉफी दें। वो प्रेजेंटेशन अभी से कुछ देर में होगी, लेकिन तब तक हम अपने श्रोताओं को कुछ रोचक आंकड़े बता दें कि 10 संस्करण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर 10 संस्करण महिलाओं के एशिया कप के खेले गए हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने चौथी बार एज अ कैप्टन ए टाइटल जीता है। इनसे पहले मिथाली राज की कप्तानी में 3 बार भारत ने टाइटल जीता था, तो 3 बार एशिया कप जीतने वाली कप्तान मिथाली राज दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं उस सूची में और हरमनप्रीत कौर नंबर 1 पर आ गई हैं। लतिका, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि यहां से आगे कैसे इंप्रूव करना है। 2-3 वो वीक स्पॉट्स अभी भी दिख रहे हैं, एक वो नंबर 3 की पोजिशन, आपने प्रतिका को ट्राई किया, अभी एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी आपने उनको डाला क्योंकि जमीमा रॉड्रिग्स फिट नहीं है, आज कामलिनी को आपने खिलाया जरूर लेकिन नीचे भेजा, दूसरा वो भारती फूलमली का जो स्पॉट है नंबर 5 नंबर 6 पर वो कहीं ना कहीं अभी पक्का नहीं हुआ है। इन दो वीक पॉइंट्स को आप आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं इंप्रूव होते हुए?
1: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ पे काम करना, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग साझेदारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रही है और वन डाउन के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कमलिनी को आपने चेंज किया है प्रतिका रावल से और जो आज उन्होंने सिर्फ पाँच गेंदों में वो कमाल करके दिखाया, तो उनको भी वो मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वहाँ पर आके वो बल्लेबाजी करें, कुछ शॉट्स खेलें, कुछ कॉन्फिडेंस उनमें भी आए आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे अगर इनको नंबर 3 पर लेकर आते हैं तो वो जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कमलिनी ओपनिंग करती हैं तो वो एक्सपीरियंस भी उनके पास काफ़ी है और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी जो है बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी करती है, बड़े बड़े शॉट्स लगाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर उन्होंने आज वो कॉन्फिडेंस भी दिखाया, पहला मैच फाइनल मैच, प्रेशर बहुत था, आपको नंबर 3 पे नहीं भेजा गया, 4 पे नहीं भेजा गया, आप वहाँ डगआउट में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आपके बल्लेबाजी करने को मिलेगी और उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ही मकसद होता है रन बनाने का, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो कमलिनी ने आज दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नंबर 3 की जो समस्या अभी जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि हालांकि इंजर्ड चल रही है

0: उनकी जगह पर खिलाएं तो बेहतर होगा। और उसके बाद हरमन आती हैं, फिर ऋचा घोष मुझे लगता है कि 15वें ओवर के आसपास आए, उसके बाद आए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनकी इनिंग नज़र आएगी। भारती फुलमल्ली को मैं हरमनप्रीत के बाद देखती हूँ, क्योंकि उनको पूरा मौका वहाँ मिलेगा अपनी बल्लेबाजी करने में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक दो गेंद उनको लगती है समझने में, देखने में, और उसके बाद वो बेहतरीन जो है बल्लेबाजी करती है। उनको हमने पहले डोमेस्टिक में भी देखा है, WPL में भी देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी नहीं करती है, रन नहीं बनाती, तो सही नंबर पे उनको भेजना बहुत जरूरी है।
1: तो एशियन गेम्स आने वाले हैं, वहां पर हर मुकाबला भले ही नॉकआउट है, सामने आप जापान से पहला मुकाबला खेलेंगे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की गुंजाइश देखते हैं वहां पर, या फिर आप कहेंगे नहीं जी नॉकआउट है, एशियन गेम्स का सवाल है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे?
0: देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस एशिया कप में, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ इसी तरीके की सोच वहाँ पर मैनेजमेंट की है या कोच की है, कप्तान की है, तो एग्जीक्यूशन लाने में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को।
2: एग्जीक्यूशन लाने में दिक्कत नहीं है, पर उत्तरा हम देख रहे हैं स्क्वाड में और भी प्लेयर्स थे, रेणुका सिंह ठाकुर थी, कमलिनी को अभी मौका दिया गया है, क्या ये एक अच्छा मौका था कि हम उन सबको ट्राई करते अलग अलग जगहों पर, उन सबको मौका दिया जाता खेलने का, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमों का सामना करना है, और शायद ये एक अच्छा मौका था टीम को तैयार करने का।
3: बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि हर टूर्नामेंट आप जीतने के लिए उतरते ज़रूर हो, लेकिन हर टूर्नामेंट का मेन मकसद सिर्फ जीतना नहीं हो सकता है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टूर्नामेंट्स को, कॉम्पिटिशन्स को, अपने प्लेयर्स को और उनकी उनके तैयारी को, उनके एक्सपोजर को, उनके रिहैब को, अगर इंजरी या निगल्स चल रही हैं, और ये एक या हर, और ये आप हर दो महीने या हर तीन महीने में क्वार्टरली रिव्यूज़ नहीं हो सकते हैं, ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, आपको साल के हिसाब से एटलीस्ट सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर टूर्नामेंट में सिर्फ ये सोच के उतरेंगे कि हम चांस नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पहले अपना जीत जाएं उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, तो फिर आपके पास कभी एक्सपेरिमेंट करने या टेस्टिंग का कभी मौका मिलेगा ही नहीं आपको।
1: जी, आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आज 72 रन से इस फाइनल मुकाबले को जीता है, और किसी भी वुमेन्स T20I के मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ये फाइनल में आई दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले नंबर पर 85 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था मेलबर्न में 2020 में। पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे अगर उसकी बात करेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो जीत है भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है, 8वीं बार भारत चैंपियन बना है एशिया का, और हम लगातार बात कर रहे हैं हम कि भारतीय ये जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन की, लेकिन कप्तान को कैसे भूल सकते हैं लतिका, हरमनप्रीत कौर भले बैटिंग वाइज थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रहा उनका ये प्रदर्शन, आप उनकी कैप्टेंसी को कैसे रेट करेंगे?
0: देखिए, जिस तरह की कप्तानी वो करती हुई आ रही हैं वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर की है।
2: हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चलते हैं पहले सीधा फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ।
4: डॉक्टर कमाली, मेंबर ECB, मिस्टर ईरान विक्रमरत्न, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ACC, मिस्टर मुबाशिर उस्मानी, जनरल सेक्रेटरी ECB इवेंट होस्ट, and Mr. Ibstam Ahmed Al-Kabi, Senior Vice President, Jasper Sales, DP World, representing DP World. Right, moving on, first and foremost, I'd like to invite Chamaru Yattapattu to come and sign the match ball. Chamaru Yattapattu led the side well, unfortunately the defending champions losing out to the mighty Indian side. Right, now moving on, the much official mementos to be collected. I would request Mr. Mubashir Usmani from Emirates Cricket Board to please present the mementos to the match officials who have been amazing throughout this tournament, starting with our match referee Supriya Rani Das, followed by Salima Imtiaz, on field umpire. Sir, Satira Jakar Jesse on field umpire.

0: end of the day, I know we are not playing our best cricket, all three departments, especially bowling in the power play, we struggle a lot, they are playing really good. But, you know, we will bounce back because after this we have Asian Games coming up. So we need to improve a couple of areas and we will bounce back.
1: Like the spirit of you, Chamari Adapattu. Just one thing going into the Asian Games, lots of positive take from this tournament, isn't it?
0: Yeah, apart from this game, we playing really good cricket throughout this tournament. We beat a couple of teams and today we struggle a little bit, but it doesn't mean we are not good enough. But the thing is, we need to execute our plans and I hope we can bounce back in next series as well.
1: Who are your standout performers in the Sri Lankan side?
0: So I feel a lot of players improve a lot. They're playing really good cricket and especially Harshita and Neelakshi Silva and Chamudi Proboda. We have good positive things in this tournament, so we carry all these things for next series as well.
1: Certainly lots of positives. Bad luck today, but very well done throughout the tournament and good luck in the Asian Games.
0: Thank you very much
1: Chamari. That's Chamari Adapattu Hugh. That's it from the presentation. Back to the comms.
2: देखिए भारत के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी की
3: तो ये थी श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू। एक ख़ास बात जो लतिका देखने को मिली कि जितना मुस्कुराते हुए उन्होंने पूरा टाइम दिखा है उनका चेहरा, और शायद खेल यही सिखाता है आपको। उन्होंने कहा भी कि वी विल बाउंस बैक, तो खेल जीतना तो सिखाते हैं आपको, लेकिन साथ ही हार में भी कैसे आप मुस्कुरा सकते हैं, कैसे आप ग्रेसफुली उस हार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी आज दिखाया अट्टापट्टू ने।
4: बिल्कुल, और देखिए हर टीम किसी भी टूर्नामेंट में शिरकत करती है तो सिर्फ जीतने के लिए ही करती है, और उस टूर्नामेंट को खेलते हुए पार्टिसिपेट जब वो करती हैं, दूसरे टीमों के साथ कंपटीशन होता है तो वहाँ कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं गई होती, और वो जब नज़र जाती है तो उसकी प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं। तो कई बार इस तैयारी में और इस प्रोसेस में कप जो है हमसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो जब हम नए किसी कंपटीशन की तैयारी तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, बॉलिंग की हो, फील्डिंग की हो, बल्लेबाजी की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम, चाहे वो भारतीय टीम हो, श्रीलंकन टीम हो, चाहे एशियन की और कोई भी टीम हो, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के गए होंगे, और भारतीय टीम ने कप जीता है लेकिन एशियन गेम्स को किस तरीके से लेते हैं, वहाँ क्या प्लान्स होंगे, उनके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका वो जो है जवाब ढूंढ रहे होंगे।
5: जी, तो चामरी अट्टापट्टू ने कहा कि वी विल बाउंस बैक इन दी एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स पर अब नजर होने वाली है, जहां पर क्रिकेट तो हिस्सा होने ही वाला है, साथ के साथ करीब 36 खेलों में भारत के अलग अलग खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और आकाशवाणी के जरिए हम सब साक्षी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो मेडल्स का आंकड़ा है वो ट्रिपल फिगर्स में जाएगा। भारतीय टीम ने वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप 2026 को अपने नाम किया, और आपने सुना आकाशवाणी पे सीधा प्रसारण इसका, और इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं अब नजरें होने वाली है एशियन गेम्स पर।
3: बिल्कुल, और एशियन गेम्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। 17 तारीख को पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच होगा, और दूसरा मुकाबला उसी दिन होगा बांग्लादेश और चाइना के बीच। वहीं 18 सितंबर को इंडिया का सामना होगा जापान से, और श्रीलंका मुकाबला करेगा मलेशिया से। इसके बाद इन क्वार्टर फाइनल्स के जो विजेता होंगे वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 20 सितंबर को, और ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैचेस होंगे 22 सितंबर को। तो उसके लिए हमारी तैयारी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं उत्तरा, उसमें कोई ख़ास कमेंट आपका उस स्क्वाड पे, क्योंकि लगभग वही नाम है जो अभी एशिया कप में हमें दिख रहे थे।
6: मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेरबदल करेंगे भी, और क्योंकि यही टीमें आपको फिर से वहाँ पे मिलने वाली हैं, और कुल मिला के 2 या 3 मैक्सिमम अगर आप फाइनल खेलते हैं तो मैचेस हैं, 3 मैच के लिए आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये करना चाहते तो किसी यंगस्टर को ज़रूर चांस दे सकते थे, जैसा हम इस टूर्नामेंट के लिए भी लगातार बोल रहे हैं, पर अब जब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। पर उम्मीद यही है कि वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितना बड़ा गैप है भारतीय टीम और बाकी टीमों के बीच में, तो गोल्ड से

0: कम की किसी भी गोल से कम जो होगा वो एक तरह से आपके लिए हार के बराबर ही होगा।
1: जी, why fix what is not broken? तो उस स्क्वाड पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक स्क्वाड यहां पर भी रहा जिसने आप तक ये प्रसारण पहुंचाया, उसका धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है। उत्तरा लतिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
1: और मेरी को एंकर मुदिता को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने संचालन करने में मदद की। थैंक यू सो मच मुदिता।
2: शुक्रिया दर्पण।
1: और बिहाइंड द सीन्स हमारी टीम जो बहुत मेहनत करती है, टेक्निकल टीम जयराम, मनोज सिंह, त्रिलोक गुप्ता, राम आशीष यादव का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ के साथ हमारे प्रोडक्शन क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आज थे माधवी तिवारी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, एंड ऑफकोर्स द मैन हु रन्स द शो, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, शाहनवाज खान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप आकाशवाणी से जुड़े और साक्षी बने इस एशिया कप वुमेन्स 2026 के फाइनल का। इसी के साथ मैं दर्पण त्रिकिया आपसे विदा लेता हूं, सुनते रहिए आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 12:21 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।